100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, वैशाख मास की अष्टादश तिथि और विक्रम संवत 2083, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, तदनुसार 8 मई 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की यह सभा आरंभ होती है।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

भोर के इस मधुर बेला में संपूर्ण प्रकृति मानो ईश्वर की आराधना कर रही हो। ऐसे पावन वातावरण में आइए हम भी अपनी भक्ति को प्रभु चरणों में समर्पित कर जुड़ें उस ईश्वर से कार्यक्रम पुष्पांजलि के माध्यम से, जिसमें आपका साथ देने के लिए आपके साथ मैं हूं, आपका दोस्त सुस्मित, 100.7 FM रेनबो पर। और आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करें प्रथम सुपूजित भगवान श्री गणेश के इस वंदना के साथ।

जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार मन को निर्मल व पवित्र बनाने के लिए ईश्वर का ध्यान आवश्यक है। तो इस बात को समझते हुए ध्यान करें परमेश्वर का और सुनते रहें 100.7 FM रेनबो।

ईश्वर के प्रति की गई आराधना केवल वाणी का आदान प्रदान नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया है। ईश्वर के प्रति की गई आराधना से हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलने की प्रेरणा मिलती है। तो क्यों ना हम भी पुकारें ईश्वर को अपनी इस आराधना के साथ।

जो लोग भगवान के भक्त निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा भला कैसे मिलेगी? ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए तो निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है। तो सच्चे मन से करें आराधना इस भजन के साथ।

प्रभु की भक्ति में लीन ये मन कर रहा है आराधना कार्यक्रम पुष्पांजलि के माध्यम से, और इस कार्यक्रम में मैं सुस्मित हूँ आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर। 6:26 हुए हैं, आइए सुनते हैं एक और भक्तिमय प्रस्तुति।

भक्ति शाश्वत पुण्य की पूंजी है, जिसे कोई छीन या चुरा नहीं सकता। जो सुख आनंद भक्ति में है, वो संसार में अन्यत्र कहीं नहीं। भक्ति की गंगा में जो डुबकी लगाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है।

0: मन में ईश्वर की भक्ति को धारण करने वाला व्यक्ति संसार के किसी भी सुख के पीछे नहीं दौड़ता। ईश्वर की भक्ति के समक्ष उसे सब कुछ तुच्छ लगने लगता है। जो इसका एक बार रसास्वादन कर लेता है उसे सांसारिकता कभी भटका नहीं सकती। तो लेते रहिए भक्ति का उत्तम आनंद प्रभु नाम के साथ।
1: श्री चरणदास जी कह गए हैं, श्वास लेवे जो नाम बिना सो जी।

और अब इसी के साथ समय हो चला है कि उस कृपामयी करुणामयी शक्ति को प्रणाम कर हम अपनी भूलों अपराधों के लिए क्षमा मांगे और अपने जीवन को बना लें पावन। तो इसी कामना के साथ अब मुझे यानी सुस्मित को दीजिए अनुमति कार्यक्रम पुष्पांजलि से। लेकिन आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो और मैं मिलूंगा आपसे थोड़ी देर में समाचारों के बाद प्रोग्राम सदाबहार गीत में।

नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। सरकार ने प्रदेश भर में लगे सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि सभी स्मार्ट मीटर तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड प्रणाली में बदले जा रहे हैं। अब उपभोक्ताओं को बिजली इस्तेमाल करने के बाद ही बिल मिलेगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बिल SMS और व्हाट्सएप के जरिए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर और बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई से 30 जून तक अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर विशेष कैंप व सहायता केंद्र लगाए जाएंगे। प्रदेश में उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। 4,543 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में करीब 15,75,760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें 12,333 अभ्यर्थी अगले चरण के लिए सफल घोषित किए गए हैं। ये परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी। भर्ती बोर्ड के मुताबिक दस्तावेज जांच और शारीरिक परीक्षण मई के तीसरे सप्ताह में किया जाएगा। इसकी पूरी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में कल एक समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। ये आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। IPL में कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराकर जीत दर्ज की। बारिश के कारण डकवर्थ लुइस नियम के तहत मुकाबला 19-19 ओवर का किया गया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की टीम ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 209 रन बनाए। संशोधित लक्ष्य 213 रन के जवाब में बेंगलुरु की टीम निर्धारित ओवर में 6 विकेट पर 213 रन ही बना सकी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

दोस्तों, मैं सुस्मित एक बार फिर आपसे जुड़ चुका हूं कार्यक्रम सदाबहार गीत के साथ। तो आइए आपको ले चले सदाबहार गीतों के उस दौर में जो आज भी लोगों के दिलों में बसता है। 100.7 एफएम रेनबो पर प्रोग्राम की शुरुआत आपको आवाज देते इस प्यारे से गीत के साथ। एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, कभी कभी प्यार यूं दस्तक देता है जैसे रूह को रोशनी मिल गई हो, जैसे दिल की धड़कनों को कोई सुकून का पल दे गया हो। ऐसे में खोकर उनके प्यार में जैसे ये जिंदगी मुस्कुराना सीख गई।

कभी महसूस किया है, जब हवा छू कर जाती है तो उसमें कोई छुपा सा पैगाम होता है। जब फिजाएं थमती हैं तो जैसे दिल की धड़कनों को सुनती हैं। ऐसे में हर झोंके, हर खुशबू में तेरे नाम की मिठास महसूस कर, मेरा प्यार इन हवाओं में तुझको हर पल पुकारता है।

0: पुकार पुकार।
1: रुक जाए हवा, कहीं मत जा, क्योंकि आज दिल की जुबां किसी और से नहीं, बस उसी से कुछ कहना चाहती है। इन फूलों की खुशबू को थोड़ा रोक ले, क्योंकि आज ये रंग, ये रोशनी बस उसी की राह देख रही है। आज वक्त भी थम जाए, धड़कनें भी धीरे चलें, क्योंकि जब मोहब्बत दिल से निकलकर फिजाओं में गूंजती है, तो हर झोंका, हर कली, हर किरण गवाह बन जाता है इस प्यार का।

दोस्तों समय हुआ है 7:25 और मैं सुस्पित हूँ आज आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर। तो ऐसे ही खूबसूरत गीतों के साथ जुड़े रहेंगे हम और आप प्रोग्राम सदाबहार गीत में, जिसमें एक और प्यारा सा गीत पहुंच रहा है आपके दिल तक। इंजॉय कीजिए।

मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं, ये एक वादा है जो दिल से किया जाता है। जब दो दिल साथ चलने का इरादा कर ले, जब हर खुशी और हर गम में साथ निभाने की कस्में खा लें, तो वही प्यार सच्चा प्यार बन जाता है।

कभी मोहब्बत सिर्फ दिल की चाहत नहीं, इबादत बन जाती है, एक परस्तिश जिसमें खुद को भुला देना ही असली जीत होती है। आज दिल ने उसी मूरत में अपनी रूह की आवाज ढूंढ ली है। न कोई शर्त, न कोई सवाल, सिर्फ मोहब्बत का इरादा। क्योंकि जब दिल सच्चे इरादे से पुकारे तो पत्थर भी बोल उठते हैं और मोहब्बत बंदगी बन जाती है।

कभी सोचा है कि जब चांद ने अपनी रोशनी बांटी थी तो सबसे ज्यादा उजाला तुम्हारे चेहरे को ही मिला होगा। ये जुल्फें जैसे रात की काली रेशमी चादर और ये आंखें जैसे दो नीली झीलें जिनकी गहराइयों में दिल डूब जाए। इनमें छुपा नजर आता है एक ऐसा राज जिसे हर बार देखने का मन करता है पर पूरा कभी समझ नहीं आता, और ऐसे में दिल सोचता है कि तारीफ क्या करें उसकी जिसने तुम्हें बनाया।

बरसों पहले जब वक्त और जमाने बदलते थे, तब भी मेरा दिल सिर्फ तुम्ही को चाहता था। तुमसे प्यार था, बेहद बेपनाह और बेवक्त। आज भी हर सांस में, हर धड़कन में तुम्हारा ही नाम गूंजता है। और कल भी, जब वक्त थक जाएगा, जब ये जहान खामोश हो जाएगा, तब भी मेरा इश्क तुमसे जिंदा रहेगा। क्योंकि ये मोहब्बत वक्त से नहीं, ये रूहानी है।

और दोस्तों इसी के साथ अब समय हो चला है इस कार्यक्रम से अनुमति लेने का। जी हाँ, इन खूबसूरत गीतों से जुड़े प्यारे से एहसासों को दिल में समेटते हुए अब मैं सुष्मिता आपसे लेता हूँ इजाजत प्रोग्राम सदाबहार गीत से। लेकिन हाँ, आपसे फिर मिलूंगा थोड़ी ही देर में समाचारों के बाद गुड मॉर्निंग लखनऊ के मंच पर, और साथ में होंगी रोली भी। तो बस आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर पहुंच रहा है इस प्रोग्राम का ये आखिरी गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान

0: टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन की चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन्ह और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3-सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच

0: का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे, लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
2: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल,
0: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान, द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: ख्वाबों के आंगन में सवेरे

0: आया है, सूरज ने रोशनी का पैगाम लाया है। चलो उठो और निकल पड़ो अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि सुनहरी धूप ने आपको फिर से जगाया है। गुड मॉर्निंग जी।
1: गुड मॉर्निंग। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और इतनी खूबसूरत पंक्तियों के साथ शुरुआत करी है रोली ने। आप सभी को गुड मॉर्निंग विश किया है साहब, हमारा भी गुड मॉर्निंग कबूल कीजिए। और इस प्यारी सी सुबह में हम और आप जुड़ चुके हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में, तो चलिए।
0: बिल्कुल, तो आज गुड मॉर्निंग लखनऊ में आपके साथ, आपके इस सफर में हम आपके हम सफर बने रहेंगे। क्या भाई, हमें रोली और हमारे साथ है
1: सुस्मित, और ये सफर पूरे 10 बजे तक रहने वाला है।
0: तो बहुत कुछ है, रोज की तरह हमारे पास कुछ खास बातें हैं, लोगों से मुलाकातें हैं, और साथ ही साथ आपकी बातें जो इस मंच तक पहुंचती हैं वो भी तो बहुत खूबसूरत होती हैं। तो इन सभी बातों के साथ हम बने हैं आपके साथ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर। और आज सुबह का सबसे पहला ट्रैक, बड़ा ही प्यारा सा क्यूट सा ट्रैक आप सबको डेडिकेटेड है।
1: तो चलिए एंजॉय कर लेते हैं, बड़े प्यार से रोली आप तक ये ट्रैक पहुंचा रही है। जुड़ते हैं इस ट्रैक से और बढ़ते हैं आगे इस सफर पर।

0: आज का मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र।
1: मॉर्निंग मंत्र का इशारा एक ऐसी बात जो आप तक पहुंचाती है एक एनर्जी, एक डायरेक्शन और एक बहुत ही ऐसा काम करती है कि बस हम उस बात से अगर जुड़ जाएं तो हमारे लिए बहुत कुछ आसान हो जाता है। तो वही बात, बिल्कुल तैयार है रोली के साथ।
2: बिल्कुल, और ये मॉर्निंग मंत्र कहता है कि हर दिन एक नया मौका है खुद को इंसान में बदलने का जो हम बनना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो इंसान जो हम बनना चाहते हैं और दूसरों के लिए जो हम और ज़्यादा बेहतर इंसान बनकर दिखाना चाहते हैं, वो दोनों मौके हर दिन आपके पास ऊपर वाला देता है।
1: क्या बात कही रोली, वाकई में अगर हम थोड़ा सा सोचें तो कितनी खूबसूरत बात है ये कि हम कितना कुछ सोचते हैं लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हमारी सोच में कुछ कमी रह जाती है। अगर हम ये समझ लें कि आज ये मौका है, हम उस शख्सियत को जो अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं अपने अंदर, वो बना लें, तो क्यों ना एक बढ़िया बढ़िया रिजल्ट हमारे सामने होगा। तो इस बात को समझिए और
2: बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हट कर। और ऑब्वियसली जब आप कुछ करेंगे ना, कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो आपको सफलता क्यों नहीं मिलेगी। और वही वो दिन होगा जब आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे और साथ ही साथ आपके साथ जो लोग रहते हैं उनको भी भरपूर प्यार देंगे, है ना।
1: क्या बात कही रोली, तो इस खूबसूरत सी बात के साथ ही साथ एक प्यारा सा ट्रैक भी जुड़ रहा है आपसे, एंजॉय कीजिए।

0: मुद्दा आज का। आठ बजकर 28 मिनट, जी हाँ 8:28। गुड मॉर्निंग, लखनऊ का सफर जारी है और इस जारी सफर में मैं रोली से पूछना चाहता हूँ, रोली आप अपनी हेल्थ का ध्यान कितना रखती हैं, कैसे रखती हैं, क्या कुछ करती हैं इसके लिए?
1: जी हाँ बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि अपने आप को इग्नोर कर देती हूँ और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीटिंग्स भी कर लेती हूँ अपने साथ में, है ना, कि चलो आज ये खाने का मन है, ये अच्छे से खा लेते हैं, बहुत अच्छे से पेट पूजा करेंगे, आज ये करेंगे, चलो आज दिन भर थोड़ा सा रेस्ट करने का मन है, चलो सो जाते हैं, मतलब एक्सरसाइज करने के सोचते हैं, फिर कई बार नहीं हो पाता है, कई बार वॉकिंग पे नहीं जा पाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब पता चलता है कि भाई हमारी जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ ना कुछ दिन भर में कुछ ऐसे आधे घंटे या 40 मिनट की कोई ऐसी चीज जरूर करने की कोशिश करते हैं जिससे कि मेरी हेल्थ थोड़ी सी बेहतर हो। भाई
0: बहुत अच्छी बात कही, लेकिन कई बार ऐसा होता है बहुत सी महिलाएं या बहुत से और आम लोग भी, जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनके साथ ऐसा होता है कि वो अपने काम धाम में कुछ इस तरह से बिजी होते हैं कि वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते, या यूं कहें कि शायद कहीं उसको एक छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है आगे ध्यान दे लेंगे, लेकिन ये कई बार बड़ा नुकसानदेह साबित होता है।
1: कई बार हम भूल जाते हैं कि जो हमारा शरीर है वो भी एक मशीन है भाई, उसको भी प्रॉपर सर्विसिंग की जरूरत होती है, प्रॉपर हर टाइम इसको देखने की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और कुछ ऐसी ही बातें कर रहा है आज का दिन, क्योंकि आज कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, कुछ ऐसे डेज हैं जो स्पेसिफिकली पूरे वर्ल्ड लेवल पे मनाए जाते हैं, और वो हमें यही बताते हैं कि हम अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान दें, और इनमें से एक दिन है थैलेसीमिया डे। जी हाँ, एक ऐसा दिन जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। बहरहाल इसके बारे में बात करेंगे इस कट के ठीक बाद, हमारे साथ एक विशेषज्ञ जुड़ेंगे, उनसे हम करेंगे बातें इस बारे में। लेकिन यहाँ बात मुद्दे की, तो मुद्दे से जुड़ते हुए आज हम बात कर लेते हैं रोली अपने साथियों से।
1: बिल्कुल दोस्तों, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि थैलेसीमिया के बारे में आप जानते जरूर होंगे, तो थैलेसीमिया से लड़ाई में आपकी क्या भूमिका है और क्या आपने कभी रक्तदान किया है, हमें बताइए fmakashwanilakhnau@gmail.com पर।
0: जी हाँ, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर ब्लड बहुत ही कम हो जाता है और बार बार ब्लड की जरूरत पड़ती है। बहरहाल इसके बारे में बात न करते हुए हम सीधे आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इसकी जो लड़ाई है, थैलेसीमिया की जो लड़ाई है, इसमें आपकी क्या भूमिका रहती है और क्या आपने कभी रक्तदान किया है, क्या आप इसके बारे में जागरूक हैं, क्या आप इसके बारे में सोचते हैं, सजग हैं, और आप इससे लड़ाई में क्या कुछ करते हैं। आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं हम तक हमारी ईमेल आईडी fmakashwanilakhnau@gmail.com के माध्यम से। फिलहाल ये मुद्दा आप तक पहुंच चुका है और एक ट्रैक बिल्कुल तैयार है, और इसके बाद हम करेंगे एक एक्सपर्ट से बातचीत इसी बारे में,
1: तो सुनते रहिए, हमारे साथ बने रहिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में।

0: तक चलेगी। अगर आप सफर करते रहते हैं तो ऑब्वियसली ये जानकारी आप ही के लिए है। रेलवे ने हैदराबाद गोरखपुर हैदराबाद साप्ताहिक स्पेशल के संचालन अवधि को बढ़ा दिया है। हैदराबाद से 8, 15, 22 और 29 मई को रात 9 बजे चलकर रविवार सुबह 6:30 पर गोरखपुर पहुंचेगी। गोरखपुर से 10, 17, 24 और 31 मई की सुबह चलेगी।
1: तो ये काम की बात आपके लिए हो गई अगर आप सफर करना चाहते हैं, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े हैं तो आपके लिए एक काम की बात। एलयू में शैक्षिक सत्र 2025-26 सम सेमेस्टर परीक्षा के तहत स्नातक और पर स्नातक स्तर के 6 ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिनका परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। बिल्कुल तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। और इसमें आपको बता दें बीएससी, बीकॉम, बीए नॉन एनईपी के चतुर्थ और छठे सेमेस्टर, बीबीए टूरिज्म चौथे और छठे सेमेस्टर, और साथ ही साथ एमए पत्रकारिता और जनसंचार व एमटीटीएम चतुर्थ सेमेस्टर का शेड्यूल आ चुका है, और आप इससे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके ले सकते हैं।
0: और अगर पढ़ाई की बात चली है तो भाई आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की आखिरी तारीख 10 मई तक बढ़ा दी है। पहले अंतिम तारीख थी 30 अप्रैल, अभ्यर्थियों की मांग पर तारीख बढ़ाई गई है और अभ्यर्थी 8 से 11 मई के बीच आवेदन पत्रों में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे।
1: क्या बात है, एक बढ़िया मौका है आपके हाथ में, और ये लास्ट डेट बढ़ने का फायदा उठाइए। अगर अभी तक आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाए थे तो ये एक बढ़िया मौका है आपके लिए। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, इसमें सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ 2025 की जो मुख्य परीक्षा थी उसके लिए 22 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, और ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट, आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी और सभी इसके साथ जो डॉक्यूमेंट संलग्न करने हैं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियां 29 मई की शाम 5 बजे तक आयोग के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक या फिर स्वयं उपस्थित होकर के जमा किए जा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, या तो आपको रजिस्टर्ड भेजना है या आपको वहां पर जाकर के खुद आप इसे सबमिट कर सकते हैं।
0: और आपको बता दें लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के 5 पदों का प्राप्तांक और कट ऑफ जारी कर दिया है, और यूनानी विभाग में रीडर और प्रवक्ता के 4 विषयों जबकि भू विज्ञान और खनिकर्म विभाग में सहायक भू वैज्ञानिक भर्ती का प्राप्तांक और कट ऑफ 14 मई तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे, ये जानकारी आयोग की ओर से दी गई है।
1: और एक बात और साहब, वो हम सबसे जुड़ी है, अपने लखनऊ शहर से जुड़ी है। आज लखनऊ में खदरा, अलीगंज, वृंदावन और गोसाईगंज के आसपास कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली थोड़ा परेशान कर सकती है, तो अपना ख्याल रखिएगा और टाइम मैनेजमेंट अपना देख लीजिएगा कैसे आपको मैनेज करना है। फिलहाल कपूरथला एरिया की बात करें तो यहाँ पर सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक यानी लगभग 5 घंटे बिजली नहीं आएगी, तो पहले से अलर्ट हो जाइए। हमने अपना काम कर दिया, आपका काम शुरू होता है अब।
0: बिल्कुल, होशियार रहिए, अवेयर रहिए, और जो भी आपको करना है जल्दी जल्दी अपने सभी कार्यों को कर लीजिए। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं सुस्मित, ये तो थी हमारे सिटी अपडेट्स के अंतर्गत जानकारियाँ। हमारे प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ है खास, तो इसके लिए हमको जरूरी है फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक ले लें।
1: बिल्कुल सही कारोली, एक ट्रैक सुनते हैं, आते हैं इस गीत के बाद।

0: 8:36 मिनट गुड मॉर्निंग लखनऊ का सफर जारी है और इस वक्त हम आपसे जुड़ते हुए करने वाले हैं कुछ जरूरी बातें जो आपके लिए बहुत काम की हो सकती हैं और इनमें सबसे पहली बात क्या है चलिए आपको बता देते हैं।
1: जी हाँ, इनमें सबसे पहली बात है आपको बता दें, हैदराबाद गोरखपुर विशेष ट्रेन अब 31 मई

0: और दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि हम जिस मुद्दे से जुड़ी बात कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई बात के लिए आपको ले चलेंगे हमारे एक एक्सपर्ट के पास। तो बिल्कुल हमारे साथ वो एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं और हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो हैं डॉक्टर तुलिका चंद्रा जी, जो कि प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूज़न मेडिसिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में है और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनका वेलकम करते हैं और करते हैं उनसे कुछ बातचीत। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग 100.7 एफएम रेडियो पर।
1: गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग मैम। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, हमारे सभी श्रोता ये जानना चाहते हैं कि थैलेसीमिया क्या है और ये बीमारी कितनी गंभीर है।
1: देखिए थैलेसीमिया एक जैसे कहते हैं जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो पेरेंट से बच्चों को आता है
2: जी।
1: और इसमें हम लोग की जो हीमोग्लोबिन में दो तरह की जीन्स होती हैं, अल्फा एज वेल एज बीटा ग्लोबिन, तो अगर इसमें से किसी की भी कमी हो जाती है तो उस तरह का थैलेसीमिया डेवलप हो जाता है बच्चे में, चाहे वो अल्फा थैलेसीमिया हो चाहे बीटा थैलेसीमिया। इसमें ज्यादातर जो अगर दोनों पेरेंट्स से आता है थैलेसीमिया तो थैलेसीमिया मेजर हो जाता है जिसके सिम्टम्स होते हैं जिनको बार बार खून चढ़ाने की जरूरत होती है, और अगर केवल एक पेरेंट से आता है तो वो जीन कैरी करते हैं, शायद उनके सिम्टम्स इतने स्ट्रांग ना हो, हल्का फुल्का एनीमिया हो, खून की कमी हो, लेकिन थैलेसीमिक होते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि थैलेसीमिया माइनर और मेजर को भी डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए।
0: ओके मैम, थैलेसीमिया की बात चल रही है, इससे बचाव के लिए समय रहते कौन कौन सी ऐसी जांचें हैं और सावधानियां हैं जो हम ध्यान रखें, और युवाओं के लिए किस तरीके से जरूरी हो जाता है इन्हें ध्यान रखना?
1: देखिए इससे बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि जब भी कभी दो लोग शादी करें या तो अपने थैलेसीमिया जो लड़का और लड़की की जांच जरूर करा लें। देखिए हम लोग पत्रियां मिलाते हैं
0: जी।
1: पत्रियां मिलाने की तो कोई गारंटी नहीं होती है कि पत्री कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अगर एक बच्चे को थैलेसीमिया है
0: जी।
1: कोई भी लड़का लड़की को, तो कोशिश करें कि जो दूसरी लड़की है उसको थैलेसीमिया ना हो, दूसरे बच्चे को, स्पाउस को, जिससे कि अगर दोनों के फिर दो बच्चे होंगे तो चांसेस है दोनों को मेजर थैलेसीमिया हो जाएगा। ये बच्चे क्या होंगे कि इनमें खून की कमी होगी, बहुत कमजोरी होगी, काम करने में बहुत थकान होती रहेगी, तो और इनको बार बार हर तीन तीन चार चार हफ्ते में खून चढ़ाना पड़ेगा
0: जी।
1: तो काफी उनकी जिंदगी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, इवन दो आज की तारीख में इतने

0: आ गए हैं कि सिस्टम्स आ गए हैं कि ये लोग तब भी अपना जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन हाँ वो नॉर्मल लेवल नहीं आ पाती है। तो अगर इसको जड़ से रोकना है, शुरुआत से रोकना है, तो जरूरी है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी थैलेसीमिया की जांच जरूर हो जाए।
1: जी
0: अगर
1: जी
0: दोनों माइनर थैलेसीमिया है तो बच्चा मेजर थैलेसीमिया हो जाएगा।
1: ओके
0: और
2: जी
0: तो इसलिए बहुत जरूरी है कि थैलेसीमिया की जांच हो। इसके अलावा जो आप कहते हैं ना कि क्या प्रॉब्लम्स क्या होंगी
1: जी
0: उनको,
1: जी जी
0: तो जैसे हमें जब खून की कमी होती है तो थकान लगने लगती है, कमजोरी लगने लगती है, या हमें क्या होता है कि जो बच्चे की ग्रोथ है, आप देखेंगे जब छोटा बच्चा होता है अगर थैलेसीमिया है
1: जी
0: तो उसका जो बढ़ने की जो ग्रोथ है वो बहुत डिलेड होती है, और बहुत जल्दी जल्दी उसको जैसे होता है फ्रैक्चर होने लगते हैं, और मतलब जो प्यूबर्टी पे जो चेंजेस आते हैं वो भी बहुत डिलेट हो जाते हैं, और जैसे होता है चक्कर आना और पेट में सूजन आना, ये सब भी लक्षण थैलेसीमिया के होते हैं
2: जी
0: जिसको पहचानना जरूरी होता है।
2: आपने रक्तदान की बात की कि थैलेसीमिया के मरीजों को नियमित उनको खून चढ़ाना पड़ता है, तो ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैम इसमें आम लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं ये बताइए।
0: जी देखिए, ऐसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स जिनको जो मेजर थैलेसीमिया है, ज्यादातर उनको 3 या 4 हफ्ते के अंदर 1 यूनिट खून जरूर चढ़ाना होता है, और अगर एज बढ़ती जाती है तो बहुत बार 2 यूनिट चढ़ाना होता है। तो इसके लिए उनको देखिए, कोई भी फैमिली कहाँ तक रक्तदाता लाएगा
1: जी।
0: तो जब रक्तदाता नहीं है तो फिर वो बच्चे को खून चढ़ाना तो उसकी जिंदगी के लिए जरूरी है, नहीं तो फिर वो आगे जिएगा कैसे। और जहां पे हमारे स्वैच्छिक रक्तदान के बारे में जनमानस के अंदर में मन में जो भ्रांतियां हैं कि जब जरूरत होंगे तब देंगे या मुझे कमजोरी आ जाएगी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम या उन बच्चों की लाइफ अफेक्ट होती है।
1: जी।
0: क्योंकि लोग आम जनमानस का सहयोग है कि आप चाहे तो साल में एक बार, ऐसे तो मेल्स हर 3 महीने में और फीमेल्स हर 4 महीने में नियमित रूप से रक्तदान कर सकते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई कमजोरी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उतना भी ना करना चाहे तो एटलीस्ट साल में एक बार अपनी बर्थडे के दिन, अपने एनिवर्सरी के दिन अगर रक्तदान करते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे मरीज की, ऐसे बच्चे की मदद करेंगे, उसको आप नहीं जानते, ना वो बच्चा आपको जानता है ना आप उसको जानते हैं, लेकिन जो आपका जो पुण्य है, जो अच्छाई है, कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना ऊपर वाला सब देखता है, तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, आपको अपनी जिंदगी में भी मदद करेगा।
2: बिल्कुल।
0: जैसे आपने एक एड देखा होगा कि एक बच्ची आती है एक आदमी के पास, उसे कहती है थैंक यू अंकल, और वो हाँ वो आदमी कहता है क्यों कह रही हो, कहते हैं कि मैं थैलेसीमिक हूँ, मेरे लिए लोग रक्तदान करते हैं। तो वो आदमी कहता है कि मैंने तो कभी रक्तदान किया ही नहीं, कहती है लेकिन आप आगे करेंगे, और उसके बाद वो नियमित रक्तदाता बन जाता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे सब लोग करें तो शायद हमारे यहाँ पे कभी किसी के खून की कमी ना हो, और थैलेसीमिया को तो मदद मिलेगी मिलेगी, और भी बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी जिनको खून की जरूरत होती है।
2: जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने,
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने, और बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया आपने। निश्चित रूप से ये बात बहुत बहुत असर करने वाली है। अब चलते चलते मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, विश्व थैलेसीमिया दिवस है आज, और इस अवसर पर हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे चलते चलते?
0: विश्व थैलेसीमिया दिवस पे 2 बातें कहना चाहेंगे।
1: जी।
0: शादी विवाह करते वक्त जरूर थैलेसीमिया की जांच कराएं, और अगर जो लोग थैलेसीमिया से ग्रसित हैं उनकी मदद के लिए स्वैच्छिक रक्तदान करें। आज जीते जी रक्तदान करना, यही हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, जिसमें हमारा नुकसान नहीं फायदा है, और साथ साथ किसी की जान भी बच जाएगी।
1: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए, और इतनी सारी बातें हमें और हमारे श्रोताओं को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच मैम।
0: नमस्ते।
1: तो मित्रों ये थे हमारे साथ डॉक्टर तुलिका चंद्रा जी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें बताया विश्व थैलेसीमिया दिवस पर थैलेसीमिया के बारे में, इससे बचाव के बारे में, और रक्तदान के बारे में, कैसे ब्लड डोनेशन हम कर सकते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। तो आप भी इस बात को समझिए, और डॉक्टर तुलिका चंद्रा जी जो कि प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन किंग जॉर्ज

0: तो मित्रों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर तुलिका चंद्रा जी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें बताया विश्व थैलेसीमिया दिवस पर थैलेसीमिया के बारे में, इससे बचाव के बारे में और रक्तदान के बारे में, कैसे ब्लड डोनेशन हम कर सकते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। तो आप भी इस बात को समझिए और डॉक्टर तुलिका चंद्रा जी, जो कि प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, इनके माध्यम से पूरी जानकारी पहुंची। तो
1: इन्होंने साफ साफ बताया कि रक्तदान करने से कभी कोई कमजोरी नहीं होती है, बल्कि हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है ना?
0: अच्छा होता है, और ये एक ऐसा बेहतर काम है, एक मानवता भरा काम है, एक पुण्य काम है, जिसको जरूर करना चाहिए हम सभी को।
1: तो फिलहाल अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और फिलहाल एक ट्रैक आप सबके लिए वेट कर रहा है, तो चलिए हमारे साथ हम सब मिलकर ये ट्रैक सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं आपके प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में।

जी, और ये दिन ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। 8:56 हुए हैं, गुड मॉर्निंग लखनऊ का सफ़र जारी है। कुछ साथी हैं जिनकी बातें हम तक पहुंच रही हैं और ये सिलसिला चालू हो चुका है। बहरहाल हमने जो बात की है वो हम आपको बता देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि थैलेसीमिया से लड़ाई में आपकी क्या भूमिका है और क्या आपने कभी रक्तदान किया है। आप इस बारे में अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी fmakashwanilakhnow@gmail.com। जी हाँ, इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी बातों का हम कर रहे हैं इंतजार। और आपकी जो बातें आपने बड़े प्यार से हम तक पहुंचाई हैं उन तक भी पहुंचेंगे। फिलहाल तो एक ट्रैक, और इस ट्रैक के बाद होंगे समाचार, और उसके बाद भी गुड मॉर्निंग लखनऊ का सफर जारी रहेगा। तो एंजॉय कीजिए एक खूबसूरत सा ट्रैक।

नमस्कार, अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। ऑपरेशन सिंदूर का एक वर्ष पूरा होने पर कल भारतीय सेना की प्रेस वार्ता की खबर आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपी है।

0: हिंदुस्तान ने लिखा है पाक के खिलाफ अभियान पर सेनाओं ने किया खुलासा, पाक के 13 जेट 100 आतंकी मरे। दैनिक जागरण ने खबर पर शीर्षक दिया है भारतीय सेनाओं की चेतावनी, पाकिस्तान में कोई आतंकी ठिकाना सुरक्षित नहीं। स्वतंत्र भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हेडलाइन बनाते हुए लिखा है ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर बोले पीएम मोदी, हम आतंकवाद के पूरे तंत्र को खत्म करेंगे।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल नियुक्ति पत्र वितरण से संबंधित खबरें भी आज पहले पन्ने पर हैं। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री के संबोधन को हेडलाइन बनाते हुए लिखा है यूपी सर्वाधिक नियुक्ति देने वाला राज्य बना योगी। उपशीर्षक में मुख्यमंत्री ने लोक सेवा आयोग से चयनित 481 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए कहा 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी। नवभारत टाइम्स लिखता है योग्यता ही भर्ती का आधार, योगी।
0: पश्चिम बंगाल में विधानसभा भंग होने की खबरें भी आज कई अखबारों की प्रमुख हेडलाइन बनी है। दैनिक जागरण ने लिखा है ममता बनर्जी ने नहीं दिया त्यागपत्र तो राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। उपशीर्षक है नई सरकार गठन का रास्ता साफ, 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर शपथ ग्रहण। अमर उजाला की सुर्खी है ममता अब सीएम नहीं, विधानसभा भंग, नए मुख्यमंत्री चयन के लिए बैठक आज।
1: जनगणना के तहत कल से प्रदेश में शुरू हुई स्वगणना की खबरें भी आज हेडलाइन बनी हैं। अमृत विचार ने लिखा है जनगणना 2027 का शंखनाद, योगी बोले विकास का बनेगा मूल आधार। नवभारत टाइम्स ने तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर जारी जोड़तोड़ की खबर को हेडलाइन बनाया है। समाचार पत्र लिखता है तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी, राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं।
0: अमर उजाला ने एनसीआरबी की रिपोर्ट से जुड़ी खबर को प्रमुखता से छापते हुए लिखा है यूपी में अपराध राष्ट्रीय औसत से कम, देश में 18वें स्थान पर। इसके अलावा यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर पोस्ट पेड में बदले जाने और एसआई भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी होने की खबरों ने भी आज अखबारों के पहले पन्ने पर जगह बनाई है। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला समाचार बुलेटिन फिलहाल आप सुनेंगे 10 बजे और सुनते रहे 100.7 FM रेनबो जिस पर कार्यक्रम जारी है गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: नौ बजकर चार मिनट और वादे के मुताबिक एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकंड हाफ को लेकर के। मैं सुस्मित और साथ ही साथ
4: मैं हूं आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला और हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में। और जैसा कि हमने आपको बताया था, आपसे पूछा था कि भाई आज थैलेसीमिया दिवस है ना, विश्व थैलेसीमिया दिवस पर आपने इसे अगर कभी भी इससे लड़ाई में क्या भूमिका निभाई है और थैलेसीमिया से लड़ाई में आपकी क्या भूमिका है और क्या आपने कभी रक्तदान किया है, ये हमने आपसे पूछा था। तो एक बार फिर से आपसे यही सवाल पूछते हैं, जिसको बताने के लिए आपको क्या करना होगा, हमें मेल करना होगा और हमारी मेल आईडी है
3: fmakashwanilakhnow@gmail.com और इसी मेल आईडी के माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचा कर जुड़ सकते हैं इस मंच से।
4: और भाई क्या खूबसूरत सा दिन है, एकदम धूप खिली है लेकिन ना ठंडा ठंडा सा मौसम है, मतलब कि धूप भी अच्छी लग रही है। और ऐसे में जब हम सुबह एंजॉय करने के लिए उठते हैं और साथ ही साथ अपने घर के सभी लोगों से बातचीत करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट खाते हैं, तो दिन और भी खूबसूरत हो जाता है।
3: बहुत अच्छी बात कही रोली। वैसे मुझे याद नहीं आता मई में कभी ऐसा रहा।

0: हो कि साहब 8 मई के आसपास हम लोग पहुंच गए हो और मौसम इतना खूबसूरत इतना सुहाना हो।
1: अच्छा पता है मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि अगर ये ऐसे बीच बीच में मतलब दो चार गर्मी के बाद बादल और थोड़ी थोड़ी सी ठंड का एहसास हो जाए ना तो कितना आसान हो जाएगा ना। और जिस दिन मौसम बहुत अच्छा होता है ना मन कितना अच्छा अच्छा सा रहता है अंदर से ना।
0: बिल्कुल सही बात है। वो जो 44-45 डिग्री के आसपास की गर्मी है जो पीछे होने लग गई थी उसको सोच के भी मन सिहर जाता है और ऐसे मौसम में मन करता है वाह ऐसा ही मौसम बना रहे तो फिर क्या कहें।
1: और यकीन मानिए कल का मौसम इतना अच्छा था तो निकल गए बाहर घूमने के लिए इधर उधर और बड़ा ही प्यारा सा मौसम था।
0: रोली कल बहुत खुश थी। हाँ? आप भी बहुत खुश होंगे
1: क्योंकि मौसम अच्छा रहता है तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर हमारे दिमाग पर उसका बड़ा अच्छा असर रहता है। तो इतने अच्छे मौसम में जब आप सुन रहे हो गुड मॉर्निंग लखनऊ, खासतौर से रेडियो चल रहा है आपके घर में और अपने फुल वॉल्यूम पर सुन रहे हो इसे और अच्छी अच्छी बातें भी आप तक पहुंच रही है तो ये दिन और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है ना।
0: तो साहब इस ब्यूटीफुल दिन को और भी ब्यूटीफुल बनाए रखिए ऐसे ही और साथ ही साथ सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो जिस पर पहुंच रहा है खूबसूरत सा ट्रैक आपके नाम।
1: तो ब्यूटीफुल डे में ये ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो जो है धड़कन
0: लखनऊ की।

0: और ऐसी कोई सीक्रेट बात हो जो सारे जग से नहीं कह सकते, किसी एक से कह सकते हैं, और अगर ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाला कोई भी बंदा हमारी जिंदगी में होता है ना, तो यकीन मानिए आप सबसे ज्यादा लकी है।
1: क्या बात
0: और है? अच्छा, उससे भी ज्यादा लकी तब है जब आप कोई सीक्रेट किसी से शेयर करें और वो आगे किसी को शेयर ना करें। है ना,
1: तो
0: वो डबल लकी हो जाते हैं आप, है ना।
1: तो बात कहने सुनने की चली है, तो यहाँ पर कहने सुनने की बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपने जो बातें कही हैं उनको हम सुनाते हैं और अपने सभी साथियों तक पहुँचाते हैं।
0: अच्छा, मुझे थोड़ा सा दिमाग में एक बात कौंधी है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई सीक्रेट हम किसी से कहते हैं, भाई तुम्हें बता रही हूँ, किसी और से मत बताना। अगर एक बात ये मेंशन कर दी किसी और से मत बताना, तो इंसान के दिमाग में वहीं से बात घूमती कि नहीं, आज मैं जाके उसको बताऊंगी। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें भी जिंदगी को बड़ा खूबसूरत बना देती हैं।
1: मुझे लगता है जैसे ये होता है ना कि किसी को बताना नहीं, तो आदमी सोच लेता है हाँ किसी को बताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। उसके बाद मान लीजिए जैसे आप मिली, तो फिर उसके बाद हाँ मन में चल रहा है नहीं बताना नहीं, और बातों ही बातों में धीरे धीरे
0: बात निकली जाती है ना। बस आपको यही कंट्रोल करना है, अगर अपने बेस्ट फ्रेंड को बेस्ट बनाए रखना है ना, तो आपको सीक्रेट किसी और को नहीं बताना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आपने जो मेल्स हमको की है और मेल्स में इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें की है, सबसे पहले उसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स को। हमारे पास सबसे पहले रोशनी रावत का मैसेज आया है। क्या लिखती है,
1: क्या लिखती है,
0: क्या लिखती है,
1: क्या लिखती है, यही
0: ये लिखती है। जय श्री महाकाल सुस्मित सर जी, आप कैसे हैं? ईश्वर और कहीं नहीं, हमारे आसपास है, हमारे अंदर है। हमेशा मन प्रसन्न रखिए और जब मन प्रसन्न रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा नाम रोशनी रावत, ग्राम पोस्ट बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से, और फिलहाल चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं।
1: क्या बात है, थैंक यू रोशनी जी आपके इस मेल के लिए। और रेणु देवी जी ने अपना मेल भेजा है।
0: अरे एक लाइन बाकी रह गई, कहीं ऐसा ना हो कि नाराज हो जाए। इन्होंने लिखा है, नीलू शर्मा दीदी बबीता राव जी को राधे राधे बोल दीजिए।
1: भाई राधे राधे हमारी तरफ से। और देखिए रेणु देवी जी ने कहा है अपनी बात और सुनना उसे कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही हूँ और प्रोग्राम भी सुन रही हूँ। क्या बात है, ऐसे ही सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।
0: और राम मोहन गुप्ता जी का मैसेज आया है पंक्तियों में। इन्होंने लिखा है, रोली और सुस्मित के खिलखिलाते बोल गुड मॉर्निंग लखनऊ में मिठास देते हैं घोल, मिठास देते हैं घोल संग सुमधुर गीत सुनाते, मॉर्निंग मंत्रा संग आज का मुद्दा भी बताते, मुद्दा वही जो समाज प्रकृति हित हितकारी, जिस विषय पर रखनी होती हमें राय हमारी, हम सब पूरे मन से जुड़ अपनी सोच बताते, प्रिय आरजे दोनों जन मन तक इसे पहुंचाते, ज्यादातर कहते अपनी बात अपने ढंग से पर हम त्वरित काव्य सृजन के माध्यम से। राम मोहन गुप्त अमर लखीमपुर खीरी से। बहुत सुंदर पंक्तियां लिखकर भेजी आपने,
1: बहुत बहुत बढ़िया। और आपके मन के जो भाव है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं हमें। और कुछ पंक्तियां आपने आगे भी भेजी हैं उनको भी पढ़ देते हैं। जो आपने थैलेसीमिया डे पर कहा है आपने कि थैलेसीमिया है एक आनुवंशिक रक्त विकार, हीमोग्लोबिन कमी बनाए एनीमिया का शिकार, हम सब कर सकते हैं मदद रक्त का दान करके, कर सकते हैं जीवन खुशियों की रक्षा बढ़ के। तो आपने ऐसी कुछ और पंक्तियां भी लिखी, मैंने शॉर्ट में पढ़ दिया इनको। बहरहाल बहुत बहुत आपके मन के भावों के लिए, आपके इन पंक्तियों के लिए, इन शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: छवि राम सिंह जी का मैसेज आया है, मैं आपका दोस्त हूँ। और ये लिखते हैं कि जिला फरुखाबाद यूपी से आपका नियमित श्रोता भी हूँ और मैं बोल रहा हूँ रेनबो मेरे दिल की धड़कन, वेरी नाइस प्रोग्राम चल रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।
1: वाह वाह। और देखिए बड़ा अच्छा मेल आया है हमारे पास, किसका, रजनीश पासवान जी का। और ये इन्होंने रामपुर सीतापुर से भेजा है। कहते हैं ये कि मुद्दे से जुड़ते हुए इनका कहना है कि मैंने एक बार ब्लड डोनेट किया है और उस वक्त ये एमसीए कर रहे थे 2016 में, और इस पे इनका जो मतलब एक मन के भाव थे वो उस वक्त बहुत खुश थे। इन्होंने लिखा, इट फील्स सो हैप्पी आफ्टर डोनेटिंग ब्लड, ऑल फील्स गुड टू कंट्रीब्यूट फॉर सोशल वर्क, आई एम सेंडिंग माई इमेज। इन्होंने अपनी एक फोटो भी भेजी है जिसमें रक्तदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बताता है, ये प्रेरित करता है हमें और सभी लोगों को कि हमें आगे बढ़ करके इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और रक्तदान जरूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच रजनीश जी आपके इस प्यारे से मेल के लिए। और अभी ये सिद्धार्थनगर में पोस्टेड है, वहां से इन्होंने ये मेल हमें किया है।
0: फिलहाल आप जैसे सभी प्यारे प्यारे दोस्त जो हमें मैसेज कर रहे हैं करते

0: रही है। थैंक यू सो मच इसके लिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब से कुछ देर में हम जुड़ने की कोशिश करेंगे एक और हमारे खास एक्सपर्ट से।
1: जी हाँ, क्योंकि आज कुछ खास बातें हैं। आज है एक और बड़ा ही स्पेसिफिक डे, वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे। जी हाँ, इसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे हमारे एक्सपर्ट से जुड़ करके, तो आप सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में इस ट्रैक के बाद। एंजॉय कीजिए।

0: और म्यूजिकल ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि आज वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे है, जिस पर कि हमने कहा था कि आप आपके साथ अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे।
1: जी हाँ रोली, एक ऐसा दिन जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बढ़ाने का संदेश देता है, तो इस बारे में क्या कुछ चीजें हैं इसको जानने के लिए हमने बात कही थी कि हम अपने एक एक्सपर्ट से आपको मिलवाएंगे, उनसे बात करके और इस बारे में डिटेल जानेंगे। तो चलिए जुड़ते हैं सीधे।
0: हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी सिंह जी, जो है एमएस गायनेकोलॉजिस्ट, पीएचयू गोल्ड मेडलिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट है जाने माने हॉस्पिटल में, और साथ ही साथ लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, इनफर्टिलिटी एंड एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट हैं। तो हम स्वागत करते हैं। हेलो डॉक्टर साहिबा, आपका स्वागत है हमारे शो गुड मॉर्निंग लखनऊ में।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग रोली एंड सुष्मित, थैंक यू फॉर द इनविटेशन।
1: जी मैम, और आपको धन्यवाद कहते हुए, थैंक यू कहते हुए, आज जो ये डे है, जो एक खास मैसेज दे रहा है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
0: सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ओवेरियन कैंसर

0: को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है?
1: बिल्कुल रोली, आपने बिल्कुल बोला, सही बोला कि ओवेरियन कैंसर को साइलेंट किलर कहते हैं, और ये यूजली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है।
0: जी
1: यूजली जब ये अर्ली स्टेजेस में होता है तो विमेन की ये वैसे भी हैबिट होती है कि अर्ली सिम्टम्स जो भी होते हैं, जैसे थकान होना, ब्लोटिंग होना, पेट में भारीपन लगना, उनको वो कॉमन सिम्टम्स समझ के इग्नोर कर देती हैं। तो ये वेग सिम्टम्स की तरह अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है, और जब ये डिटेक्टेबल होता है, जब बड़े ट्यूमर या अंदर पानी भरना, जिसको हम एसाइटिस कहते हैं, इस तरह के सिम्टम्स वेट लॉस के फॉर्म में आ जाता है, तब ये बहुत
0: जी
1: एडवांस स्टेज में हो जाता है।
0: जी जी
1: तो इसीलिए कहते हैं कि ओवेरियन कैंसर इट विस्पर्स बिफोर इट्स स्क्रीम, तो इसलिए इसकी अवेयरनेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: जी
1: जी
0: ये कैंसर एक ऐसा कैंसर है क्या? इसके लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट, कुछ ऐसा तरीका है जिससे कुछ जानकारी मिल सके, शुरुआत में थोड़ा अवेयर हुआ जा सके?
1: वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अभी तक अनलाइक सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर के लिए कोई भी स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल नहीं है।
0: जी
1: ये सिर्फ अगर हम लोगों को जागरूक कर पाए कि इसके सिम्टम्स होते हैं और इसको आपको कभी इग्नोर नहीं करना है, और ये डिटेक्टेबल हो पाता है, तब ये अल्ट्रासाउंड या हायर इमेजिंग जैसे सीटी या एमआरआई में इसको डिटेक्ट करते हैं, और इसके बाद ट्यूमर मार्कर्स कराए जाते हैं। बट इसको पहले स्क्रीन कर लिया जाए, ये अभी तक ऐसा कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है।
0: जी
1: बट यस, एक स्टेटमेंट जरूर है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है किसी तरह के कैंसर की, तो ऐसी फीमेल्स को कभी भी अपने वेग सिम्टम्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
0: यानी
1: जी
0: बहुत सतर्क रहने की जरूरत है
1: जी बिल्कुल
0: इस
1: बिल्कुल।
0: दिशा में। ये मिथ मानी जाती है कि या फैक्ट है कि ओवरियन कैंसर ओल्ड एज में मिलता है, आपका क्या कहना है?
1: ये बिल्कुल सबसे बड़ा मिथ है कि कैंसर या ओवेरियन कैंसर सिर्फ ओल्ड एज में मिलता है।
0: जी
1: ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कॉमनली ओल्ड एज में डिटेक्टेबल होते हैं, ओल्ड एज में मिलते हैं, ज्यादातर एपिथेलियल टाइप के ट्यूमर्स होते हैं। बट आपको हैरानी होगी कि 10 से 15% जो ओवेरियन कैंसर होते हैं वो यंग एज में मिलते हैं, लेस देन 40 ईयर एज, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में मिलते हैं। एंड इवन जर्म सेल ट्यूमर्स या सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स टाइप के सेल्स, जो ट्यूमर्स होते हैं जैसे डिसजर्मिनोमा, टेराटोमा, यू विल बी सरप्राइज कि टीन एज ग्रुप में भी ये ट्यूमर्स डिटेक्ट होते हैं। तो स्पेशली अगर फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर या ब्राका जीन पॉजिटिव की हिस्ट्री है, एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री है, तो ऐसी फीमेल्स को इवन टीन एज ग्रुप में भी थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है कि
0: जी
1: कभी भी अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, और एक रूटीन स्क्रीनिंग अपना कराते रहें। अल्ट्रासाउंड कभी सिम्टम हो तो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड जरूर करा लें।
0: जी जी मैम, चलते चलते एक बात आपसे ज़रूर करना चाहेंगे। महिलाओं की बात है, ये महिलाओं से रिलेटेड एक बड़ी प्रॉब्लम है, और ऐसे में महिलाओं की जब बात चलती है तो वो अक्सर होता ये है कि परिवार की जिम्मेदारियों में खुद को पीछे रखती हैं, अपना ध्यान नहीं रखती।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ऐसे में
1: बिल्कुल
0: चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे जो भी श्रोता सुन रहे हैं, जो भी लिसनर सुन रहे हैं?
1: जी जी फाइनल मेरा मैसेज यही है, जैसे कि इस बार का थीम है नो वुमेन लेफ्ट बिहाइंड,
0: बिल्कुल,
1: तो इसको कंसिडर करके एक ही मैसेज है, प्लीज अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, लिसन टू योर बॉडी, वो कुछ ना कुछ आपको साइन सिम्टम्स देती है। इफ यू आर अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, तभी आप उसको टाइमली डिटेक्ट भी करवा पाएंगे, और अगर टाइमली डिटेक्ट हो जाएगा तो उसके लिए क्वालिटी केयर और ट्रीटमेंट ले पाएंगे। सो जस्ट लिसन टू योर बॉडी, डू नॉट इग्नोर एंड प्रायोरिटाइज योर हेल्थ।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई, और निश्चित रूप से हमारे जो भी साथी, जो भी श्रोता, जो भी लिसनर सुन रहे हैं, उनके लिए ये बातें बहुत बहुत काम की हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमसे शेयर किया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, शेयर की अपनी हेल्थ के बारे में, खासतौर पर वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे पर जो महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित आपने जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच रोली, थैंक यू सो मच सुषमित,
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू।
0: तो मित्रों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर शालिनी जी। डॉक्टर शालिनी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी थी एज एन एक्सपर्ट, जो कि है एमएस गायनेकोलॉजिस्ट, बीएचयू गोल्ड मेडलिस्ट है, और साथ ही साथ सीनियर कंसल्टेंट है ये एक हॉस्पिटल में, और साथ ही साथ ये गायनेक लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, इनफर्टिलिटी एंड एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट भी। तो इनसे आपने ये सारी जानकारी ली।
2: जी, तो अब इस बात के साथ ही साथ समय हो गया आगे बढ़ने का, एक ट्रैक आपके लिए बिल्कुल तैयार है, हम मिलते हैं इस गीत के बाद।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: है द टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बस खुशबू नहीं स्वाद भी है, शुद्धता का एहसास भी है।
2: एम के बंधानी हींग, हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: और दोस्तों, रोली कुछ देर पहले कह रही थी मौसम की बात, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मौसम जो अच्छा लग रहा है ना, ये कब तक अच्छा रहने वाला है, कब तक ऐसे ही रहेगा या फिर अपना बहुत जल्दी रूप बदलेगा, क्या कुछ होने वाला है, इससे जानने के लिए अगर आपके मन में कोई बात चल रही है तो काम आसान कर देते हैं आपका।
5: भाई, ये जो खुशनुमा मौसम है ये कब तक बना रहेगा, ये सबसे पहले हम पूछेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट जो कि रोज हमें मौसम की बातें बताते हैं।
4: जी हाँ, वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे करते हैं बात। दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग।
6: जी गुड मॉर्निंग।
5: गुड मॉर्निंग सर, तो बताइए आज का जो ये मौसम है ये ऐसा कब

0: तक रहने वाला है।
1: रोली बहुत खुश चल रही हैं इन दिनों, बड़ा अच्छा लग रहा था इन्हें कल भी और आज भी बड़ा अच्छा लगा सुबह इन्हें आते हुए।
0: और साथ ही साथ हमारी तमाम लिसनर्स हैं जो हमें मेल सेंड कर रहे हैं मौसम के बारे में, वो भी बहुत खुश हैं। तो आप बताएं कि कैसा रहने वाला है मौसम आगे भी?
2: जी, मौसम की बात करें तो मौसम जैसे कल थोड़ा हल्की फुल्की बारिश हुई, आज एक तरीके से मौसम साफ रहेगा, बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि मौसम थोड़ा खुशनुमा रहेगा। मतलब बहुत ज्यादा जैसे दिन में धूप रहेगी लेकिन ऐसा कोई बहुत ज्यादा चुभने वाला नहीं है। दोपहर में हल्का सा अगर आप धूप में रहेंगे थोड़ा चुभेगा, लेकिन शाम को रात को मौसम खुशनुमा बना है। ये आज कल परसों तीन दिन इसी तरीके से खुशनुमा रहेगा, लेकिन स्लोली स्लोली टेम्परेचर राइजिंग टेंडेंसी में रहेगा। दिन प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी गर्मी की तरफ अग्रसर होंगे, लेकिन जैसा कि पिछले एक हफ्ता दस दिन पहले जो गर्मी था उस टाइप का भी गर्मी नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो आने वाले चार पांच दिन में थोड़ा सा तापमान में बढ़ोतरी होगा, लेकिन उतना कोई एक्सट्रीम टाइप का नहीं होगा। और कुछ आज कल थोड़ा खुशनुमा रहेगा, बाकी उसके बाद फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है पांच दिन बाद, तो फिर से थोड़ा उतार चढ़ाव वाला मौसम बरकरार रहेगा। तो अच्छी बात यह है कि जो ये बेरेबल टाइप का गर्मी पड़ेगा, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम या हीट वेव,
0: जी
2: ऐसा कुछ नहीं। तो एक हफ्ते के लिए कहीं भी कोई ऐसा हीट वेव नहीं है और मौसम आजकल थोड़ा खुशनुमा रहा कि हल्का हल्का तापमान में बढ़ोतरी।
1: यानी कुल मिला के आपने रोली के मन की बात कह दी। हाँ। रोली खुश थी और रोली अभी आगे भी खुश रहने वाली हैं
0: कि एक हफ्ता अब हीट वेव नहीं है कम से कम, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, आपने ये जानकारी हम सभी को दी, हमारे सभी श्रोताओं को दी।
2: ओके, धन्यवाद
1: जी, थैंक यू सो मच दानिश जी, और आपके माध्यम से हम इस अपडेट तक जुड़ते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ओके, धन्यवाद
1: मित्रों। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, जिन्होंने बताया खुश हो जाइए, मौसम को एंजॉय कीजिए, मौसम अभी ऑलमोस्ट खुशनुमा ही रहने वाला है।
0: तो इस खुशनुमा मौसम में ये बड़ा ही प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए, इसे एंजॉय करिए। वापस आते हैं लौट कर गुड मॉर्निंग लखनऊ में, सुनते रहिए आपका अपना शो गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: जी, ये मौसम इतना औसम बना हुआ है, ऐसे में आपको बारिश पसंद है तो उसे एंजॉय करिए, और जो भी आपको अच्छा लग रहा है एंजॉय कीजिए। बहरहाल जब आप बाहर निकल रहे हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि संभल कर चलिए, एहतियात से चलिए। और ट्रैफिक में क्या कुछ अपडेट रहने वाला है इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रैफिक SI विकास सिंह जी, जानते हैं उनसे क्या कुछ रहने वाला है खास। विकास जी बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज वर्तमान में लखनऊ शहर में सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है सर। प्रत्येक प्रमुख चौराहों तिराहों मार्गों पर यातायात पुलिस मौजूद रहकर प्रतिबद्ध होकर सुगम यातायात संचालन करा रही है। एक डायवर्जन है समता मूलक और 1090 के पास में गोमती बैराज है सर, वहां पर बैराज का जो गेट होता है
0: जी जी।
1: वो पुराना हो गया है जिसे बदला जाना है, तो ये चार गेट बदले जाने हैं, तो इसका क्रमवार बदला जाता है, तो इसमें टाइम लगता है, तो ये लगभग एक महीने का समय इसमें लग जाएगा। तो आज से हम समता मूलक से बैकुंठ धाम वाला जो गोमती बैराज पुल होकर के यातायात था वो प्रतिबंधित रहेगा एक महीने के लिए, और जो भी इस मार्ग का प्रयोग करते थे उन्हें अब 1090 होकर के PNG बालू अड्डा होते हुए बैकुंठ धाम की तरफ आप जा सकते हैं, अथवा ग्रीन कॉरिडोर तिराहा का इस्तेमाल करते हुए आप जो है अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। ये डायवर्जन रहेगा, बाकी और कोई विशेष डायवर्जन नहीं है। यदि कोई डायवर्जन बनता है तो आपके माध्यम से हम श्रोताओं तक अपडेट अवश्य पहुंचाएंगे सर।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच, आपने इस पूरी जानकारी को हमारे साथियों तक पहुंचाया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो मित्रों ये थे हमारे साथ विकास सिंह जी, जिन्होंने ट्रैफिक के बारे में पूरी जानकारी दी और बताया कि क्या कुछ रहने वाला है। तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते रहिए, मौसम को एंजॉय करिए और निकल पड़िए अपने सफर पर जी। और साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी बात, आज है शुक्रवार और आज के शुक्रवार में एक ख़ास बात होती है, वो बात ये कि एक ख़ास प्रोग्राम आप तक पहुँचता है बात नगर की, जी हाँ, जिसपे हमारे साथ जुड़ती हैं लखनऊ की मेयर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, और उनसे जुड़ करके आप अपने जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान पाते हैं।
2: बिल्कुल, तो अपने शहर की समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं हमारे कार्यक्रम बात नगर की में 11 से 12 बजे के बीच होगा, और इस कार्यक्रम में आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 0522 2238 845, 0522 2238 852, ये दो नंबर से इन पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसके साथ हमें मेल भी कर सकते हैं।
0: जी हाँ, हमारी ईमेल आईडी है fmakashwani@gmail.com, और नंबर फोन नंबर एक बार फिर से आपको बता दें, लखनऊ का कोड याद रखिए 0522, और नंबर है 2238 845 और 2238 852।
2: तो बिल्कुल भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना ना भूलिएगा। ठीक 11 से 12 बजे के बीच में कार्यक्रम लाइव होगा और आपकी आवाज ऑन एयर जाएगी, आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं डायरेक्ट बात करके हमारे लखनऊ की मेयर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी से बातचीत करके
0: जी। और जगह यही होगी आपका अपना FM रेनबो 100.7 FM। फिलहाल एक ट्रैक, और इस ट्रैक के बाद मिलते हैं आपसे कुछ और बातों के साथ।

0: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है
1: भाई। अब मैच का क्या होगा?
0: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
2: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
3: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
2: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
4: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKL Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
5: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RKL Life की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
6: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
7: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट का लाभ।
6: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
8: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: जी आ गया.
1: चंदन मुबारक हो आपको.
0: ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच.
2: हैप्पी हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे.
3: क्या बात है क्या बात है रोली. और आज ये थोड़ा देर में आए हैं हैप्पी बर्थडे कहते.
2: अच्छा देर ही सही लेकिन कुछ खास काम अगर देर से होते तो बड़े मस्त हो जाते हैं.
3: बिल्कुल.
2: जैसे सेलिब्रेशन कोई भी हो अगर बहुत कम समय में उसको हमने प्लान किया हो और बहुत कम समय में इम्प्लीमेंट कर दिया हो है ना सारी प्लानिंग्स को तो वो खुशी कुछ अलग ही होती है.
3: बिल्कुल सही कहा रोली. बिल्कुल सही बात है. तो ये जो प्लानिंग है सेलिब्रेशन है ये बना रहना चाहिए. अगर आज आपका बर्थडे है फिर तो क्या बात है क्या कहने.
2: और ये जो आवाज में तेजी आप महसूस कर पा रहे हैं क्यों है बताएं आपको.
3: क्यों?
2: क्योंकि अभी अभी चाय का एक सिप.
3: आहा ये सीक्रेट है. ये तो वाकई में बनता है. बिल्कुल सही कहा.
2: तो आज जो जिनका बर्थडे है वो भी मतलब चल रहा है उनका कुछ ना कुछ चल रहा है.
3: चाय पिए वो लोग.
2: कभी चाय कभी कॉफी कभी अच्छा। कुछ अच्छी सी डिश कभी किचन में. हाँ किचन के दरवाजे पर कदम रखते हैं खुशबू जो हलवे की आती है ना माँ के प्यार की जो उसमें मिठास होती है वो हलवा खा के क्या बात है.
3: आप छोड़ेंगे नहीं आज मतलब सारी चीजें बिल्कुल आंखों के सामने आप तैरा देंगे.
2: बिल्कुल. और क्या माँ प्यार से जब हलवा बनाती है बर्थडे के दिन में कि भाई भगवान का भोग लगा करके उसके बाद जरा सा हलवा मुंह में डाल के तब बाहर जाना उससे पहले अगर बाहर गए तो जोर का चाटा लगाऊंगी. इस गुस्से में भी प्यार होता है. तो भाई आज जिनका हैप्पी बर्थडे उनको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और इसके साथ ही जिनकी एनिवर्सरी
3: उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. उनके लिए तो ज्यादा जरूरत है.
2: अच्छा वहाँ पे हलवा मतलब पत्नी बनाती है और थोड़ा सा डांटती है ना.
3: अब ये तो सीक्रेट है. हाँ, कौन बनाता है हलवा.
2: हाँ, ये तो सीक्रेट हमारे श्रोता जो है ना वो बता सकते हैं हमसे शेयर कर सकते हैं ना. तो ऐसे ही हलवे खाते रहिए मीठी मीठी डिशेस खाते रहिए बहुत ज्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी अपने दिन को मीठा बनाते हुए दिन सेलिब्रेट करते रहिए अपने सारे जिंदगी के
3: रिश्तों में मिठास बनाए रखते हुए एंजॉय करिए आज का दिन. बहरहाल किन के साथ आप अपना बर्थडे शेयर करते हैं उनका भी जिक्र कर देते हैं. तीन नाम जिनका आज जिक्र करना चाहेंगे. सबसे पहला नाम एक ऐसा नाम है जो वाकई में बहुत जबरदस्त नाम है संगीत के क्षेत्र से जुड़ा. ठुमरी गायकी को आम नागरिकों और श्रोताओं तक पहुंचाने वाली सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी जी की आज जयंती है.
2: और साथ ही बात करें तो भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक चिन्मय आनंद सरस्वती जी की आज जयंती है.
3: इसके अलावा 90 के दशक में हम्मा हम्मा और ओ मेरी मुन्नी जैसे गानों से हर किसी को दीवाना बनाने वाले रेमो फर्नांडीज का आज बर्थडे है.
2: तो याद आया आपको रेमो कौन.
3: अभी हम याद दिलाएंगे एक गाने के साथ. और इसके अलावा मनोरंजन जगत के दो मशहूर गायिका प्रकृति और सुकृति कक्कड़ आज अपना बर्थडे मना रही हैं. तो ये वो नाम है जिनके साथ आप अपना बर्थडे शेयर करते हैं. और इसके साथ ही साथ हमने कहा था आपको आवाज सुनवाएंगे किसकी रेमो की. तो एंजॉय करिए ये ट्रैक. मिलते हैं इस गीत के बाद.
2: ये विजल सुनकर वो दौर याद आ गया ना आपको 90s वाला.
3: बिल्कुल.
2: Enjoy this track only on 100.7 FM Rainbow. Joy Dhadkan.
3: लखनऊ की.

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।
4: जी हाँ, आप एंजॉय कर रहे हैं इस समय गुड मॉर्निंग लखनऊ, जो आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो है। और आज इस प्रोग्राम में आपका साथ दे रहे हैं आपके दो दोस्त, मैं हूँ आरजे रोली शुक्ला
5: और मैं सुस्मित। और मेरे चलने का समय बहुत बहुत नजदीक है, क्योंकि 10 बजे ये मतलब प्रोग्राम अपना,
4: यहाँ आपसे इतनी सारी बातें अभी बाकी रह गई और आप एक ही बस जाने के बारे में सोच रहे हैं।
5: जी हाँ, लेकिन चलते चलते एक जरूरी बात जरूर आपसे बता दूं, आज एक खास प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा बात नगर की, जिसमें आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। नगर निगम से जुड़ी हुई किसी बात से अगर कोई ऐसी बात है जिस आप सोच रहे थे कि कैसे इसका हमें सॉल्यूशन मिलेगा, तो आज मौका है आपके हाथ।
4: भाई, अपने घर से जब भी हम बाहर जाते हैं, अपने घर के पास की सड़क हो, अपने मोहल्ले में कोई बात है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको अपने लगता है कि हाँ आपको थोड़ा सा उसमें कोई परेशानी है या कोई भी तरीके का सॉल्यूशन चाहिए, तो ये वही समय है जब आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे प्रोग्राम बात नगर की में आप बात करिए, अपने शहर से संबंधित किसी भी समाधान को आप पा सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। 11 से 12 बजे के बीच में 100.7 FM रेनबो आपके लेकर के आता है ये कार्यक्रम हर दूसरे और चौथे शुक्रवार को, जिसमें आप मुखातिब होते हैं डायरेक्टली लखनऊ की मेयर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी से।
5: जी हाँ, तो आप जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए दो काम, आप दो तरीके हैं जिनको अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो आप हमें फोन कर सकते हैं, नोट कर लीजिए हमारे फोन नंबर 0522 लखनऊ का एसटीडी कोड, और नंबर है हमारे 2238845 और 2238852।
4: तो बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलेगा, ठीक 11 बजे से 12 बजे के बीच में।
5: आप दूसरा काम कर सकते हैं, मेल, और मेल करना होगा fmakashwanilakhnu@gmail.com पर। जी हाँ, यह दूसरा तरीका, इन दोनों तरीकों से आप हमें अपनी बात पहुंचा सकते हैं। फिलहाल बहुत से साथी हैं जिनकी बातें अभी बाकी हैं, और इसमें सबसे पहला मेल जो मेरे सामने है वो है सुनील प्रांजल जी का, विकास नगर लखनऊ से। देखिए, इन्होंने भी बड़े शायराना अंदाज में अपनी बात कही है गुड मॉर्निंग कहते हुए।
4: क्या कहा
5: सुनील जी? गुड मॉर्निंग आपको भी। सबसे पहले कहते हैं, हम किसी बीमारी के बारे में नहीं जानते हैं और बीमारी के बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं। रक्तदान करना पुनीत कार्य है ये मानते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, ध्यान योग करते हैं, खुश रहते हैं और लोगों में खुशी बांटते हैं। क्या बात।
4: और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास आर्यन वर्मा ने मैसेज किया है, टाइगर खान ने मैसेज किया है, और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है इन्हें, और मुद्दे के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा है। वारिस अली खान जी ने मैसेज किया है और इन्होंने बोला है कि आवाज़ की दुनिया के प्यारे दोनों दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम, और लिखते हैं जिसे हम चाहते रहे मुद्दतों से उसे कोई निभा के। अच्छा ठीक है, और आपने ये लिखा है कि भाई मैं 7:45 से FM बड़ी शिद्दत से सुन रहा हूँ, आज का सदाबहार गीत मुझे पसंद आया और लगता है JML में रोली जी की पसंद के गीत बज रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं,
5: बहुत नहीं, जल्दी नहीं। आपने कैसे जाना?
4: ये लिखते हैं कि सिलेक्शन बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच वारिस अली खान जी। और हमारे पास गुलफशा सिद्दीकी ने मैसेज भेजा है।
5: जी, गुलफशा सिद्दीकी जी कहती हैं गुड मॉर्निंग आप सभी को, और साथ ही साथ कहां से, संडीला से ये प्रोग्राम सुन रही हैं। मौसम बहुत अच्छा है और ऐसे में प्रोग्राम सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच।
4: और हमारे पास बाबू अंसारी ने मैसेज भेजा है, लिखते हैं गुड मॉर्निंग जी सर और मैम, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और हम सुन भी रहे हैं प्रोग्राम लगातार।
5: क्या बात है। श्यामू चौहान जी ने भी कुछ पंक्तियां भेजी थी दरियाबाद बाराबंकी से। श्यामू चौहान, राजकरण, सर्वित, मोनिका, प्रतिमा, सावित्री और परिवार के सभी सदस्य सुन रहे हैं। इनका कहना है रक्तदान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आज जानने को मिली, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच।
4: और साथ ही इन्होंने सुबह की चाय के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, ठीक है हम पढ़ लेंगे, बड़ी अच्छी बातें हैं, फिलहाल समय की कमी है तो
5: आगे बढ़ते हैं अपने अगले साथी के साथ। नीलू यादव जी ने बंगला बाजार से अपना मेल भेजा है, कहती हैं रक्तदान मैंने भी किया है कई बार, थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जो माता पिता से बच्चों में होता है, निश्चित रूप से ये बातें हम जान चुके हैं। और कहते हैं कि रक्तदान न केवल जरूरतमंदों की रक्षा करता है बल्कि नियमित रूप से ऐसा करना रक्तदाता के शारीरिक और मानसिक

0: स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। रक्तदान जरूर करें, निस्वार्थ भाव से करें। और आज ये इन्होंने इम्पोर्टेंट बात कही, थैंक यू सो मच।
1: हमारे पास चलते चलते देखिए सेवा बानो जी का मैसेज आया, लिखते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, सर हम सिस्टर्स हुजबा अंसारी, उम्र अंसारी, श्रीनगर लखीमपुर से मेल कर रहे हैं, आप दोनों प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रहे हैं, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू। घनश्याम सिंह जी ने भी अपना मेल नारायण नगर फैजाबाद रोड से भेजा है, और कोमल तिवारी जी ने गुड मॉर्निंग भेजा है।
1: भाई थैंक यू सो मच आप सभी को हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए।
0: और हाँ, ये सुनील कुमार जिला लखीमपुर से हैं और इन्होंने भी गुड मॉर्निंग कहा है सभी को।
1: तो भाई अब हमारी तरफ से आपको थैंक यू सो मच, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ। और दोस्तों आपको एक बार फिर से बता देते हैं, और वो बात ये है कि हमारे कार्यक्रम 11 से 12 बजे के बीच में जो कि है कार्यक्रम बात नगर की, इसमें जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा
0: जी। तो इसके बारे में बता चुके हैं आपको, समय याद रखिएगा 11 से 12, और नंबर याद रखिएगा 0522 एसटीडी कोड, और नंबर है 2238 4545 2238 8552। और इसी के साथ मेरे यानी सुस्मित के चलने का समय आ गया है इस प्रोग्राम से, रोली रहेंगे आपके साथ अगले प्रोग्राम में, तो आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो जो है
1: एक हो गए हम जो है धड़कन लखनऊ की। बाय सुस्मित,
0: बिल्कुल बाय बाय।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। सरकार ने प्रदेश भर में लगे सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया, सभी स्मार्ट मीटर तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड प्रणाली में बदले जा रहे हैं। अब उपभोक्ताओं को बिजली इस्तेमाल करने के बाद ही बिल मिलेगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बिल SMS और व्हाट्सएप के जरिए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर और बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई से 30 जून तक अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर विशेष कैंप व सहायता केंद्र लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2024 के आंकड़ों ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को दर्शाया है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में आपराधिक मामलों में उत्तर प्रदेश का देश में 18वां स्थान है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि गत 9 वर्षों में आधुनिक पुलिस स्टेशन, सतर्क एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने पर समर्पित महिला हेल्प डेस्क, कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट

संगठित अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है। बिजनौर में जिलाधिकारी जसजीत कौर ने स्वगणना में शामिल होकर जनगणना अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के पहले दिन जिले के 1000 से अधिक नागरिकों ने पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर ली है। एडीएम वान्या सिंह ने बताया कि स्वगणना की अवधि समाप्त होने के बाद 22 मई से 20 जून तक प्रगणक घर घर जाकर डेटा सत्यापित करेंगे और छूटे हुए परिवारों की जानकारी दर्ज करेंगे। जिले में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए 14 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और अंत में चित्रकूट में जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने मंदाकिनी नदी में चलने वाले प्रत्येक नाव में लाइफ जैकेट की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि बिना लाइफ जैकेट किसी भी श्रद्धालु या तीर्थयात्री को नाव यात्रा ना कराई जाए। जिलाधिकारी ने नाव संचालकों को पंजीकरण कराने और सुरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन नावों को मरम्मत की जरूरत है उनके लिए सीएम युवा के तहत लोन देने की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने नदी के किनारे स्पीकर सिस्टम को बेहतर करने और सीसीटीवी की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला बुलेटिन आप 11 बजे सुन सकते हैं। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

और दोस्तों मैं एक बार फिर से यानी मैं आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला आप सबके बीच एक बार फिर से आ चुकी हूँ। 10:04 हो रहे हैं सुबह के और ये समय है किसका, वही आपकी वही फेवरेट प्रोग्राम जिसमें आप सुनते हैं एक से बढ़कर एक गाने, जी हाँ सुपर हिट सॉन्ग्स। तो बस इस म्यूजिक एक्सप्रेस में आप सवार रहिए और इंजॉय करते रहिए ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो जो है धड़कन लखनऊ की।

0: और दोस्तों अभी म्यूजिक यूं ही चलता रहेगा, जारी रहेगा। बीच में बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब से कुछ ही देर में यानी कि ठीक 11 से 12 बजे के बीच में आप सुनेंगे कार्यक्रम बात नगर की, लखनऊ नगर की समस्याओं का जो भी समाधान है आपको मिलेगा। आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में लखनऊ के मेयर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी होंगे और आप उनसे डायरेक्ट अपने कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हैं और उसका समाधान आप पा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा हमारे फोन नंबर्स पर कॉल। लखनऊ का कोड है 0522 और हमारे स्टूडियो का नंबर है 2238845 और 2238852। ये दो फोन नंबर्स हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी है fmakashwanilakhnau@gmail.com। ये मेल आईडी पर आप अपनी कोई भी लखनऊ नगर से संबंधित कोई भी समस्या है वो लिखकर भेज सकते हैं, आपको समाधान 11 से 12 के बीच में मिलेगा। तो जुड़ना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, समय है 11 से 12 यानी आपसे कुछ देर में। तो बस बने रहिए 100.7 FM रेनबो पर जो है धड़कन लखनऊ की।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश में उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। 4543 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में करीब 15,75,760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें 12,333 अभ्यर्थी अगले चरण के लिए सफल घोषित किए गए हैं। ये परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी। भर्ती बोर्ड के मुताबिक दस्तावेज जांच और शारीरिक परीक्षण मई के तीसरे सप्ताह में किया जाएगा। इसकी पूरी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। मंत्रालय ने बताया कि यह बैठक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय कौशल प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र की रूपरेखा, भूमिका और दायित्व तय करने पर विचार विमर्श होगा। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से वाणिज्यिक उड़ान

सेवाएं शुरू हो जाएंगी। 15 जून को पहली फ्लाइट लखनऊ से नोएडा के लिए रवाना होगी। ये उड़ान लखनऊ से सुबह 7:05 पर रवाना होकर सुबह 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए भी उड़ान शुरू की जाएगी। और अंत में कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना के तहत जौनपुर में कृषि विभाग 21 एग्री जंक्शन खोलेगा। इन केंद्रों में किसानों को मृदा परीक्षण, उर्वरक उपयोग की तकनीकी जानकारी, उच्च गुणवत्ता के बीज, जैव उर्वरक, कीटनाशक आदि सामग्री मिल सकेगी। साथ ही लघु कृषि यंत्र किराए पर भी उपलब्ध होंगे। प्रत्येक एग्री जंक्शन केंद्र की लागत लगभग 4,22,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसमें 3,05,000 रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा पहले वर्ष में किराया सहायता के रूप में अधिकतम 24,000 रुपये और प्रशिक्षण व अन्य खर्च के लिए भी सहायता दी जाएगी। इन केंद्रों के माध्यम से कृषि से स्नातक करने वाले युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है।

सुबह के 11:03 हो रहे हैं और दोस्तों आप कार्यक्रम बात नगर की हम आपके लिए लेकर आने वाले थे लेकिन आपसे माफी चाहेंगे अपरिहार्य कारणों से हमारी मेयर श्रीमती सुषमा खरकवाल किन्हीं कारणों से हमारे स्टूडियो में उपस्थित नहीं हो पाई हैं लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान देने के लिए वो जल्द ही स्टूडियो में आएंगी और आपके सवालों का जवाब देंगे। फिलहाल हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं और ये समय आप हमें अपने मेल के माध्यम से या हमें कॉल के माध्यम से हमसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी की से जुड़े किसी भी पहलू पर बातचीत कर सकते हैं। साथ ही आप हमें संदेश भी दे सकते हैं अगर आपको देना है तो बस करना क्या है आपको वही नंबर्स डायल करने हैं और उसके साथ साथ हमारी ईमेल आईडी fmakashwani@gmail.com इस पर आप हमें अपनी मेल भेज सकते हैं। और फिलहाल एक बड़ा ही प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए मैंने क्यू किया है तो चलिए एंजॉय करते हैं ये ट्रैक।

तो दोस्तों आपको बता दूं कि हम बाटनगर की कार्यक्रम में बात करने वाले थे हमारे लखनऊ की मेयर महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी से. अपरिहार्य कारणों की वजह से वो हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाई हैं. फिलहाल किसी दिन आपसे फिर मुलाकात जरूर होगी उनकी और आप अपनी समस्याओं के समाधान ले सकते हैं. कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं. हमारे पास संदेश आप भेज सकते हैं और हमारे फ़ोन इन नंबर पर कॉल्स कर सकते हैं. जी हाँ, फ़ोन इन नंबर हमारे वही हैं 0522. इसका जो कोड है लखनऊ का आप वो लगा सकते हैं 2238 2482 2852. ये नंबर है, इस पर डायल कर सकते हैं. लेकिन फिलहाल हमारे बीच में एक हमारे प्यारे लिसनर हैं जिन्होंने हमें मेल भेजा है. उन्होंने लिखा है, मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहा हूँ. संदेश देना चाहता हूँ कि 18 साल की कम उम्र के बच्चों को बाइक या कार ना चलाने दें और छोटे बच्चों को जब रोड पर लेकर चलें तो उनका हाथ ज़रूर पकड़ लें. अपने बच्चों को यातायात नियम ज़रूर बताने चाहिए. आजकल लोग बाइक चलाते समय हेलमेट पीछे बैठने वालों को पकड़ा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें. और बल्कि आसिफ जी, मैं तो ये कहती हूँ कि जो लोग बैक सीट पर पीछे बैठते हैं उनको हेलमेट लगाना चाहिए. दोनों को हेलमेट लगा कर ही चलना चाहिए. और वाकई में अगर सड़क पर हम चलते हैं तो ऑब्वियसली अपनी सुरक्षा करते हुए हम साथ ही साथ कई और लोगों की भी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि कई बार हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है उसकी चपेट में दूसरे भी आ जाते हैं, ऐसा होता है ना. तो बस इसी तरह से आप अपनी बातें हम तक पहुँचाते रहिए. मंच वही है आपका अपना 100.7 FM रेनबो, जो कि है धड़कन लखनऊ की. और इस समय आपके साथ आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी आरजे, आपकी होस्ट रोली शुक्ला है आपके साथ इस प्रोग्राम में. तो बस आपसे कुछ ही देर में हम अपने जल्दी आज के पहले कॉलर से बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे म्यूजिकल.

0: और बिल्कुल जब गुनगुनाने की बात आती है तो रेनबो सबसे पहले आ जाता है हमारी जुबान पर, है ना, क्योंकि आपका जो रेडियो है वो आप बताते भी हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आपका साथ ही बनता है। जी हाँ, हमारे साथ भी यही है, रेडियो हमारे साथ ही रहता है और ये मान के चले कि रेडियो में तो हमारी जान बसती है। फिलहाल एक कॉलर है जो कि हमसे कुछ कहना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सत्यम कुमार बात कर रहा हूँ, ग्रामो पोस्ट परसेंडी कैसरगंज बहराइच से।
0: सत्यम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, कहिए क्या कहना चाहते हैं। हाँ,
1: मैं आज बहुत खुश हूँ।
0: क्या बात है, तालियां कर दें आपके लिए, क्लैपिंग कर दें।
1: हाँ, मैं जब कॉल करता था तो मैं हमेशा यही सोचता था कि लोग मेरा भी नाम ले। कई लोग कॉल करते थे, तीन चार लोगों का, अपने दोस्तों का नाम लेते थे। कल मेरा भी एक लिसनर ने नाम लिया।
0: क्या बात है,
1: और मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो, मतलब आपके लिए तो एक कहते हैं ना कि जब हम किसी बात का इंतजार करते हैं और वो हो जाए और हमें देखने को मिल जाए, स्पेशली हम उस केस में बड़े लकी हो जाते हैं, तो आप लकी हो गए, है ना
1: जी? मैम बिल्कुल।
0: तो सत्यम जी ये बताइए अपना संदेश बताने से पहले कि आप क्या करते क्या हैं।
1: मैं ब्लाइंड हूँ, घर में लेटा रेडियो सुना करता हूँ।
0: अच्छा, तो ठीक है, रेडियो सुनना तो बहुत बढ़िया, बड़ा काम करते हैं आप, बहुत प्यारा काम करते हैं आप, है ना
1: जी? बिल्कुल।
0: तो कहिए क्या कहना चाहते हैं आप, क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग गाड़ी चलाते हैं, तो कुछ लोग बहुत तेज चलाते हैं, तो कृपया करके धीमी स्पीड में चलाइए, क्योंकि हमारे यहाँ कल अभी शाम को हमारे गाँव से कुछ दूरी पर एक एक्सीडेंट हुआ
0: जी,
1: यहाँ पर दो लोगों की मौत उसी जगह पर हो गई, तुरंत समय ही नहीं लगा, ऐसा एक्सीडेंट हुआ। तो इसीलिए गाड़ी थोड़ा स्लो चलाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जिंदगी है तो सब कुछ, नहीं तो कुछ नहीं है मैम।
0: बिल्कुल, जिंदगी है तो सब कुछ है ना, हमारे पास मौका है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। अब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे होगा,
1: नहीं रहेगा तो क्या करेंगे।
0: बिल्कुल सही बात है, अपने जीवन की रक्षा स्वयं करना हमें आना चाहिए। और थैंक यू सत्यम जी, आपने हमें कॉल किया।

0: अपना प्यार यही बनाए रखिएगा। ओके, और रेनबो
1: मेरा नाम लिया था, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा।
0: हाँ ले लीजिए
1: जी मैम, उनका नाम
0: ले लीजिए
1: सर, समा परवीन अंसारी, सीतापुर से है वो
0: जी। थैंक यू सो मच सत्यम जी,
1: बहुत धन्यवाद मैम।
0: गाना सुनिए ठीक है आपके लिए?
1: बिल्कुल
0: ओके,
1: अच्छा गाना बजाया आपने,
0: बिल्कुल थैंक यू सो मच। तो आप जैसे सभी लिसनर्स के लिए हम प्यारे प्यारे सॉन्ग्स ही लाते हैं ताकि आप एंजॉय कर सकें। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, आप सुन रहे संदेश आपके गीत हमारे आरजे रोली शुक्ला के साथ।

तो इतना अच्छा सॉन्ग थिरक रहे थे आप भी, और थिरक रही थी मैं भी यहाँ स्टूडियो में, और थिरकने के लिए कोई और भी आ चुका है हमारे स्टूडियो में, हमारे साथ बना हुआ है भाई। कौन है ये, और ये प्यारी सी मुस्कान के साथ कौन मुझे देख रहा है? ये सीक्रेट है हाँ, तो ये जो सीक्रेट है बस रिवील करूंगी जब मैं टाटा बाबा बोलूंगी ना, तभी ये सीक्रेट रिवील करूंगी। लेकिन उससे पहले इनकी प्यारी मुस्कान स्टूडियो में मेरा साथ देती रहेगी, आपको बता दूं। और देखिए इशारे भी हो रहे हैं, मुझ तक पहुंचाए जा रहे हैं मुस्कुराहटों के साथ हुए। और इन्होंने जानबूझ करके कहा कि भाई मैं बोलूंगी नहीं, नहीं तो ना सबको पता चल जाएगा कौन हूं मैं। अच्छा, ऐसी लुका छुपी काफी अच्छी लगती है ना अपनी जिंदगी में, कभी कभी बचपना भी, एक बचपना वाला जो अंदाज है ना वो भी आना चाहिए। हम कितने भी बड़े हो जाए लेकिन जो हमारा बचपन के दिन होते हैं ना वो सबसे अच्छे होते हैं, तो इनको भी जीते रहना चाहिए साथ में, क्या कहते हैं? हाँ, हमारे पास वकील अहमद का मैसेज आया है, लिखते हैं नमस्ते, आपकी आवाज अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच, आपको अच्छी लगती है और हमें आपका ये अंदाज अच्छा लगता है कि आपको आवाज अच्छी लगती है। और आप लिखते हैं कुछ लोग लाठी डंडों से आवारा जानवरों को मारते हैं, मारना नहीं चाहिए, हम सबको उनके लिए पानी खाने की जो कुछ कर सके, जो व्यवस्था हो सके वो करनी चाहिए। ये जिला सीतापुर से इन्होंने मैसेज किया है। और इसके साथ आपको बता दूं कि राग रामेश्वर हमें मैसेज करते हैं कि गोमती का किनारा मिले और मलिहाबादी आम मिल जाए, जीते जी तुम्हारे साथ लखनऊ की एक शाम मिल जाए। क्या बात है, लखनऊ की एक शाम, वैसे कहते हैं कि यहाँ की शाम बहुत खूबसूरत होती है ना, और लखनऊ की शाम में अक्सर जब हम सड़कों की भीड़ पर निकल जाते हैं तो कहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे एकदम इस समय पके पके आम आ गए हैं, कुछ वैरायटीज़ आम की आ चुकी है, और भाई और वैरायटीज़ आने के बिल्कुल इंतज़ार में हम हैं कि भाई अब जल्दी से आम वाला जो प्यारा सा मीठा मीठा सीज़न है वो इन्जॉय करेंगे। और इस

साथ साथ फिर उसके बाद जामुन का सीजन आ जाएगा. मतलब कि अपने साथ साथ ये मौसम बड़ी प्यारी खाने की चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें, और कभी धूप, कभी छांव, कभी बादल, कभी बारिश लेकर के आता है. तो हर मौसम अपने आप में बड़ा खूबसूरत होता है. क्यों, क्या कहते हैं आप सब इसके बारे में? हमारे पास श्रेया कुमारी का मैसेज आया है रांची झारखंड से. आहा, इतनी दूर से मैसेज आया, क्या बात है. ये लिखती, लेकिन लिखती है कि मैं RDSO आलमबाग लखनऊ से सुन रही हूँ. और ये लिखती है, हेलो मैम, नमस्ते. नमस्ते श्रेया जी, कैसी हैं आप? ये लिखती है कि रांची झारखंड में बाइक सिर्फ दो लोग ट्रैवल कर सकते हैं और दोनों के सर पर हेलमेट होना कंपलसरी है. और अगर हेलमेट लगाया है और दूसरा नहीं लगाया तो सीधे ई चालान काट के भेज दिया जाता है, मोबाइल में मैसेज आ जाता है. और मैंने लखनऊ के बाइक चलाने वाले कुछ लोग हेलमेट लगाते हैं और कुछ लोग नहीं लगाते. मेरा संदेश है, हेलमेट अपने और अपने परिवार के लिए लगाया करें प्लीज़, क्योंकि आप हैं तो आपका परिवार है, सुरक्षित है, अच्छा है ना. थैंक यू सो मच, आपने हमें मैसेज किया श्रेया जी. और हमारे पास पिंकू सोनी का मैसेज आया है, क्या बात है. लिखते हैं, हेलो दीदी जी, नमस्ते, मैं पिंकू बोल रहा हूँ, टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रहा हूँ. मेरा कहना है कि जैसे लोग शादियों में जाते हैं लिफाफा देते हैं, ठीक उसी तरह से किसी को अस्पताल में जब देखने जाएं तो लिफाफा लेकर जाएं, क्योंकि उस समय व्यक्ति को पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. सच कह रहे हैं आप भाई, ऐसे समय पर लोग जो है, कई बार लोग फ्रूट्स भी ले जाते हैं, लोग फूल ले जाते हैं. हाँ, ये सच बात है कि इस तरह से अगर हम बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करने लगें तो फिर क्या बात है. और वाकई में हम सबको एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार से रहना चाहिए. आफ्टर ऑल ये जो इंसानियत है वो प्यार की वजह से ही तो कायम रहने वाली है.

हमारे साथ हमारे दूसरे कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो।

0: हेलो जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मोहम्मद आसिफ अंसारी, हैदराबाद तेलंगाना से बात कर रहा हूँ मैम।
0: ओके, कैसा मौसम है वहां
1: मैम
0: पर?
1: आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं।
0: थैंक यू सो मच। कहाँ से बोल रहे हो?
1: हैदराबाद तेलंगाना से।
0: हाँ, आपने बताया, मतलब कैसा मौसम है वहां पर? मैं पूछने जा रही थी कैसा
1: बहुत
0: मौसम
1: गर्मी,
0: है और मैंने
1: बहुत
0: पूछ
1: गर्मी हो
0: लिया।
1: रही है
0: बहुत गर्मी हो रही है।
1: जी,
0: तो
1: बारिश नहीं हो रही एक्चुअली।
0: अच्छा, तो हो सकता है जल्दी बारिश हो वहां पर। तो कहिए, क्या
1: ऐसा
0: कहना
1: तो लग
0: चाहते
1: रहा है
0: हैं?
1: कि बारिश होगी दो चार दिन में, कहना
0: लग रहा है धूप छा,
1: यही चाहते हैं। धूप कम है आज।
0: हाँ वही धूप छाव वाला मौसम बन रहा होगा ना।
1: हाँ जी,
0: तो आप मौसम के अपडेट तो सुनते ही हैं, मौसम के अपडेट हम रोज देते हैं
1: बिल्कुल।
0: अपने गुड मॉर्निंग में।
1: एक्चुअली एक्चुअली मैं लखनऊ का ही, उधर बाराबंकी का रहने वाला हूँ ना, तो उधर का तो FM सुनते हैं, तो उधर का पूरा पता रहता है
0: तो FM कितने कितने मतलब शिद्दत से सुनते हैं आप?
1: जी। शिद्दत से क्या, सुबह ओपन करते हैं और शाम में बंद करते हैं,
0: मेरा ये पूछने
1: पहले
0: का
1: घंटा
0: मतलब
1: तो
0: था कि
1: हेलो
0: कौन सा शो आपको बड़ा प्यारा लगता है।
1: FM है, मार्टी और वो प्रोग्राम आता है एक रजनीगंधा रात में, वो बहुत अच्छा, उन्होंने ओल्ड गाने बजाते हैं ना तो बहुत अच्छा
0: अच्छा,
1: लगता
0: तो
1: है।
0: आपको मॉर्निंग के सॉन्ग्स नहीं है, मतलब बस मॉर्निंग वाले प्रोग्राम नहीं सुनते आप?
1: नहीं, माटी की सुगंध सुनते हैं, बहुत अच्छा
0: और
1: लगता है,
0: सदाबहार गीत सुबह आता है,
1: वो भी सुनते हैं।
0: क्या बात है।
1: मॉर्निंग मसाला सुबह का
0: अच्छा,
1: नाश्ता।
0: तो आज आप क्या कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, संदेश क्या देना चाहते हैं हमारे?
1: संदेश मेरा ये है कि आंधी बारिश चल रहा है, तो बारिश में और आंधी में पेड़ के नीचे ना खड़े हो, ना बाइक ना कार, वो पेड़ के नीचे नहीं पार्क करना चाहिए, हाँ, क्योंकि जनहानि हो सकती है मैम।
0: ठीक है, थैंक यू सो मच।
1: मैम कुछ
0: और
1: दोस्त है, नाम ले लें
0: ले लीजिए, क्यों नाम ले लीजिए, क्योंकि
1: स्टार्ट
0: आपका गाना प्ले मतलब आपके लिए गाना प्ले कर दिया मैंने
1: जी मैम।
0: जी।
1: साहिबा अंसारी हैं, साधिया अंसारी हैं, समा परवीन अंसारी हैं, और मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद तालिब राजा कटरा के, और मोहम्मद सैद भाई रामपुर कटरा के। ओके
0: थैंक यू सो मच। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा हमारे FM के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: बस खुशबू नहीं स्वाद भी है, शुद्धता का एहसास भी है।
3: MK बंधानी हींग, हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे, और इस समय हमारे पास महेंद्र पांडे जी का मैसेज आया है और ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, हाय, लिखते हैं कि बहराई से आपकी आवाज़ सुनना बहुत पसंद है और अपनी पसंद का कोई भी सॉन्ग प्ले कर दीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच। फिलहाल जो भी आप ट्रैक सुन रहे हैं सब हमें पसंद है, और वाकई में जो रेनबो पर आप संगीत सुनते हैं वो सब हमारी चॉइस का होता है और आपकी चॉइस का होता है। हमारे आरजेज इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स जो प्ले करते हैं वो आपकी वजह से ही तो करते हैं, क्योंकि आप भी तो कभी ना कभी ऐसे ही सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं जो कि हम फिर से वापस में किसी और शो में आपके लिए प्ले करते हैं। हमारे पास एम के राज का मैसेज आया, गुड मॉर्निंग संदेश, संदेश आपके गीत हमारे में, मैं एम के राज विलेज भानपुर हरहुआ डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से मैसेज कर रहा हूँ। राम राम टू रोली राम जी, हाय, नमस्कार, जय श्री राम। और ये लिखते हैं, द प्रोग्राम प्रेजेंटेशन इज आउटस्टैंडिंग एवरी ईयर, थैंक यू। और लिखते हैं कि मैं हर घंटे सुन रहा हूँ आपको और हर दिन सुनता हूँ, और ये कहना चाहते हैं कि जब बारिश होती है तो याद रखें कि जो भी प्लांट्स हैं उनकी केयर करना हमारा कर्तव्य है। जी बिल्कुल, आपका संदेश ये सभी ने सुना होगा, और हमारा हमारे आसपास की वातावरण, पर्यावरण और अपने पेड़ पौधों की रक्षा सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, बल्कि इसे करना चाहिए, है ना। तो आप ऐसे ही हमें मैसेज कर सकते हैं, आप भी FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर, और हमारे कॉलिंग नंबर्स पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल एक बड़ा ही प्यारा सा ट्रैक आपके लिए, और इसके बाद वापस आते हैं कॉलर को लेकर जो करेंगे चिट चैट। So, stay tuned, stay musical.

0: और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जो हमसे बात करना चाहते, तो आइए उनको देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम पीयूष है।
0: पीयूष जी, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
0: कहिए पीयूष जी, क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
1: मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, लोग कार से चले, बाइक पे चले, रोड पे नहीं थूके और रोड पे कचरा नहीं फैलाएं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आप अभी क्या कर रहे थे फोन मिलाने से पहले?
1: मैं रेडियो
0: सुन रहा था। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया और संदेश दिया। थैंक यू, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। ओके,
1: थैंक यू,
0: बाय बाय। तो दोस्तों, हमारे पास रामराज का मैसेज आया, लिखते हैं कि संदेश आपके गीत हमारे में, मैं रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से आपको मैसेज कर रहा हूं और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि शादियों में जब भी जाएं तो सोच विचार कर अपनी प्लेट में खाना सर्व करें, क्योंकि खाना बर्बाद ना हो, खाने की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। और ये लिखते हैं हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। फिलहाल ये ट्रैक एंजॉय करें, इसके बाद वापस आते हैं लौट कर संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम में।

जिया जिया रे जिया रे। हाँ बिल्कुल, अपना हर मोमेंट को ऐसे ही एंजॉय करना चाहिए, ऐसे ही जीना चाहिए। और आपको बता दें 11:47 हो रहे हैं सुबह के, और धीरे धीरे दोपहर आने वाली है। हाँ, वो टाइम आने वाला है जब हम अपने उस टाइम की ओर जाते हैं जब हमें बड़ा अच्छा सा लंच मिलने वाला होता है। देखिए

अब मैं जाने वाली हूँ ना, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बस एक ही बात दिमाग में आती है कि अब मैं जाऊंगी यहाँ से, जाने के बाद मैं क्या खाऊंगी। हाँ, और आपको बता दें कि हमारे प्रोग्राम में जिन्होंने मैसेज किया था कार्यक्रम बात नगर की के लिए, तो उन सभी श्रोताओं को बता दें, अनिल आहूजा, सुमित चटर्जी, प्रतीक शर्मा, ये इन्होंने हमें, बीना बसाक जी ने हमें मैसेज किया था, आपकी जो भी बातें हैं वो हमें, हम डायरेक्टली महापौर तक पहुंचा देंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं इन्हें ज़रूर फॉरवर्ड किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच कि आपने हमें हमारे प्रोग्राम में मेल किया था, और एक बार फिर से माफ़ी चाहते हैं कि कार्यक्रम बात नगर की में आज हम आपको लखनऊ की मेयर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी से नहीं मिलवा सके अपरिहार्य कारणों की वजह से, और जल्द ही उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब आप अपनी जो समस्याएँ हैं उनका निदान पा सकते हैं। फिलहाल अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, एक बड़ा प्यारा सा ट्रैक है जो कि आपके लिए मैंने क्यू किया हुआ है, सो एंजॉय दिस ट्रैक ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन लखनऊ की।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: और अब रिवील कर रही हैं अपनी प्यारी से आवाज, हमारे स्टूडियो में कौन आ चुकी है भाई, कौन आ चुकी है? हेलो
2: जी जी जी, हेलो हेलो, मैं आ गई हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं मुस्कुरा रही हूँ, आपकी मुस्कुराहट मुझे इतनी देर से अट्रैक्ट कर रही है। हाँ, कंटिन्यूअसली हम दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं।
1: क्या बात है, तो हम लोग ना मुस्कुराहटें एक दूसरे की तरफ स्प्रेड कर रहे हैं और उसके बदले में जो प्यार एक दूसरे की तरफ आंखों से देख रहे हैं, क्या बात है, क्या कहानी बनाई है।
2: बिल्कुल, स्माइल इज इन्फेक्शियस और इसको जितना इन्फेक्शन इसका फैला सके उतनी अच्छी बात है ना, कि जितना ज्यादा लोग मुस्कुराएं, और हमारी तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि लोग मुस्कुराते रहे मुस्कुराते।
1: अच्छा, कहते भी तो है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में है ना,
2: कहीं भी रहिए तो मुस्कुराइए। हाँ। लखनऊ में रहिए तो स्पेशली ज्यादा मुस्कुराइए।
1: बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हम वो हैं जनाब जो मुस्कुराते हुए एक दूसरे से हाय हेलो कहते हैं, ग्रीट करते हैं, और अगर शिकायत भी करते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत अंदाज रखता है जी जनाब,
2: और अदब के साथ तहजीब है वो झलकती है हमारी
1: बातों में झलकती है। और देखिए ना, ये जो अदब है, ये जो प्यार है, हमारी बातों में भी कितना झलकता जो हमारे लिसनर्स तक पहुंचता है।
2: बिल्कुल, और हमारे लिसनर्स का प्यार देखिए, वो भी हमारे पास आता है तो वो हमें डबल कर देता है, जो हमारी खुशियां, जो हमारी स्माइल है, उसको डबल ट्रिपल कर देता है।
1: बिल्कुल, लिसनर्स कहते भी है ना कि भाई आपका नियमित श्रोता हूं और सुबह से सुन रहा हूं आपको, रात को 12 बजे भी मैसेज करते हैं, अच्छा नमस्कार, हम जल्दी सुबह आएंगे,
2: जी, जी,
1: है ना। तो इतना प्यारा चैनल, इतने प्यारे शोज और इतने प्यारे आरजीज, लाइक यू,
2: थैंक यू।
1: तो भाई दोस्तों, मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ स्टूडियो से जाने का समय आ चुका है, और ये जो हॉट सीट है ये मैं शिल्पी को दे रही हूँ, तो अगले कुछ घंटे ये रहने वाली हैं आपके साथ, ये आपको एंटरटेन करने वाली हैं और बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी बातें लेकर के आई हैं आज ये आपके लिए।
2: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें लेकर आई हूँ, और आई होप कि मैं आपको एंटरटेन करने में सक्सेसफुल रहूं, जैसे रोली आपको एंटरटेन करती रही तो मैं भी आपको एंटरटेन करूं, और ये सिलसिला रात 12 बजे तक यूं ही चलता रहे।
1: तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और आज के स्पेशली सॉन्ग्स कैसे लगे जरूर बताइएगा। फिलहाल रोली शुक्ला ये कहती है कि यूं ही अपनी मुस्कुराहट को बनाए रखिए, यूं ही अपनी जिंदगी को एंजॉय करते रहिए, और दुख हो या सुख हो, धूप हो या छांव हो, बस किसी तरह अपने आपको संभाले रखिए, अपने आपको अपने स्ट्रेंथ को दीजिए, खुद के मोटिवेटर बने और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, क्योंकि ये है धड़कन लखनऊ की, और ये धड़कन आपके दिलों तक जाती है और हमेशा धड़कती है, धक धक धक धक धक धक। बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार 25 मई को शपथ लेगी। उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक अस्थिरता अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। टीवी के को समर्थन देने के मुद्दे पर विभिन्न दलों की बैठक आज होगी। आकाशवाणी की स्थापना के 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य के भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉ एमजे खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद लखनऊ द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार की सुविधा भी अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी 8 मई से 11 मई तक अपने आवेदन पत्रों में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। प्रदेश में उपलब्ध कुल 271,093 सीटों के सापेक्ष अब तक 380,000 से भी अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
3: बारह बजकर चार मिनट का वक्त। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। शिल्पी आ चुकी है आपके लिए प्रोग्राम स्वयं सिद्धा लेकर। फ्राइडे का दिन और फ्राइडे को भाई हम स्वयं सिद्धा में बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनकी लाइफ से हम कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। और डेफिनेटली हम ऐसी महिलाओं से कभी कभी आपकी बातचीत कराते हैं और कभी कभी हम खुद उनके बारे में आपको बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया और उनके लाइफ में भी कितने सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब जो भी अचीवर होता है उससे आप देख कर कहते हैं अरे इन्होंने तो बहुत कुछ किया, लेकिन जो उनकी लाइफ यानी सक्सेस जर्नी होती है उसको अक्सर छोड़ देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इनको भी कहीं प्रॉब्लम्स आई होंगी। आपको लगता है कि इनके हाथ में तो फटाफट ये मिठाई आ गई होगी जो आज मुकाम पर पहुंचे, जिस मुकाम पर हैं। तो भाई किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जो उनको ओवर रूल करके आगे बढ़ता है यानी उन दिक्कतों से घबराता नहीं है, उनसे लड़ता है और आगे बढ़ता है, वही सक्सेसफुल होता है। और भाई आज एक खास दिन भी है, आज UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है। मतलब ये पूरा सप्ताह ही रोड सेफ्टी को डेडिकेटेड है। 8 से 12 मई मनाया जा रहा है और WHO इसे होस्ट करता है। और आप जानते हैं कि क्यों रोड सेफ्टी ज़रूरी है, भाई इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीज़ें हम आपसे बातें भी करेंगे और कुछ उन महिलाओं के बारे में भी बताएंगे जो जिन्होंने काफ़ी उम्र होने के बावजूद भी ड्राइविंग में अपने हाथ मतलब चलाए और उन्हें लगा कि नहीं ये मुश्किल काम नहीं है और बड़े बड़े ऐसे वाहनों को हाथ लिया जो लगता था कि ये कोई महिला नहीं कर पाएगी। और उन लोगों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले स्वयं सिद्धा में एक बढ़िया सा गाना आपके लिए प्ले करते हैं और उसके बाद बातचीत का हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। और साथ ही आज एक बहुत स्पेशल डे, उसके बारे में भी हम आपकी बातचीत करवाएंगे किसी स्पेशलिस्ट से। बस सब कुछ है इस प्रोग्राम में, जाने के लिए जुड़े रहिए हमसे यानी 100.7 FM रेनबो से, जिसे हम और आप प्यार से कहते हैं धड़कन लखनऊ की।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जी, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आज यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक ये मनाया जाएगा पूरा 8 से 12 मई तक। और आपको ये भी बता दें कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। भाई होता ये है कि सुरक्षित ड्राइविंग की आदतें नहीं होती हैं, जिनको बढ़ावा देना इस जो वीक मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य है। साथ ही जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, इंजरीज होते हैं, उनको लेकर अवेयरनेस फैलाना, और जो पैदल यात्री होते हैं या फिर साइकिल राइडर्स, उनकी सुरक्षा को बढ़ाना। और आपने कई बार अखबार पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि कई सड़क दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंजर्ड हो जाते हैं लोग, या फिर इंजर्ड ही नहीं होते, अपनी जान तक खो देते हैं, अपनों को खो देते हैं। तो भाई आपको बताएं कि कई ऐसे जब किस्से आप पढ़िए तो आपकी भी आँखें नम हो जाती हैं। और मध्य प्रदेश का ही एक किस्सा था कि जिसमें सड़क हादसे में पिता को खोने के बाद बेटों ने उनकी शोक सभा में हेलमेट और संविधान की पुस्तकें बांटी थी ताकि दूसरों की जान बचाई जा सके। इसके अलावा लोगों को हेलमेट पहनने और जागरूक करने के लिए कि आप सेफ ड्राइविंग कीजिए, इसके लिए कई परिवार उन्होंने जिन्होंने अपने सड़क हादसे में किसी न किसी खो दिया तो लोगों को अवेयर किया। तो अवेयरनेस जो होता है, शब्द छोटा सा है लेकिन लोगों को जागरूकता जो पैदा करना लोगों के बीच बहुत ज़रूरी है। और चूंकि प्रोग्राम स्वयं सिद्धा है तो हम बात करेंगे किसी ऐसी महिला की जिन्होंने कुछ अलग हटके काम किया जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बना। और आज स्वयं सिद्धा में हम बात करेंगे, आज कहानी सुनाएंगे केरल की राजधानी में रहने वाली राधा मणि की, राजधानी नहीं, राधा मणि जी की, उर्फ मणि अम्मा, जो हैं तो 76 साल की लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियां ऐसे चलाती हैं जैसे ये उनके बाएं हाथ का खेल हो। 76 साल की मणि अम्मा ट्रक, क्रेन, यहाँ तक जेसीबी भी चलाती हैं और उन्हें काफ़ी ड्राइविंग लाइसेंस भी है, जिसमें हेवी व्हीकल्स के लिए भी उनके पास ये लाइसेंस हैं। और आपको बता दें कि उस समय उन्होंने ड्राइविंग सीखी जब औरतों के लिए ये सब चीज़ें सोचना भी, करना तो दूर की बात है, सोचना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने जो कहते हैं उन्होंने जो सोचा वो कर दिखाया। कुछ ऐसी मुश्किलें पड़ी जिससे उनको लगा कि नहीं, अब ये काम उन्हें करना चाहिए, और बखूबी किया और लोग उन्हें इसीलिए मणि अम्मा कहते हैं। और साथ ही ड्राइविंग, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें गाड़ियाँ चलाती हैं तो उनसे लोग इंस्पायर भी होते हैं। तो इनके बारे में और भी हम बातें करेंगे लेकिन उससे पहले खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए वेट कर रहा है, हम प्ले कर देते हैं।

जी तो केरल की राधा मनी उर्फ मनी अम्मा की हम बात कर रहे हैं, और मनी अम्मा जिन्हें कई लोग ड्राइवर अम्मा भी कहते हैं, और आपको बता दें वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के व्हील ऐसे घुमाती हैं जैसे कोई बड़ी बात ना हो। 10th का एग्जाम देने के बाद उनकी हो गई थी शादी, और 1978 में उनके पति ने खोला ड्राइविंग स्कूल। लेकिन कुछ समय बाद जब उनके पति का देहांत हो गया तो उनको लगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि आगे बढ़ते रहना और जीवन जीना ये जीवन की रीत है। फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने ये स्कूल खुद संभाला, और यहीं से शुरू हुई उनकी ड्राइविंग की जर्नी। तो ड्राइविंग की जर्नी उन्होंने क्या किया और कैसे

अपने आप को इस फील्ड में वो लाई और कैसे हिम्मत जुटाई, ये सब जानेंगे हम आगे। लेकिन उससे पहले हम तो यही कहेंगे कि चाहे ड्राइवर अम्मा हो या फिर कोई और, ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही ज़िंदगी की पहचान है। तो अगर आप भी कहीं आपको लगता है कि आपकी गाड़ी में या ज़िंदगी में ब्रेक लग गया है, तो बस उस ब्रेक को छोड़िए, आगे बढ़िए और बस संभलते हुए ज़िंदगी की मज़े लीजिए।

0: जी 12:29 और 15 सेकेंड 100.7 FM रेनबो पर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं स्वयं सिद्धा. और ये जो सफ़र था हम आपको जो बता रहे थे मनी अम्मा जी का, वो जारी रहेगा. लेकिन उससे पहले हमने आपसे कहा था ना, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है और आज है वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे. तो इस विषय में हम बात कराएंगे आपके एक्सपर्ट से और साथ ही उनका बहुत बहुत पहले हम स्वागत कर लेते हैं. हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर निशा सिंह जी, जो गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं. बात करते हैं उनसे इस विषय में भी और साथ ही उनसे कुछ उनकी भी बातें करेंगे. हेलो.
1: हेलो
0: जी डॉक्टर निशा सिंह जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में.
1: जी नमस्कार. थैंक यू
0: जी. डॉक्टर साहब, हमारा जो ये प्रोग्राम होता है स्वयं सिद्धा, वो डेडिकेटेड होता है उन महिलाओं को जिनसे हमारे तमाम लिसनर्स जो प्रोग्राम सुन रहे हैं वो प्रेरणा ले सकें. तो डॉक्टर निशा सिंह जी, सबसे पहले तो आप जो आज का दिन उसके बारे में तो हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आपकी बात. जब आप इस फील्ड में डॉक्टर आपने बनने को सोचा तो कुछ मन में दुविधा थी कि आगे बढ़ जाऊंगी या फिर दिमाग में कुछ परेशानियां चलती थी बीइंग ए फीमेल?
1: Somehow, शायद मेरा हमेशा से बचपन से माइंड में था कि डॉक्टर बनना है
0: जी.
1: और कोई दुविधा थी नहीं इसके बारे में
0: जी.
1: मालूम था कि डिफिकल्ट होगा. मेरे कजन फैमिली में एक कजन ब्रदर थे जो कि मेडिकल में जा चुके थे उस समय तक
0: जी.
1: जब हम तो और फैमिली से भी कुछ था ऐसे कुछ कि डॉक्टर बनना है
0: जी जी.
1: तो कोई दुविधा तो नहीं थी, बट बीइंग अ फीमेल टफ होता है ये मालूम था. और जब एक्चुअली किया तो पाया कि हाँ सच में डिफिकल्ट होता है, बट अगर आप सोच लें और अगर आपका पैशन है तो मैनेज हो जाता है.
0: मैम, आपकी जो फील्ड है ऑन्कोलॉजी की फील्ड, इसमें ये बहुत डिफ़िकल्ट और कई चैलेंजिंग है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं जो जब भी कैंसर नाम का शब्द सुनते हैं तो बहुत डर जाते हैं. और आप एज ए डॉक्टर उनको कैसे बताती हैं कि भाई आपको डरने की बात नहीं है, लेकिन हाँ कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे अर्ली अगर आप नोटिस कर लें तो इस बीमारी से बच सकते हैं. तो एज ए डॉक्टर आपका क्या इस बारे में एक्सपीरियंस रहता है, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए.
1: हाँ, तो मैं थोड़ा सा क्लियर भी करना चाहूंगी कि जैसे ये हमारा डिपार्टमेंट जो है ये एक नया डिपार्टमेंट खुला है, गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी,
0: वो
1: हम लोग स्त्री कैंसर रोग विभाग भी कहते हैं
0: जी.
1: और एक्चुअली काफी लोगों के मन में ये थोड़ा सा मैं क्लियर इससे भी करना चाहती हूँ, एक कैंसर स्पेशलिस्ट कौन होता है. तो लोग जो है एक्चुअली किसी भी जगह के कैंसर का ट्रीटमेंट तीन तरह से होता है, या तो सर्जरी से होता है
0: जी.
1: या रेडिएशन से होता है या कीमोथेरेपी मेडिकल ऑन्कोलॉजी. तो तीनों स्पेशलिटी अलग होती है, एक तो ये चीज है
0: जी.
1: तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर अलग होते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी के अलग होते हैं. और सर्जिकल फील्ड जो है उसमें यूजुअली जिस एरिया का है उसके डॉक्टर्स अब खुद ही

0: उसका इलाज करते हैं।
1: जी।
0: एक जनरल कॉमन फील्ड होती है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जो हेड टू टो सभी जगह के बारे में जानते हैं और करते आए हैं, लेकिन पिछले दो दशकों से हर एरिया के कैंसर का उस एरिया के स्पेशलिस्ट ही सर्जरी करते हैं। तो मैं जैसे बेसिकली गायनेकोलॉजिकल जो ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं उसी में, जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ होते हैं, वही फर्दर स्पेशलाइज करके अपनी नॉलेज और अपनी वो बढ़ाकर उस चीज में काम करते करते एक गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट डेवलप होते हैं।
1: जी।
0: कुछ समय से इसकी डिग्री भी शुरू हो गई जिसको MCS गायनी ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो नए बच्चे जो आते हैं वो डायरेक्टली PG करने के बाद इसमें MCH भी करके गायनी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। तो एक तो ये चीज हुई। तो हम लोग बेसिकली सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स का, जिसमें यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और फेलोपियन ट्यूब बल्बल कैंसर, ये वाले आते हैं।
1: जी। तो डॉक्टर
0: जी
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि आज है वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे है आज, और इसकी जो ऑफिशियल थीम है वो नो वुमेन लेफ्ट। तो डॉक्टर साहब, बस हम अपने सभी लिसनर्स के लिए ये खास तौर पर आपसे जानना चाहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है ना, महिलाएं अपनी स्वास्थ्य को लेकर बहुत अनदेखी करती हैं कि भाई हम ठीक है, मतलब पहले फैमिली है, बच्चे हैं, उसके बाद जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको वो ओवरलुक करती रहती हैं, और अक्सर इस ओवरलुक के चक्कर में उनको कई बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, आज इस खास दिन के मौके पर आप क्या कहना चाहती हैं हमारी, खासतौर पर जो महिलाएं प्रोग्राम सुन रही हैं उनसे?
0: तो जो ओवेरियन कैंसर डे है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो बात आपने कही कि महिलाएं अनदेखी करती हैं कुछ लक्षण की और अपने बारे में कम सोचती हैं, ये इस पर कुछ ज्यादा फिट बैठता है
1: जी।
0: क्योंकि इसके थोड़े लक्षण बहुत क्लियर नहीं होते, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर या एंडोमेट्रियल के होते हैं जिसमें ब्लीडिंग वगैरह होती है तो लोग चले ही जाते हैं दिखाने।
1: जी जी।
0: लेकिन ओवरीज में अगर कोई ट्यूमर होता है अंडेदानी में तो आमतौर पर जो लक्षण है वो इस तरह के होते हैं कि पेट फूलना, खाना ठीक से ना पचना, भूख कम लगना, तो जो कि एक बड़े जनरल टाइप के सिम्टम है, या एसिडिटी होना। कई बार मरीज इसके लिए एक मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखा रहे होते हैं
1: जी।
0: और कभी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं। तो इस पर मेनली मेरा कहना यही है कि अगर आपको लंबे समय तक अपच की शिकायत है या भूख नहीं लग रही है या पेट फूल रहा है या पेट में कुछ भारी भारी पंसा बना रहता है, तो
1: जी
0: अगर ये नहीं ठीक हो रहा है आपके सिंपल एंटासिड और जो भी आप वैसी दवाइयां लेते हैं, कई बार घरेलू नुस्खों पे भी चल रहा होता है।
1: जी जी जी
0: कई बार मरीज सोचते हैं कि मेरे पास, स्पेशली पिछले साल भर के अंदर मैंने देखा 3-4 मरीज ऐसे आए जो कह रहे हैं हमें लग रहा था वजन बढ़ रहा है और हम जिम जा रहे थे।
1: अच्छा।
0: तो इस तरह की चीजें अगर आप कर रहे हैं तो जरूर एक बार सोचिए कि कहीं ये लक्षण किसी अंडेदानी के, मतलब जो यूट्रस या ओवरीज में बढ़ने वाले जो ट्यूमर्स होते हैं जिसमें और कोई लक्षण नहीं आएगा, सिर्फ पेट फूलना और अपच की शिकायत या भारीपन लगना यही होगा। तो अगर महीना भर भी कोई चीज ऐसे चल रही है और नहीं ठीक हो रही है तो फिर आप उसके लिए जरूर डॉक्टर को दिखाएं, यही मेरा संदेश है। क्योंकि ये ओवेरियन कैंसर ऐसा है जो आमतौर पर हमारे पास Stage 3 या 4 में ही आता है, अर्ली स्टेज में कम पेशेंट आते हैं क्योंकि वही, एक तो ये ग्रो जल्दी करता है बहुत फास्ट और दूसरा मरीज भी थोड़ी देरी कर देते हैं, तो दोनों मिलाकर वो उनके लिए इलाज तो हो जाता है लेकिन उसका जो रिस्पांस रेट है वो उतना अच्छा नहीं रह पाता।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि बहुत ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे आप जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये ओवेरियन कैंसर की बात है, तो डॉक्टर साहब, लंबे समय से जिसको ये प्रॉब्लम रहे डाइजेशन वगैरह के लिए, और अगर डाइजेशन की दवाओं से भी फायदा ना हो रहा वही संपर्क करे गायनेकोलॉजिस्ट को, या फिर स्कैनिंग वगैरह के थ्रू भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, स्कैन करा के, जैसे होते हैं कि कहते हैं कि
0: अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा डेफिनेटली, बट कोई अल्ट्रासाउंड के लिए कहेंगे तभी पता चलेगा ना।
1: जी जी जी
0: तो अल्ट्रासाउंड तो होना ही होता है लेकिन एक्चुअली डॉक्टर्स देख लेते हैं तो एक आइडिया मिल जाता है कि अल्ट्रासाउंड कराना है, किसी की कराना है,
1: जी जी
0: मतलब किस लेवल की चीज है, कौन सी इमेजिंग करानी है। कोई ब्लड टेस्ट भी होते हैं जिनसे डायग्नोसिस में हमें आइडिया मिलता है कि किस टाइप का है,
1: जी
0: मतलब ओवरी ऐसा ऑर्गन है जिसमें कई तरह की कोशिकाएं होती हैं, तो अलग अलग तरह के कैंसर उसमें या ट्यूमर डेवलप होते हैं, तो ब्लड टेस्ट से हमें भी काफी जानकारी मिलती है। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन से तो उसका साइज और उसकी कहाँ तक ग्रोथ है वो पता चलता है,
1: जी।
0: लेकिन वो किस तरह का है, उसका व्यवहार कैसा है।

0: जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टर, वो ब्लड टेस्ट में कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं उनसे पता चलता है।
1: जी, और ये कितने हद तक क्योर किया जा सकता है डॉक्टर साहब?
0: तो अगर अर्ली स्टेज में आ जाते हैं, मतलब जब एक ही ओवरी इन्वॉल्व है और उसके ओवरी के बाहर नहीं फैला है,
1: जी
0: तो इसका 90% तक 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है, जो कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स रेट
1: जी
0: होता है।
1: जी
0: और ये भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है जो मैंने बायोलॉजिकल कैरेक्टर,
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: हाई
1: जी
0: ग्रेड टाइप होते हैं, एग्रेसिव टाइप के होते हैं, और कुछ लो ग्रेड टाइप के होते हैं, उस
1: जी
0: पर भी मैटर करता है, बट स्टेज पर भी करता है। तो
1: जी
0: अगर अर्ली स्टेज है तो 90% तक, और अगर एडवांस्ड हो जाती है तो फिर 50-60, मतलब बहुत एडवांस्ड हो तो 50% तक ही फिर सर्वाइवल रेट रहता है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, आपने आज खास दिन पर, यानी वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे के आज दिन पर, जो खास तौर पर अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसे इग्नोर ना कीजिए, अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको लग रहा है कि नॉर्मल दवाओं से नहीं सही हो सकते हैं, तो तुरंत आप एक सलाह लीजिए, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाइए, मिलिए और बताइए कि आपको क्या समस्या है। अर्ली स्टेज में कोई भी चीज़ होती है, अर्ली डिटेक्ट हो जाती है तो सही हो जाती है। और हम डॉक्टर निशा सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं खास तौर पर इस चीज़ के बारे में अवेयर हों और जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करके अपनी समस्या का निदान पाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।
0: थैंक यू वेरी मच, मुझे भी एक मौका मिला इंटरेक्ट करने के लिए। थैंक यू।
1: जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। जी, तो ये थी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की डॉक्टर निशा सिंह जी, गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जिनसे हमने बात की आज वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे के बारे में।

0: के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएल इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
4: बारह बजकर 44 मिनट हो गए हैं, प्रोग्राम चल रहा है, स्वयं सिद्धा शिल्पी आपके साथ है और हमने आज स्टार्टिंग में बात करी थी रोड सेफ्टी के बारे में और उसी के बारे में बात करी थी, लेकिन उस बीच में हमने बात कर ली आज के खास दिन के बारे में, आज वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे के बारे में बातचीत करी ताकि हम आपको अवेयर कर सकें। और साथ ही डॉक्टर निशा ने जैसा बताया कि मुश्किल था लेकिन इस फील्ड में उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया। तो आप भी जो भी हमारी साथी महिला साथी हैं, कुछ बनना चाहती हैं, जो भी लड़कियाँ आजकल ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, तो केवल ये एक फील्ड नहीं है, किसी भी फील्ड में आप कुछ करना चाहती हैं तो बिल्कुल हौसला बरकरार रखिए और देखिए फिर कैसे मंजिल को आप छूलेंगी। जैसे कि हम बात कर रहे थे राधामणि अम्मा के बारे में, जो भारत की इकलौती ऐसी महिला ड्राइवर हैं जो कुछ भी ड्राइव कर सकती हैं। उन्होंने ड्राइविंग तब सीखी जब महिलाएं घर से बाहर कदम नहीं रखती थीं, तब उन्होंने बड़े बड़े व्हीकल्स चलाना सीख लिया था और इससे उनकी हिम्मत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएं कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उनके जो मोस्ट ड्राइविंग लाइसेंस होने का है, उन दर्ज है रिकॉर्ड के नाम पर कि सबसे ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस उनके नाम है, यानी 76 ईयर्स ओल्ड अम्मा के नाम, राधामणि अम्मा जिन्हें ड्राइवर अम्मा भी कहते हैं। और ये शुरुआत तब हुई थी ड्राइविंग की जब कुछ उनके ऊपर दिक्कतें आई थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और फिर ज़िंदगी में क्योंकि आगे बढ़ना है, जीवन रुकता नहीं है और आपको कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलना पड़ता है और यही जज्बा समेटे राधामणि अम्मा ने भी अपने कदमों को आगे बढ़ाया और ज़िंदगी में एक मकाम हासिल किया। हम आज बस यहाँ पर ये कहेंगे लर्निंग नेवर स्टॉप्स एंड दैट कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क नॉट फियर नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर, और ये बात अम्मा पर बिल्कुल फिट बैठती है।

जी हाँ, हो गया है प्यार, और प्यार जब आपको अपने काम से हो जाता है तो फिर वो काम समझ लीजिए उसमें चार चांद लग जाते हैं, और वो काम कितना सक्सेसफुली होता है ये तो आपको जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है। बहरहाल 12:50 हो गए हैं, प्रोग्राम लगभग वाइंड अप करने की ओर है, लेकिन चलते चलते हम बता देते हैं आपको योगिता रघुवंशी के बारे में, जो भारत की पहली महिला ट्रक ड्राइवर के रूप में जानी जाती हैं। और आज हम ड्राइवर्स की बात हमने इसलिए करी यहाँ पर जो फीमेल ड्राइवर्स हैं, क्योंकि इस क्षेत्र को कहा जाता है कि भाई ये महिलाओं के लिए नहीं है, कहाँ वो ट्रक चलाएंगे, कहाँ वो जेसीबी चलाएंगे। लेकिन देखिए, अगर जज्बा है और अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी हासिल कर सकती हैं। योगिता अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, लॉ में डिग्री हासिल की है उन्होंने, लेकिन हस्बैंड की डेथ के बाद उन्होंने अपने प्रोफेशन को मोड़ दिया। और वो क्यों दिया ये भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल उन्होंने अपने घर के कुछ कामों के लिए किसी ड्राइवर को अपॉइंट किया, लेकिन जब लगातार उन्होंने देखा कि इसको रखने के बाद हमें नुकसान हो रहा है, यानी खुद वो मोर्चे पर नहीं है, उन्होंने किसी को अपॉइंट किया और उसके बाद उन्हें लगातार नुकसान होता रहा, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं ये कमान खुद संभालती हूँ। और उसके बाद उन्होंने ड्राइविंग में कदम रखा, और उनका जो पहला सफ़र था वो भोपाल से अहमदाबाद तक का रहा। योगिता खुद कहते हैं कि मैंने अपना मन बना लिया था कि बस जीवन के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, समाज को संदेश देना चाहती हूँ, और ख़ास तौर पर वो ये बताना चाहती थी कि बेटे और बेटी में कभी भी भेदभाव ना कीजिए, बेटियों को भी पूरा मौका दीजिए। और उनका कहना यह है कि हम बेटियाँ भी बेटों से किसी भी तरह से कम नहीं हैं। सिर्फ यहाँ पे बात आज जो हमने मनीम्मा की करी, या योगिता रघुवंशी की करी, या फिर डॉक्टर निशा जी से हमने बात करी, आप देखिए सभी महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में कितनी इस्टेब्लिश हैं, और जाहिर सी बात है कि उन तमाम महिलाओं के लिए एक तरह से इंस्पिरेशन है जो घर से निकलने से डरती हैं, या फिर कुछ करने से पहले 10 बार सोचती हैं कि जिंदगी

में कदम कैसे आगे बढ़ाएं। तो ज़रूर आपका हमारा ये लक्ष्य रहता है कि हम आप तक ऐसी महिलाओं के बारे में कुछ बातें पहुंचाएं, उनके जीवन से जुड़ी ऐसी बातें जो आपको इंस्पायर कर सकें। और अगर आप इंस्पायर होती हैं, लाइफ में कुछ कर लेती हैं, तो यकीन जानिए कि हम इस जो मिशन है उसमें सक्सेसफुल होते हैं। स्वयं सिद्धा प्रोग्राम ही हमारी सभी वर्किंग लेडीज़ को है, और साथ ही उन तमाम लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहती हैं, वो भी इस प्रोग्राम को सुनकर इंस्पायर हो सकती हैं उन महिलाओं से।

12:56 हो गए, प्रोग्राम स्वयं सिद्धा को वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है, तो इजाजत दीजिए अपनी दोस्त शिल्पी को प्रोग्राम स्वयं सिद्धा से, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम जो है होठों पे तेरी बात में एक बार फिर मैं रहूंगी आपके साथ, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

नमस्कार। दोपहर के एक बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। सरकार ने प्रदेश भर में लगे सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि अब उपभोक्ताओं को बिजली इस्तेमाल करने के बाद ही बिल मिलेगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बिल SMS और व्हाट्सएप के जरिए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर और बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई से 30 जून तक अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर विशेष कैंप और सहायता केंद्र लगाए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कल एक समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया 20 मई 2026 तक पूरी कर स्वीकृत पत्र जारी किए जाए, साथ ही निर्माणाधीन परियोजनाओं को 20 नवंबर तक हर हाल में पूरा किया जाए। समीक्षा बैठक में आगरा और मथुरा में हेलीपोर्ट परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के निर्देश भी दिए गए। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद लखनऊ द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10 मई तक बढ़ा दी गई है। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि अभ्यर्थी 8 से 11 मई तक अपने आवेदन पत्रों में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। प्रदेश में उपलब्ध कुल 2,71,093 सीटों के सापेक्ष अब तक लगभग 3,80,000 से अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ में देर शाम बारिश हुई, जबकि गोरखपुर और आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर कल बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में हल्की बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: प्रोग्राम होठों पे तेरी बात लेकर हाजिर हो गई शिल्पी एक बार फिर 100.7 FM रेनबो पर, जिसे हम और आप प्यार से कहते हैं धड़कन लखनऊ की। दोस्तों 1:03 का जो समय है, ये समय पर हम आपको टॉपिक बताते हैं जिस पर हमें व्यूज चाहिए। लेकिन आज क्योंकि फ्राइडे का दिन है तो आज वॉक्स पॉपुलाई, यानी कि हमने लोगों से बातचीत करी और हमने उनको टॉपिक बताया और उनसे बातचीत करके उनके विचार जाने। लेकिन हाँ, आप भी फ्री हैं बिल्कुल मेल करने के लिए। आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। जो अच्छे मेल्स हैं उनको ज़रूर पढ़ा जाएगा। और साथ ही इससे पहले कि आप जाने हमारा टॉपिक क्या है, हम खुद ही बताते हैं, क्योंकि ऐसे कैसे जानेंगे जब तक हम नहीं बताएंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, अक्सर लोग कहते हैं ना, समय पे काम कर लो तो अच्छा रहता है, समय पे उठ जाओ तो अच्छा रहता है। लेकिन कई लोग होते हैं वो कहते हैं क्या करना, जब मन करेंगे तब कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, यानी आज के काम को कल पर टालते रहते हैं। जबकि बहुत पुराने लोग, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो सब इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि भाई काम जो है जब आपने सोचा है तभी आप कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। यानी एडवांस में काम रहता है तो आसानी रहती है। तो आज का हमने टॉपिक यही लिया कि भाई आप क्या सोचते हैं कि समय प्रबंधन लाइफ में कितना नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है, और आप किस तरह अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये भी आप हमें बताइए। आप अपने टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं और आपको क्या लगता है कि वाकई में टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन की कोई ज़रूरत है? अगर ऐसा कुछ भी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और फिलहाल हम आपको वो रिकॉर्डिंग्स प्ले करेंगे जो हमने लोगों से बातचीत करी और उनके व्यूज़ जाने। तो बस इंतज़ार किस बात का, बस कुछ ही पलों में हम ये रिकॉर्डिंग्स प्ले करेंगे। एक गाना प्ले करने जा रहे हैं और उसके बाद इलाकाई खबरें होंगी और उसके बाद होठों पे तेरी बात का ये सफ़र रहेगा जारी।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता वानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की लागत से 325 अवामी फलाही मंसूबों का इफ्तिताह और संगी बुनियाद रखा। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत की पॉलिसियों ने मगरबी उत्तर प्रदेश के चेहरे और तकदीर दोनों को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमों का फायदा समाज के हर तबके तक पहुँचा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के समग्र विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है और बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बांटा है। वंचित को वरीयता मिली है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिली है, हर वंचित के घर तक उसकी योजना पहुंचाने का कार्य किया है और उसका परिणाम आज हमारे सामने है।
0: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से मर्दमशुमारी 2027 का आगाज किया। इसके साथ ही रियासत भर में खुद मर्दमशुमारी भी शुरू हो गई। शाम 6 बजे तक कल रियासत में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी मर्दमशुमारी मुकम्मल की। मर्दमशुमारी के आगाज के मौके पर वज़ीर-ए-आला ने कहा कि ये महज आबादी की गिनती नहीं है बल्कि हमजहत जामे और मनसूबाबंद तरक्की की मजबूत बुनियाद है।
2: प्रदेश में 21 मई तक होने वाली स्वगणना के माध्यम से नागरिक स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके उपरांत फील्ड कार्य के अंतर्गत जनगणना कार्मिक घर घर जाकर सूचीकरण का कार्य करेंगे। जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी जो 22 जून तक चलेगी। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। इस बार जनगणना में जाति गणना को भी सम्मिलित किया गया है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन में डिजिटल तौर पर अपनी मालूमात दर्ज करके खुद गिनती के अमल में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने रियासत के शहरियों से अपील की कि वो मर्दमशुमारी के अहलकारों की तरफ से दरखास्त करदा मुकम्मल दुरुस्त और हकायक पर मबनी मालूमात फराहम करें।
3: जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियाँ, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्थानों के वितरण और शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश

0: के विकास की दिशा तय करने में मदद करेगी।
1: वजारत रेलवे ने ऐलान किया है कि ट्रेनों को एडवांस पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में तब्दील करने का अमल अगस्त में शुरू हो जाएगा। कल नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग में रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि 40 साल पुराने रिजर्वेशन सिस्टम से नए निजाम में तब्दीली के दौरान मुसाफिरों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। रिजर्वेशन का निजाम 1986 में शुरू किया गया था और गुज़िश्ता 40 वर्षों में इसमें कई तब्दीलियां आई हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2024 के आदाद और शुमार से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जराइम की शरह में उत्तर प्रदेश मुल्क में 18वें नंबर पर था। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कृष्णा ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में जदीद पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं और ज्यादा चौकस एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने में खवातीन के लिए वक्फ करदा हेल्प डेस्क, कमजोर तबकात को तेज रफ्तार इंसाफ फराहम करने वाली फास्ट ट्रैक अदालतें और मुनज्जम जराइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून की हुक्मरानी कायम की है। हुकूमत ने रियासत भर में नस्ब तमाम स्मार्ट मीटरों के पोस्टपेड मोड में चलाने के अहकाम जारी किए। वजीर तवानाई ए के शर्मा ने कहा कि तमाम स्मार्ट मीटर्स को फौरी असर से पोस्टपेड सिस्टम में तब्दील किया जा रहा है। अब सार्फिन के बिजली इस्तेमाल करने के बाद ही बिल वसूल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सार्फिन को बिल हर माह की 10 तारीख तक SMS और व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाएंगे। वजीर तवानाई ने कहा कि स्मार्ट मीटर और बिजली के बिलों से मुतालिक शिकायात के तस्फीये के लिए 15 मई से 30 जून तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सब डिविजनल ऑफिसर के दफ्तर में खसूसी कैंप और इमदादी मराकिज कायम किए जाएंगे। रियासत में सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर उसके मसावी ओहदों पर बराह रास्त भर्ती के लिए 2025 के तहरीरी इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए हैं। इस भर्ती के अमल के लिए तकरीबन 1,75,760 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी, जो कि 4,543 असामियों के लिए मुनक्किद की गई। इनमें से 12,333 उम्मीदवार अगले मरहले के लिए कामयाब करार पाए हैं। ये इम्तिहान 14 और 15 मार्च 2026 को मुनक्किद हुआ था। रिक्रूटमेंट बोर्ड के मुताबिक दस्तावेजात की तस्दीक और फिजिकल टेस्टिंग मई के तीसरे हफ्ते में की जाएगी। की वेबसाइट पर मुकम्मल तफसीलात दस्तयाब कराई गई हैं। आज 8 मई को रेड क्रॉस का आलमी दिन है। आलमी रेड क्रॉस का दिन हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद इंसानियत खिदमत और खैरात के जज्बे को फरोग देना है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

0: इलाकाई खबरों के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। और आज हमने आपसे जो टॉपिक कहा है वो टॉपिक ये है कि भाई टाइम मैनेजमेंट के लिए हमेशा कहा जाता है, हमारे बड़े बूढ़े हमेशा कहते हैं भाई सब काम टाइम पे करो, और काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यानी कि कितनी इंपॉर्टेंस है टाइम की, जो भाई सोचा है वो कर लो। लेकिन लोगों ने इसको पलट दिया कि काल करे सो परसों, है ना। तो आपके हिसाब से ये बताइए कि भाई समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट क्यों नेसेसरी है लाइफ में, और आप किस हद तक अपना टाइम मैनेज कर पाते हैं या फिर टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं वो भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि नहीं आपको सुधार की ज़रूरत है, आपको लगता है कि नहीं अगर हम थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लेते तो ये काम और अच्छा से कर सकते थे। तो इसी बारे में हमने कुछ लोगों से बात की, क्योंकि आज फ्राइडे के दिन और मंडे के दिन हम आपसे लोगों की जो बात करते हैं वो रिकॉर्डिंग्स सुनवाते हैं। इसके अलावा हम हमारे जो रेगुलर लिसनर हैं जो हमें मेल्स करते रहते हैं उनसे भी हम दरख्वास्त करते हैं कि अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो fmakashwani@gmail.com पर हमें आप मेल कीजिए, ताकि आप अपने व्यूज़ भी हमसे शेयर कर सकें। और अगर आपके व्यूज़ बहुत अच्छे लगेंगे तो ज़रूर हम उनको शेयर करेंगे, उनको पढ़ेंगे। फिलहाल हमने बात की पार्थ श्रीवास्तव से, देखते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: हमें अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए समय को प्रबंधित करना अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, और यह पूरी तरीके से सच भी है। समय ही सच्चा धन है, टाइम इज मनी। यदि हमें समय को सही ढंग से जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग करना आ गया तो हम अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं। जहाँ तक मेरे जीवन में समय

प्रबंधित करने की बात है तो मैं अपने जीवन में समय को बहुत ही मूल्य देता हूँ और सभी महत्वपूर्ण कार्यों को सही समय पर करने की मेरी हमेशा प्राथमिकता रहती है। इसी वजह से ही मैं अपने जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता के पायदान चढ़ पा रहा हूँ।

0: और फिर हमने बात की प्रभात जी से, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: अलीगंज से, समय प्रबंधन का मतलब है कि अपने सभी कामों को करने के लिए समय का आवंटन किस तरह से किया जाए, कैसे योजना बनाई जाए। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए जरूरी है कि आप समय का प्रबंध भली प्रकार से करें। छात्र जीवन से ही इस आदत को अपना लेना चाहिए, चाहे पढ़ाई हो, मनोरंजन हो या खेल कूद हो, सभी के लिए जरूरी है कि किसमें कितना समय दें। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं या कोई भी नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं या किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो सफल होने के लिए समय का प्रबंधन बहुत अधिक जरूरी है। कुछ काम अति आवश्यक होते हैं, कुछ बहुत ज़रूरी नहीं होते हैं, उन्हें भी ज़रूरत के हिसाब से मैनेज करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत अधिक रिजिड नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक अगर आप रिजिड हैं तो वो आपको तनाव दे सकता है, इसलिए थोड़ा लचीलापन भी बहुत ज़रूरी है। आजकल समय प्रबंधन का सबसे बड़ा दुश्मन है अत्यधिक सोशल मीडिया या मोबाइल, जो हमें बिल्कुल भी समय नहीं देता है। तो इसका उपयोग समय के अनुसार ही करना चाहिए और अच्छे कार्यों के लिए या कुछ नॉलेज बढ़ाने के लिए ही करना चाहिए। धन्यवाद
0: जी। ये तो थे प्रभात कुमार जी, और इसके बाद हमने बात की ज्योति तिवारी से, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: मैं ज्योति तिवारी गोमती नगर लखनऊ से बोल रही हूँ। आपके टॉपिक जीवन में समय प्रबंधन क्यों जरूरी है और आप किस हद तक अपना टाइम मैनेज कर पाती हैं के संबंध में मेरा यह कहना है कि जीवन में समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। ऐसा करने से हम सुगमता पूर्वक अपने दिन भर के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करके बिना किसी दबाव या टेंशन के पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किस समय हमें क्या काम करना है। इसी कारण मैं अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन हर कार्य का प्राथमिकता के आधार पर उसको नियत कर समय पर करने की पूरी कोशिश करती हूँ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10

0: 12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
4: और देखिए, हमने कहा था कि आप हमें मेल कीजिए और हमारे पास मेल आए हैं। नीलिमा का मेल आ गया है। नीलिमा ने झारखंड से हमें मेल किया, रांची से, और लिख रही हैं कि भाई ये जो टाइम मैनेजमेंट है मैं नहीं कर पाती हूँ और मैं अपने आप को इसके लिए बहुत दोषी भी देती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता कि मैं सोचती हूँ अच्छा आज नहीं मैं कल कर लूँगी और ऐसे में काम मेरा पेंडिंग हो जाता है जिसकी मुझे काफ़ी सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। अक्सर मुझे टीचर से भी इस बारे में डांट पड़ती है, पेरेंट्स से डांट पड़ती है। मैं कोशिश कर रही हूँ और आई होप आने वाले समय में, यानी कुछ 3-4 महीनों में, मैं टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाऊंगी। तो निर्मा, आपने ये चीज इम्प्रूव करने की कोशिश करी, इसके लिए आप बधाई की हकदार हैं। मुकुल सिंह का मैसेज आ गया हमारे पास पंजाब से और ये लिख रहे हैं कि मैडम, टाइम मैनेजमेंट मुझे बखूबी आता है और मैं समय पर उठता हूँ, समय पर सोता हूँ और सारे काम समय पर करता हूँ। यानी मेरा पढ़ाई का भी समय निश्चित रहता है, मैं काम भी करता हूँ, मेरे काम पर जाने का भी समय निश्चित है। यानी मैं ऐसा टाइम मैनेज करता हूँ कि अपनी पढ़ाई और काम दोनों को मैनेज कर सकूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना होता है। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है और आप इस तरह बखूबी टाइम मैनेज करते हैं, ये डेफिनेटली उन लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन होगा जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और उनको लगता है कि वाकई में कभी कभी आलस कर देते हैं, आज का काम कल पर छोड़ ही देते हैं, चलिए आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, और ऐसे में क्या होता है कभी कभी अगले दिन कुछ ऐसी दिक्कत आती है कि वो काम आप नहीं कर पाते हैं, तब आपको अफसोस होता है कि काश इसे पहले कर लिया होता। तो आप दोनों के मेल मिले उसके लिए है बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही सीमा परिहार का भी मेल आ गया है बहराइच से, और सीमा परिहार कह रही है टाइम मैनेजमेंट करना एक कला है और अगर कोई इस कला को नहीं जानता है तब दिक्कतें होती हैं। कई बार हम सोचते हैं काम करना लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाते हैं और तब दिक्कतें बढ़ जाती हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं काम कर लूँ लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे और काम आ जाते हैं कि जो मेरा काम होता वो टल जाता है। तो मैं अपनी मम्मी से इंस्पिरेशन लेती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी सब काम टाइम से करती हैं और अपने रेस्ट के लिए भी वो टाइम बखूबी निकाल लेती हैं, जिसे देखकर मुझे कभी कभी आश्चर्य भी होता है कि इतने काम के बीच वो अपने लिए समय निकाल लेती हैं। जी तो भाई सीमा, यही तो खासियत है टाइम मैनेजमेंट की, और एक बार अगर आपको ये चीज़ें आ गईं तब तो फिर ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आपके काम पेंडिंग नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है कि काम करना ज़्यादा आसान होता है। तो अगर आप भी अपने व्यूज़ शेयर करना चाहते हो तो FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आप हमसे व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, और भी हम रिकॉर्डिंग्स प्ले करेंगे बस इस गाने के बाद।

0: समय प्रबंधन क्यों जरूरी है, सब लोगों के अपने विचार हैं, सब लोग बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि भाई टाइम मैनेजमेंट होने से बहुत आसानी हो जाती है कामों में. तो कुछ और रिकॉर्डिंग्स हम प्ले कर रहे हैं, आज सुनिए क्या कहा लोगों ने.
1: टॉपिक मिला है कि टाइम मैनेजमेंट लाइफ में क्यों नेसेसरी है एंड मैं उसे किस हद तक मैनेज कर पाती हूँ. तो अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो उसका सीधा सा मतलब यही होता है कि हम समय का इस्तेमाल अपने ज़रूरी कामों के लिए कैसे कर पा रहे हैं. और मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ना काफ़ी रिग्रेट होता है कि मैं अपना मोस्टली जो टाइम है वो फ़ोन देखने में या फिर सोने में या फिर टाइम स्केप करने में ही वेस्ट कर देती हूँ, जबकि मेरे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं. और मुझे उस समय लगता है कि काश मैंने उस टाइम को कुछ अच्छे से यूज़ कर लिया होता. मैं एक स्टूडेंट हूँ और साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करती हूँ. मुझे सिंगिंग, डांसिंग, एडिटिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है. इवन मैं ये सब करती भी हूँ बिकॉज आई एम अ फ्रीलांसर. मुझे ये सब चीज़ें करना बहुत पसंद है और ये सब साथ में मैनेज करना कभी कभी मेरे लिए थोड़ा ड्रेन आउट वाला सीन हो जाता है. इसीलिए मेरा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, मैं मोस्टली अपने मूड के अकॉर्डिंग ही काम करती हूँ. और ऑनेस्टली अभी भी मुझे लगता है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट काफ़ी सीखना बाकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान टाइम मैनेजमेंट सीख जाए तो उसकी लाइफ काफ़ी हद तक सॉर्ट हो जाती है. वो मेंटली ड्रेन आउट नहीं होता और हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पाता है और उसे पता है कि कब क्या करना है. इसीलिए मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड मैं उससे अभी भी सीख रही हूँ. सो यार दैट्स इट, थैंक यू.
0: जी तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है ऐसा जानवी ने बताया. और हमारे पास मेल भी आ गया है, रामेश्वर जी का आ गया, ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर से. रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा, प्रतिमा और वेद बाबू कठेरिया. और इन्होंने लिखा है कि होठों पर तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बहन जी को सादर प्रणाम, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बराबर सुनते हैं, थैंक यू सो मच. और लिख रहे हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हम टाइम से काम करते हैं, यानी इनके जीवन में टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है. बाबू अंसारी, देवकली, अहमदपुर बाज़ार, बाराबंकी.

किसे लिख रहे हैं आज का, तो क्या चीजें लिखा है इन्होंने आज, ऐसे ईमेल शामिल कर लीजिए, मतलब कुछ लिखा नहीं टॉपिक पर, आज टॉपिक पर इन्होंने कुछ नहीं लिखा, नहीं मालूम है इनको टॉपिक। तो भाई टॉपिक ये है कि टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है और आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं, तो इन्होंने कहा सिर्फ आप शामिल कर लीजिए, टॉपिक नहीं मालूम है। तो भाई टॉपिक हमने आपको बता दिया है। और इसके अलावा हमारे पास मेल आ गया है, ये किसका मेल है, ये मेल है सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत कुमार संचित, प्रथमेश प्रणाली, सर्वद और सानवी जी का, ग्राम पंचायत कालेगांव जफराबाद से। और लिख रहे हैं मैं भी, घर वाले ने मेरे को कभी कुछ काम जैसे कि दवा कुछ लाने को कहा, लेकिन काम करते वक्त भूल जाता हूँ, तो घर से निकलो तो याद ही नहीं रहता, भूल जाता हूँ। और ये भाई जाफराबाद से जो आपने बात लिखी है, आप भूल जाते हैं तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए कुछ ऐसे एक्सरसाइज कीजिए कि आपको चीज़ें याद रहें, क्योंकि अगर आप भूल जाएंगे तो काम कैसे करेंगे, फिर तो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत दूर की बात है।

0: और अब हम आपको बातचीत सुनवाते हैं सुमित मेहता और मुंगीसा खान से की हुई।
1: हेलो एवरीवन, मेरा नाम जानवी है एंड मुझे हाय गाइस, मेरा नाम मुनीसा खान है और मुझसे आज पूछा यह है कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ। तो आज मैं आपसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि टाइम बहुत प्रेशियस होता है, इसलिए मैं अपना दिन का एक सिंपल रूटीन बनाती हूँ। आई डिवाइड माई टाइम बिटवीन स्टडीज, होमवर्क एंड रेस्ट। इससे मुझे स्ट्रेस कम होता है और ज़्यादा फोकस्ड फील करती हूँ। रीडिंग इज़ माई हॉबी, आई लव रीडिंग बुक्स, इट हेल्प मी लर्न न्यू थिंग्स एंड इम्प्रूव माई वोकैबुलरी। फ्री टाइम में मैं रीडिंग करना प्रेफर करती हूँ इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम अननेसेसरली। मेरे अकॉर्डिंग गुड टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ बिजी रहना नहीं होता है, taking small breaks and balancing studies with hobbies is also important. So I believe that if we use our time wisely, we can make our life better and more balanced. So thank you.
2: अगर time management की बात की जाए तो वो बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपको life में success पानी है तो time management करना पड़ेगा। सुबह उठने से लेकर शाम तक आप क्या क्या करते हैं उसे बराबर समय पर बांटना जरूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई को लेकर आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसे लेकर भी आपको टाइम मैनेजमेंट के तहत काम करना पड़ेगा। इससे आपके काम टाइम से पूरे होंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और काफ़ी चुनौतियाँ जो आपको परेशान कर सकती हैं आने वाले समय में वो परेशान नहीं कर पाएंगी अगर आप अपना हर काम टाइम से करते हैं तो हो जाएगा। और वैसे मैंने तो अपना टाइम मैनेजमेंट जो है वो बना रखा है, और जैसे अपने जो 8 से 10 अगर मैं कुछ काम करता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ, सुबह के समय मॉर्निंग में उठ के अगर आप जिम जाते हैं तो जिम जाइए, उसके बाद स्टडी करते हैं तो स्टडी करिए। ऐसे ही अपने हर एक घंटे को, अपने हर एक मिनट को बांध के रखिए, उनका सदुपयोग करिए, जिससे आपको लाइफ में काफ़ी आसानी होगी।

0: जी भाई 1:53 हो गए और इस समय हम आपको रिकॉर्डिंग सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कुमार जी से, हमने जो बातचीत की और उन्होंने क्या विचार रखे आप सुनिए।
1: हेलो सर जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और सर जी मैं जो टाइम के समय के लिए होता है समय से अपना कार्य करना और जो है कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो समय से

0: जी भाई 1:53 हो गए और इस समय हम आपको रिकॉर्डिंग सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कुमार जी से, हमने जो बातचीत की और उन्होंने क्या विचार रखे आप सुनिए।
1: हेलो सर जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और सर जी मैं जो टाइम के समय के लिए होता है समय से अपना कार्य करना और जो है कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो समय से किए जाते हैं और जब समय पे हम कार्य करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और कभी कभी ऐसा होता है टाइम नहीं होने के बावजूद भी हम किसी से मिलना होता है तो उस काम को वरीयता दी जाती है, समय के अकॉर्डिंग काम करना होता है और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जैसे बिजली का बिल जमा करना, बच्चे की फीस जमा करना और अदर से काम है, घर के जो घरेलू चीज़ें होती हैं, गैस की समस्या है, बिजली का बिल है, नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं, अगर उनको समय से नहीं करेंगे तो दिक्कतें पड़ती हैं और फिर भी इनको करना ही हमारी जो है ज़रूरत होती है, समय के अकॉर्डिंग काम करना मस्त होता है। थैंक यू
0: जी। तो भाई ये वो बातचीत थी जो हमने सुनाई और इसके अलावा मुनेश कुमार राजगांव भानपुर हरोबा जिला लखीमपुर खीरी से मैसेज आ गया है, शिल्पी मैम जी शुभ दोपहरिया। तो शुभ दोपहरिया और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी, दो लाइन लिखी है, मानुस बलि न होत है समय होत बलवान, बिलन लुटी गोपिका वहे अर्जुन बहबान, यानी समय का तुम इंतजार करो लेकिन समय तुम्हारा इंतजार कभी नहीं करता, इसलिए आज के दौर में समय कम है काम ज़्यादा है तो समय से चलिए, समय से मुस्कुराइए, समय से सोइए, समय से जागिए, सारे काम समय से कीजिए, इस जीवन में समय का बहुत महत्व है। बहुत अच्छी बात आपने कही सत्यम जोशी जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बातें पता चली, समय ही ऐसी चीज़ है जो वापस नहीं आती, पैसा खो जाए वापस आ सकता है लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, अगर समय सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाए तो काम अधूरे रह जाते हैं, तनाव बढ़ता है, आप पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं, जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, लेकिन अच्छा टाइम मैनेजमेंट काम समय पर पूरा करवाता है, तनाव कम करता है, फोकस बढ़ाता है, सफलता की संभावना बढ़ाता है और जीवन में बैलेंस बनाता है। बहुत अच्छी बात और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और साथ ही मुनेश कुमार जी आपने बहुत अच्छी बात लिखी, इन्होंने थोड़ा और हमें इंग्लिश में भी लिख दिया, मैन इज़ नॉट पावरफुल टाइम इज़ पावरफुल, इट वॉज द सेम अर्जुन द सेम एरोज एट येट द गोपीज वर लूटेड बाय विलेंस, तो बहुत अच्छी बात लिखी है। और आप सब ने मोनू सेठ जी कह रहे हैं घर के काम में भी टाइम मैनेज नहीं हो पाता, मैम जी बताइए आप करिए तो जी, एक बार आप लिख रहे हैं कि दूसरे के हिसाब से, दूसरों के हिसाब से आप अपने काम क्यों कर रहे हैं, आपको अपने हिसाब से काम करना है और करके देखें मोनू जी, सब चीज़ मैनेज होती है अगर आप करना चाहें तो। और देखिए हम प्रोग्राम को वाइंड अप करने की ओर, इन 1:56 हो गए हैं, ढेर सारे मैसेजेस आपके मिले, बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही जो लोगों ने हमसे बात की उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और इस प्रोग्राम से आपसे टाटा बाय बाय करते हैं। वो क्यों करते हैं वो भी बता दें, क्योंकि जो नेक्स्ट प्रोग्राम हॉटमेल उसमें एक बार फिर शिल्पी को आना है तो अभी के लिए हमें जाना है, तो अभी के लिए आपसे लेती हूँ इजाजत, नेक्स्ट प्रोग्राम हॉटमेल में एक बार फिर मेरा रहा और आपका रहेगा साथ, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड टू 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार। दोपहर के 2 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्राथमिक स्वास्थ्य टीमों के लिए एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को सुदृढ़ करना है ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक समग्र और जन केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध हो सके। हाल के वर्षों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। यह समानता और सभी लोगों तक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा सुलभ कराने की देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सरकार ने प्रदेश भर में लगे सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के आदेश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि अब उपभोक्ताओं को बिजली इस्तेमाल करने के बाद ही बिल मिलेगा। उन्होंने कहा उपभोक्ताओं को बिल SMS और WhatsApp के जरिए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर और बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई से 30 जून तक अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर विशेष कैंप और सहायता केंद्र लगाए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। रेलवे ने रेल सुरक्षा और आधुनिकीकरण को बल देते हुए स्वदेश निर्मित कवच स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली का उत्तर रेलवे के मुख्य मार्गों पर विस्तार करने को स्वीकृति दे दी है। इस पर लगभग 362 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अंतर्गत फिरोजपुर और जम्मू डिवीजन के महत्वपूर्ण खंडों के लगभग 1478 किलोमीटर लंबे मार्ग पर कवच प्रणाली स्थापित की जाएगी। कवच प्रणाली भारत की स्वदेश निर्मित ऑटोमेटिक रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली है। इसमें रेल दुर्घटना को रोकने के लिए आपात स्थिति में स्वतः ब्रेक लगाए जाने की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद लखनऊ द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10 मई तक बढ़ा दी गई है। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि अभ्यर्थी 8 मई से 11 मई तक अपने आवेदन पत्रों में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। प्रदेश में उपलब्ध कुल 271,093 सीटों के सापेक्ष अब तक लगभग 380,000 से अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में कल देर शाम हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आज भी बलिया, मऊ तथा आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी और मध्यम वर्षा, वहीं गाजीपुर, इटावा, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और औरैया जनपदों में हल्की बारिश, तेज हवा और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। इसी के साथ समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: एम के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
2: दो बजकर चार मिनट का वक्त, वायदे के मुताबिक शिल्पी एक बार फिर हाजिर आपके लिए प्रोग्राम हॉट मेल लेकर। हॉट मेल वो प्रोग्राम जो आपके दिल के बेहद करीब है, क्योंकि भाई आप हमें मेल्स भेजते हैं इस प्रोग्राम में और अपने पसंद के गाने भेजते हैं जिन्हें हम प्ले करते हैं। तो भाई आपको मेल्स कहाँ भेजने ये तो आप जानते हैं, लेकिन जो हमारे नए लिसनर्स हमसे जुड़े उनको बता देते हैं। एफ एम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आप हमें मेल भेज सकते हैं। और हमारा मेल आईडी में आप याद रखिएगा, आकाशवाणी में वी है ना कि डब्लू। अक्सर ऐसा होता है कि लोग शिकायत करते हैं कि पता नहीं कहाँ मेल गया क्या है, तो उसमें बता दें कि आकाशवाणी में वी है। तो भाई प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं और गाना एक अच्छा सा बजा देते हैं और इसके बाद आपके मेल शामिल करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेल आप एक बार कीजिए। हमें मिल जाता है वो 5 बार मेल कीजिए, 10 बार मेल कीजिए, तो वही चीज़ बार बार मिलती है। तो कोशिश कीजिए कि बस एक बार मेल कीजिए और ये आपके साथियों के लिए भी सुविधादायक होगा और मेरे लिए भी। तो बस इंजॉय कीजिए ये ट्रैक और उसके बाद आपकी पसंद का सिलसिला हो जाएगा जारी प्रोग्राम हॉट मेल में।

जी तो भाई 2:07 हो गए और अब हम मेल पढ़ना शुरू करते हैं. टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, आप सब ने मेल किया है. सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ कालका से. और मेहर अरोड़ा जी का मेल आ गया है. ममता कीर्ति भूमिका. और ये मेल आया पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर से. शरून नूर अंसारी जी, कोई भी गीत सुनवा दीजिए. ग्राम व पोस्ट हर हरपुर मटकली जिला बरेली से. फरियाद शकील, मोइन, तस्लीम और डीजे प्रधान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार दूदी, गौ फ्रांसी हिसार से. राधे कुमार विद्यार्थी जी, गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से. राधे कुमार विद्यार्थी, सविता, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार.

ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छे लाल बुलाके वाली और फतना जा फिल्म भी इन्होंने लिख दी है और लिखा है कि ये सुनवाने का कष्ट करें जी, ज़रूर कोशिश करते हैं। आफ्ताब अंसारी जी आदाब लिख रहे हैं, तो आपको भी भाई आदाब। और लिखा है शेरवानी स्कूल गुंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी जी। और मुनेश कुमार राज जी का भी मेल हमारे पास आ गया है और इन्होंने लिखा है कि आप मुझे भूल रही हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी भूल नहीं रही हूँ और आपने जो चीज़ लिखी है मैं बिल्कुल नोटिस कर रही हूँ और आपने जो मूवीज़ के नाम लिखे हैं वो भी मैंने पढ़ लिए हैं। और इन्होंने लिखा डेडिकेटेड टू योर एंटायर FM टीम, ऑल द लिसनर्स एंड द होल राज फैमिली। ओके, आपका मेल आया है हमारे पास भानपुर हरौरा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से जी। इसके बाद बिट्टू गगनेजा जी का मेल आ गया, सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, दिशानी और निमित जलालाबाद वेस्ट से। बाबू अंसारी जी, गुड आफ्टरनून मैम, और अहमदपुर बाजार बाराबंकी से, बहुत दिनों बाद मेरी पसंद का गाना नहीं बज रहा, बहुत दिनों से नहीं बज रहा है, तो प्लीज़ आप गाना सुनवा दीजिए। चलिए कोशिश करते हैं। कमलकांत गुप्ता जी समडीला नवापारा से, मुकेश, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपिका, दीपक गुप्ता और अंकुर राघव गुप्ता जी। नितेश जी का भी मेल आ गया, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन, ये पलारी छत्तीसगढ़ से, किसी भी गीत में शामिल करने को कहा। आफ्ताब अंसारी जी आपका मेल शामिल कर चुके हैं। दिलीप कुमार जी, दिलीप कुमार जी का भी मेल आ गया, बूंदीचक, भागलपुर, बिहार से, दिलीप कुमार सैनी, कमल किशोर साहू जी। तालिब अंसारी जी राजा कटरा बाराबंकी से हमें मेल कर रहे हैं। इसके अलावा आफ्ताब अंसारी जी का मेल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो बार बार हमें मेल कर रहे हैं, शायद याद दिला रहे हैं कि आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं पढ़ चुकी हूँ। गावना थाना पंजाब से हरजिंदर शिंदा, जसवीर जैसी, सीता और गीता, अपनी पसंद की किसी भी गीत में शामिल कीजिए। पटेल नगर मलौत, डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी, गगनदीप जजोरिया, अर्जू जजोरिया और गुडू। तो आप ही में से किसी की पसंद का गीत हम करने जा रहे हैं शामिल, एंजॉय कीजिए हॉटमेल में अपनी पसंद का गीत।

0: 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा,
1: विश्वास और संस्कृति की अनमोल धरोहर। आकाशवाणी,
2: अपनी शुभकामनाओं के साथ हमारे साथ हैं आकाशवाणी लखनऊ के प्रथम समाचार वाचक।
3: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों के लिए यज्ञदेव पंडित।

मेल्स का सिलसिला लगातार है जारी और ये मेल आ गया है सुनील पाठक जी का। नमस्कार लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि हॉटमेल का हाल बहुत बुरा है, ऐसा क्यों भाई? भाई लिख रहे हैं कि इनकी जो लोग तारीफ करते हैं उनके मेल पढ़े जाते हैं। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये आपकी थोड़ी सी हम कहेंगे गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। और आपका नाम देखिए आज शामिल हुआ सुनील पाठक जी, और आपने अनारकली बाजार जगराव पंजाब से मेल किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमारे पास मेल आ गया उत्तम कुमार भगत जी का, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णव आनंद, सत्यानंद, बोहड़ा गाछी, पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुडी भगत, और ये पाकुड़ झारखंड से थे उत्तम कुमार भगत जी। बोधराज खोरवाल जी का मेल आ गया है उत्तम नगर दिल्ली से, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, प्रिंसी सिंह जी का, विजय लक्ष्मी कुशवाहा, सैंडी जनपद हरदोई, सांडी ओके फिल्म इन्होंने लिख दी है और लिखा है देख ले एक नज़र दिल को करार मिलता है, ये गाना इन्होंने लिखा है साधना सरगम जी की आवाज़ में, सुनवा दीजिए। चलिए कोशिश पूरी रहती है, हम ज़रूर सुनवाएंगे। विमला अनेजा, सतीश अनेजा जी का भी मेल हमारे पास आ गया है और चंडीगढ़ सिटी से, थैंक यू सो मच, आप हमें रोज़ मेल करते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद आफ्ताब अंसारी जी लिखा है मैं अगर बड़े भाई के मोबाइल से ईमेल कर रहा हूँ, मैं अपने बड़े भाई के मोबाइल से ईमेल कर रहे हैं, इनका नाम मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा जिला बाराबंकी से, जी जी जी बिल्कुल।

बिल्कुल बिल्कुल, आपके भी हमें मेल मिलते रहते हैं। और इन्होंने लिखा भी है कि शिल्पी दी आपको प्यार भरा गुड आफ्टरनून, सो गुड आफ्टरनून। और इन्होंने भी हमें लिख दिया है मेल, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर अब आप आराम कीजिए। दिलीप रामेकर जी और हर्षा, अक्षय, रुद्रा, रुचिरा, इस समस्त रामेकर परिवार ने आकाशवाणी लखनऊ और हॉटमेल प्रोग्राम में नमस्कार भेजा है और साथ ही अपनी रिक्वेस्ट भी भेजी है। शारून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, आप सबके नाम शामिल हो चुके हैं लेकिन आपने फिर से मेल भेजा है। इसके बाद जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, पापू, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मिर्जा, इमरान बेग, रिजवान भाई, इनकी फरमाइश जो है वो हमने बिल्कुल नोट कर ली है। भारत जोशी जी का मेल आ गया है, आकाशवाणी के एक नियमित श्रोता है और आप केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, खासतौर पर फिल्मी गीतों कार्यक्रमों का बहुत बड़ा प्रशंसक हो और गीत सुनना चाहते हैं। और इन्होंने टूना गिरी, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड से हमें मेल किया, हिमांशु, कमला, अनीता और भरत जोशी। संजय कुमार जी, बहुत सुंदर प्रोग्राम प्रस्तुति, लाजवाब गीत भी सुनना चाहते हैं और बिल्कुल हम जरूर सुनवाते हैं। आर कुमार जी, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, वडिंग खेड़ा पंजाब से आपका मेल आ गया है। थाना राम शर्मा जी, प्रोग्राम काफ़ी एंटरटेनिंग लग रहा है और टी आर शर्मा है, होडू बलोत्रा राजस्थान से, थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र छीपा जी, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, मैसेज जरूर शामिल कीजिए। तो लीजिए भाई, शामिल कर लिया है हमने। इसके अलावा जयदेव देव जी का मेल आ गया है और लिखा है मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, एंड गुड आफ्टरनून भी लिखा है, सो गुड आफ्टरनून। और लिखा है माँ की ममता को निस्वार्थ प्रेम या ईश्वर रूप कहा जा सकता है, एक ऐसा अटूट एहसास जो त्याग, समर्पण और निस्वार्थ देखभाल का प्रतीक है। सभी माओं के लिए गाना डेडिकेट कर दीजिए, कोई अच्छा सा गाना सुना दीजिए। और इन्होंने खासतौर पर रुद्रपुर, नैनीताल, उत्तराखंड से हमें मेल किया है। नरेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर, मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला इंगले, आशीष मोहरकर, इन सब ने सुनना चाहा है गीत और ज़रूर हम प्ले करने की कोशिश करते हैं। और अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फिलहाल कुछ रिक्वेस्ट हैं जो हमारे पास आई हैं और जिनके नाम लिए उन्हीं में से किसी की पसंद का गाना हम जा रहे हैं करने। प्ले, इन्जॉय कीजिए।

0: एम के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
2: जी प्रोग्राम चलो हॉट में शिल्पी आपके साथ 107 FM रेनबो पर। फिल्म पेंगस का गाना सुनना चाह रहे हैं। पद्मा टॉकीज ने पनगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति मंगलाबेन, अश्विन शाह जी और हमारे पास मेल आ गए हैं। तुलसी मस्किन जी का, वीना मस्किन, चैतन्य मेघा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, ये गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से मेल हमारे पास आपका आया है। हमारे पास सुमेरा परवीन जी का भी मेल आ गया, सईद अब्बासी, निगत परवीन, शनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। और गुड आफ्टरनून लिखा और लिखा है हाउ आर यू भाई, एक बार मेल करता हूँ छूट जाता है, देखते हैं आधे घंटे तक उसका दोबारा मेल करते। लीजिए अब आप शामिल हो गए, अब आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके अलावा दिग्दर्शन कौर जी का भी मेल आ गया है मेरठ कैंट से और लिखा है कि भाई कोई गाना सुनना चाह रही हैं तो बिल्कुल सुनवाते हैं आपको गाना। मनोज बंसल जी हांसी हरियाणा से, आज कोई फरमाइश नहीं है क्योंकि आपने मेरी पसंद का गीत सुनवा दिया जिसके लिए धन्यवाद लिखा है। ओके और प्यार भरा नमस्कार के साथ हमको मेल करा है लोकेश संतोष काले ने। तेजस जी, गंजनन जी, राजू माथे, हीरा मंक का भी मैसेज हमारे पास आ गया है और भाई मूसा शेख का मैसेज आ गया है हमारे पास, सनावत से शेख मूसा मोहसिन जी का मेल आ गया है। निसार अली साहब का भी मेल आ गया तेलीवाला उत्तराखंड से, नौशाद, बेबी आलिया, आयान बाबू और इसके अलावा हमारे पास पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से आप सबका मेल आ गया है। और चलिए अब आप ही में से किसी की पसंद का गीत एंजॉय करते हैं हॉट मेल प्रोग्राम में।

जी जनाब, बहुत पुकार रहे हैं, बहुत सारे मेल हमारा इंतजार कर रहे हैं। रामेश्वर जी का मेल आ गया। नमस्कार बहन जी, क्या मेरा मेल शामिल नहीं कीजिएगा? रामेश्वर जी लिख रहे हैं और ग्राम व पोस्ट मुंगीसरपुर कानपुर देहात से। पूरा कठेरिया परिवार है और धन्यवाद के साथ हमको मेल लिखा है। और साथ ही स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल अविराज, कोई भी गीत सुनवा दीजिए गाँव लुगढ़ ठाकुराव वाला से। बहुत दूर दूर से आप हमें मेल करते हैं, जिसके लिए हम बराबर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा नंबर कब आएगा जी? उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल जी, हमने देखिए अब आपका नाम ले लिया है। मूसा शेख जी, आपका भी नाम कई बार ले चुके हैं और कई बार क्या मतलब कई बार आपके मेल आ चुके हैं और आपका नाम लिया जा चुका। तुलसी मस्कीन जी का भी नाम लिया जा चुका है, लेकिन फिर भी वो बार बार हमें मेल करते हैं। मतलब कुछ लोग हैं बिल्कुल फिक्स हैं, आपकी बार मैं लिस्ट बनाऊंगी जो लोग हमें ज़्यादा मेल करते हैं, कई बार करते हैं, उनके बारे में मैं जिक्र करूंगी। और राजेश वर्मा जी का मेल आ गया है और इन्होंने गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिवमंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्नस भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार जी, अब्दुल गफ्फार जी, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर, राजेंद्र कटारे, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से और भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, किसी भी गीत में शामिल कीजिए, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। इसके अलावा हमारे पास मेल आ गया है नेहर राजस्थान से, नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार और हिमांशु सुधार जी। और फिर हमारे पास ये मेल आया है दिग्दर्शन गौर जी का, लिखा है सभी श्रोताओं से आग्रह अपने संदेश में पोस्टल एड्रेस लिखे, छोटा एड्रेस लिखे, कम नाम लिखे ताकि प्रोग्राम का समय बर्बाद ना हो। इन्होंने गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ आपने नाम लिखा है। हीरामणि वर्मा जी, परसमणि, मुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल, बतरंगी, भाटापारा छत्तीसगढ़ से आपका मेल आ गया है। हीरामणि वर्मा जी का भी मेल अभी हमने पढ़ा है और फिर से मेल आया। संदीप मक्कड़ जी का भी मेल आ गया है और इन्होंने ज्योति मन्नत भारत कमल साहनी प्रोग्राम पिंगा वाला चौक गोराया जोधपुर से जालंधर से मेल किया है। रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, जॉन डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से आपका मेल है। और नरेश जी, नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा, खेल बाजार पानीपत से और शिवजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू सिक्का, सभी के मेल हमने शामिल कर लिए हैं। और अब बारी आप ही में से किसी के पसंद के गाने के, एंजॉय कीजिए।

राजस्थान की गलियों में पहुंच गए थे हम, राजस्थान की पूरा एटमॉस्फेयर हमको फील हो रहा था ये गाना सुनकर. मैसेज आ चुका है हमारे पास मेल किशनगंज बिहार से, रविंद्र मोहन दास, आशा देवी जी का कोई भी गीत सुनवा दीजिए. अब्बासी जी आपको मैं पढ़ चुकी हूँ आपका मेल, और लिखा है कि लगता है गलत आईडी पर मेल कर दिया है. लीजिए आपका मैं मेल पढ़ चुकी हूँ सईद अब्बासी जी, और आपको शायद लगातार आप सुन नहीं रहे इससे दिक्कत है. जयराम खोरवाल जी आपका मेल भी मैं पढ़ चुकी हूँ, और साथ ही रविंद्र मोहनदास जी का भी मेल आ गया. दिलीप रामेकर जी अमरावती महाराष्ट्र से, अक्षय, रुद्रा, रुचिका, आप लोग कई बार मेल करते, मेरी बात सुनते नहीं हैं आप लोग. मंसूरी रेडियो लिसनर्स का बाजार रोड मुंगीसापुर से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून, निशा, शबिश्ता, मोहम्मद नसीम, पलक, लुबना और यश मंसूरी जी, और सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना ताई गुंडाने, हीरा मणि शंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गुंडाने, ऑक्सीजन पार्क, राहुल नगर, अमरावती से. अपने पसंद किसी गीत में शामिल करने के लिए हमें लिख के भेज रहे हैं, इंतजार में है नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से, मुसरत जहां नाज, तलत जहां, फरहत जहां, रिफहत जहां, नुजहत नाज, शाजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी, और लिखा है प्रोग्राम में जरूर शामिल करने की कोशिश कीजिए. लीजिए आप शामिल हो गई हैं. आर्यन वर्मा जी का जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मैसेज आ गया. अशोक, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद, राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खानवा से लक्ष्मी नंदी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप, और साथ ही हमारे पास मेल आ गया है प्रताप जिनागल गांव खरिया जिला सिरसा हरियाणा से, इंद्रा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया, और गीत लिखा है कोई भी.

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
5: नमस्ते आरजे मैम, पवन वर्मा जी नमस्कार। आपको भी उधौली बाराबंकी से किसी भी गाने में शामिल कर लीजिए। हालांकि उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी हमको लिख के भेजी है। और नरेश जी आपका मेल हम शामिल कर चुके हैं। अर्पित शर्मा जी का मेल आया है और तोशिका शर्मा जी का, और इन्होंने होड़ू बालो तरह से मैसेज लिखा है और लिखा है पूरे दिन सुनते हैं, बहुत ही मज़ेदार और रोचक कार्यक्रम इनको लगते हैं। इसके अलावा हमारे पास मेल आ गया है रंगनाथ अवस्थी जी का हुसैनगंज लखनऊ से, और तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। अब्बासी साहब आपके मेल हम पढ़ चुके हैं और लगातार आप हमें मेल कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि इस तरह आप मेल करते हैं जिससे कुछ हमारे जो लिसनर्स हैं उनके मेल छिप जाते हैं। लेकिन हॉटमेल बहुत बढ़िया चल रहा है, आवाज़ बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और इन्होंने कौन है, ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़ जी। इसके अलावा हमारे पास शुभ दोपहरिया लिखते हुए मेल आ गया है रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता।

और सुंदरम गुप्ता ओखला संगम विहार दिल्ली से। ये सब मेल्स छुप जाते हैं जब आपके बहुत सारे मेल हो जाते हैं, तो इन लोग के मेल नहीं पढ़ पाते हैं हम लोग। और इसके अलावा हमारे पास मेल और आया है सुजीता जी। शिल्पी मैम, आप नए नए श्रोता हैं, आप हमारा नाम ज़रूर शामिल कीजिए और किसी भी गीत में। छत्तीसगढ़ पिपरिया से सुजीत केशरी, सुनील केशरी, कृष केशरी, झिलमिल केशरी, हम सभी अपने नाम के इंतज़ार में हैं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और यूं ही ये जुड़ाव जो आपने आज हमसे जुड़े हैं, ये अपना जो संबंध है हमसे यानी FM रेनबो के साथ बिल्कुल बनाए रखिएगा। और देखिए कि कई लोग जो बहुत बार मेल करते हैं इस चक्कर में ये सब नाम छिप जाते हैं, इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप मेल ना कीजिए। सनावत से शेख मूसा मोहसिन जी, आपका मेल शामिल हो चुका है। उत्तम राम खोरवार, धर्मेंद्र छिपा जी, MK राज जी, सभी का मेल हम शामिल कर चुके हैं।

0: एम के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: 2:53 समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन चलते चलते जिन लोगों के मेल हम पढ़ पाते हैं, पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़ेंगे। रमाकांत सिंह जी का मेल आ गया है, लिख रहे हैं, तुम बिन कितने आज अकेले, क्या तुमको हम बतलाएं। अंबर में है चांद अकेला, तारे उसके साथ तो हैं, तारे भी छुप जाएं अगर तो रात अंधेरी रात तो है, पर हम तो दिन रात अकेले, क्या तुमको बतलाएं। जी रमाकांत सिंह जी ग्राम मदनापुर जिला लखीमपुर खीरी से मेल कर रहे हैं और गाना जो सुनना चाहता है उसकी रिक्वेस्ट आपने हमें भेज दी है। इसके अलावा हमारे पास मेल आ गया है नोहर राजस्थान से नरेंद्र सुधार, मनोज और हिमांशु जी का, और शंभू दयाल जी का भी मेल आ गया है। लिखा है, सुपर फास्ट प्रोग्राम पेश करने के लिए आपका बहुत

बहुत धन्यवाद। और शिल्पी जी, अगर हो सके तो अपनी पसंद की, आपकी पसंद का कोई भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए। गांव जाखोज से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद वारिस अली खान साहब का मैसेज आ गया है कि आपको मालूम है, बात सह गया तो रिश्ते ढह गए और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। रिश्ते रह गए और ढह गए। ओके, तो भाई बातों को कह देना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अपने रिश्ते हैं तो ज़रूर रहेंगे, नहीं तो ढहना होगा तो ढह जाएंगे। और उन्होंने संजय नगर ऐशबाग से हमें मेल किया, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए आपका। मल्होत्रा जी, आपका मेल हमें मिल चुका है, और बहुत सारे लोग जिन्होंने हमें दूर दूर से मेल किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी के नाम हमने तकरीबन पढ़ दिए हैं। और जय राम जी, उत्तम कुमार जी, जय राम खोरवाल, सचिन खोरवाल कंटिन्यूअसली लिख रहे हैं, जबकि आपकी पसंद का गाना भी प्ले हो गया कि हमारा नंबर कब आएगा। तो इस पर हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि हमने तो प्ले कर दिया, अब आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं हमें क्या पता है। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के, अम्बेडकर चौकी पकौड़ी से उत्तम जामदड़े, स्वराज दाम पड़े। और अब हम

बातों को कह देना ज्यादा जरूरी है, अगर आपके अपने रिश्ते हैं तो जरूर रहेंगे, नहीं तो ढहना होगा तो ढह जाएंगे। और उन्होंने संजय नगर ऐशबाग से हमें मेल किया, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए आपका। मल्होत्रा जी, आपका मेल हमें मिल चुका है, और बहुत सारे लोग जिन्होंने हमें दूर दूर से मेल किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी के नाम हमने तकरीबन पढ़ दिए हैं। और जय राम जी, उत्तम कुमार जी, जय राम खोरवाल, सचिन खोरवाल कंटिन्यूअसली लिख रहे हैं, जबकि आपकी पसंद का गाना भी प्ले हो गया कि हमारा नंबर कब आएगा। तो इस पर हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि हमने तो प्ले कर दिया, अब आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं हमें क्या पता। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के, अम्बेडकर चौकी पकौड़ी से उत्तम जामदड़े, स्वराज दाम पड़े। और अब हम प्रोग्राम वाइंड अप करने का टाइम हो गया, 2:55 ठीक हो गए हैं, और आप ही में से किसी की पसंद के गाने से इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने की इजाजत लेते हैं। शिल्पी, नेक्स्ट प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में एक बार फिर मेरा और आपका होगा साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

नमस्कार। दोपहर के 3 बजे सुनिए मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं और डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवार वोटों सहित विभिन्न डेटा उपलब्ध हैं। आयोग ने कहा है कि हाल ही में संपन्न 803 विधानसभा सीटों पर चुनाव से जुड़े सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने वाले कुल उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष मार्च में 2,17,00,000 तक पहुंच गई है। पेंशन वृद्धावस्था के दौरान लोगों को निर्बाध मासिक आय प्रदान करती है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद नागरिकों को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रबंधन की परिसंपत्तियां एनपीएस के तहत लगभग 16,00,000 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं। भारत की विमान कंपनी इंडिगो 15 जून से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा शुरू करेगी। इस हवाई अड्डे से पहली उड़ान सेवा होगी। इसमें बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख महानगरों के साथ साथ अमृतसर, चंडीगढ़, धर्मशाला, जयपुर, लखनऊ, नवी मुंबई, पंतनगर और श्रीनगर जैसे महत्वपूर्ण गंतव्य शामिल है। 15 जून को पहली उड़ान लखनऊ से नोएडा के लिए होगी, जो लखनऊ से सुबह 7:05 पर रवाना होकर 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी। प्रदेश के होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मिर्जापुर के परिसिया क्षेत्र में मंडलीय होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र और कार्यालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण केंद्र के बनने से विंध्याचल मंडल के होमगार्ड जवानों को आधुनिक प्रशिक्षण के लिए दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर ही जवानों को आपदा प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण सहित विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। प्रदेश सरकार ने राज्य में लगे सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं को बिजली इस्तेमाल करने के बाद ही बिल मिलेगा। उपभोक्ताओं को एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक बिल जारी किए जाएंगे। वहीं स्मार्ट मीटर और बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई से 30 जून तक अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर विशेष कैंप और सहायता केंद्र लगाए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रत्येक कार्यालय में विशेष हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी, जहां बिल संशोधन और तकनीकी शिकायतों के मौके पर समाधान किया जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर आज विभिन्न जनपदों में सेवा और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के निर्देशन में रक्तदान पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। जौनपुर जिले में राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव ने आपातकालीन परिस्थितियों और दुर्घटनाओं में पीड़ितों की सहायता के लिए तत्पर रेड क्रॉस संस्था का आभार जताया। अमरोहा में भी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

3:07 आगाज हो चुका है प्रोग्राम सतरंगी दुनिया का 100.7 एफएम रेनबो पर. शिल्पी आपके साथ है. और भाई ये प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में आज हम किस रंग के बारे में बात करते हैं? कहते हैं बहुत सारे रंग हैं इस दुनिया के और उसमें से कोई एक रंग चुरा कर लाते हैं प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में. और आज हम चुरा के लाएं गणित का रंग. अब आपको लगेगा अरे ये कौन सा रंग है भाई? भाई ये मैथमेटिक्स जो आप पढ़ते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती है. हम में से कई लोग होते हैं जिसको सबसे कठिन सब्जेक्ट अगर पूछे तो वो लगता है मैथ्स है. यानी मैथ करना पढ़ना बहुत मुश्किल है, गणित विषय बहुत कठिन है. हालांकि कहते हैं अगर इसे अगर आसानी से समझ मतलब किसी को समझ में आ जाए तो उतना ही आसान है, लेकिन अगर ना समझ में आए तो उतना ही कठिन है. तो अब आपको लग रहा है कि मैथ्स की दुनिया में भी कोई रंग होता है? जी हाँ, बहुत सारे रंग हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जब पढ़ते हैं या समझते हैं तो हमें लगता है अरे वाह क्या बात है, इसमें भी जादू है. और कुछ ऐसे मैजिकल बातें होती हैं या फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते लेकिन होती है मैथ्स में. तो उन सभी बातों को लेकर हाजिर हो चुकी हूँ मैं. तो बस बढ़िया से गाने एंजॉय कीजिए और इन मैथ्स की ट्रिक्स को और मैथ्स के मैजिकल चीज़ों को जानिए हमारे साथ.

वेल नंबर 9 के साथ अगर शुरुआत करते हैं तो आपको बता दें कि नंबर 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो रिजल्ट आता है, यानी नंबर 9 को अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 45, और जब 45 को ऐड करते हैं यानी 4 और 5 को ऐड करते हैं तो उसका सम हमेशा रहता है 9। ऐसे 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 27, और 27 को जब ऐड करते हैं तो आंसर आता है 9। 97 से क्या होता है, थोड़ा सा मेमोरी अपनी शार्प कीजिए, फटाफट जवाब दीजिए कि कितना होता है। 63, एंड व्हेन वी ऐड 6 एंड 3 इट कम्स 9। तो भाई जब तक आप इस कैलकुलेशन को करिए तब तक हम बढ़िया सा गाना प्ले करते हैं, एंजॉय कीजिए।

0: के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
2: तीन बजकर 22 मिनट हो गए, 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है सतरंगी दुनिया, शिल्पी आपके साथ है और बात हो रही है आज मैथमेटिक्स की दुनिया की कुछ मजेदार फैक्ट्स की। तो भाई हमारी नेचर यानी कि जो प्रकृति है, खूबसूरत सी प्रकृति, जी हाँ, उसका भी गणित से काफी गहरा नाता होता है। वेल, सूरजमुखी के फूल जो होते हैं उसके अंदर जो बीज होते हैं यानी जो सीड्स होते हैं उनका जो पैटर्न होता है वो फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, यानी 0, 1, 3, 2, 3, 5, 8 इसको फॉलो करता है। तो हमारे जो प्रकृति है वो भी मैथमेटिक्स से अलग नहीं है, यानी कहीं ना कहीं इसको मैच करती ही है। तो आप काउंट कीजिएगा और देखिएगा क्या यह बात सच है। जब तक आप ये काउंट कीजिए, दिमाग लगाइए कि सच है कि नहीं, तब तक हम जल्दी से आपके लिए एक बढ़िया सा गाना और प्ले करते हैं।

गली गली फिरना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है ऐसा टीचर जो आपको मैथ्स ऐसे समझा सके. लेकिन इस समय जो हम पढ़ा रहे हैं आपको मैथ्स, यानी मैथ्स की दुनिया की कुछ बातें बता रहे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होंगी आपको, आई होप सो. वेल, आपको बता देते हैं, अंग्रेजी भाषा में 4 ऐसा नंबर है जिसके अक्षरों की संख्या उस नंबर के इक्वल है. यानी FOUR काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 करिए. हाँ हाँ, ये तो आप कर ही सकते हैं, तो सिंपल मैथमेटिक्स, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की कोई जरूरत नहीं है.

जी, तो अब हम चलते हैं मैथ्स की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं. 40 की स्पेलिंग आपको आती है? 40 40, इसको इंग्लिश में आप जैसे 40 लिखते हैं तो इसकी स्पेलिंग क्या लिखते हैं? आप लिखिए जल्दी से कॉपी पर, और उसके बाद 1 की स्पेलिंग लिखिए. अब आप देखिए, ये जो 40 की स्पेलिंग है ये अल्फाबेटिकली लिखी गई, यानी ये ऑर्डर में है. वहीं जो 1 है वो ऐसा नंबर है जिसकी स्पेलिंग एंटी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी गई है. हाँ हाँ, देखिए बिल्कुल, आपको हमने लिखवा दिया. अब आप देखिए कि मैं सच कह रही हूँ कि नहीं, और जब मैं सच कह रही हूँ तो उस पर मैं एक बढ़िया सा गाना सुनवा दी. एंजॉय करते रहिए प्रोग्राम सतरंगी दुनिया 100.7 FM रेनबो पर.

well, चलिए अब थोड़ा सा आपको घुमाते हैं एक मैजिकल नंबर के साथ, और वो नंबर है 6174. इसे कापरेकर कांस्टेंट भी कहते हैं, और इन चार नंबर्स को जब आप बड़े से छोटे में रखते हैं और फिर छोटे से बड़े में, उसके बाद जो बिगर नंबर है उसमें से छोटे नंबर को घटाते हैं, तो ऐसा करने पर एक समय ऐसा आता है कि आखिर में जाकर 6174 नंबर ही मिलता है. अब आपको लग रहा हो ये क्या बता गए कि बड़े से छोटे घटाते हैं, छोटे से बड़े करते हैं, क्या कहेंगे, मुझे कुछ नहीं समझ में आया. वेल देखिए, जैसे 6174 को बड़े से छोटे में लिखें तो बनेगा 7641, राइट, और छोटे से बड़े में लिखें तो बनेगा 1467. अब जब आप इन्हें माइनस करते हैं तो आता है 6174. अब आप कोई भी चार नंबर्स, इसी तरह के चार अंक वाले नंबर्स लीजिए, जैसे 9687, इससे ऊपर वाले मेथड से माइनस करके देखिए, यानी 9687, तो अगर हम इसे ग्रेटर टू स्मॉलर लिखेंगे तो क्या होगा, 6 ग्रेटर टू स्मॉलर लिखेंगे तो 7878, अब आप इसको ज़रा सा ट्राई कीजिएगा, यानी कि जैसे कि हमने आपको बताया ना कि 6174 को जब हम लिखते हैं तो 7641 लिखते हैं, और इसको हम जब शॉर्ट फॉर्म से लिखते हैं, मतलब छोटे नंबर से लिखते हैं, तो लिखते हैं 1467. इसी तरह 9687 को ट्राई कीजिएगा तो भी आंसर 6174 पर पहुंचेगा, और आप ट्राई करके देखिएगा इस नंबर को और मुझे बताइएगा कि क्या आपने जो लिखा वो सही हुआ.

0: के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।

जी 3:46 हो गए हैं, प्रोग्राम सतरंगी दुनिया आप एंजॉय कर रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर शिल्पी के साथ. और मैथमेटिक्स की दुनिया में घूमते घूमते आपका दिल अगर हो गया हो थोड़ा परेशान, तो आपको क्या करना है? बस कुछ ही पल बचे हैं 4 बजने में, यानी 4 से 4 और 4 से चाय पीने में. थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइएगा इस प्रोग्राम के बाद, बढ़िया से चाय पीजिएगा. और एंटरटेनमेंट का सिलसिला तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप जुड़े रहेगा 100.7 FM रेनबो से, वो जारी रहेगा. विजय श्रीवास्तव आएंगे अगले 4 आवर्स आपको एंटरटेन करेंगे. और ख़ास तौर पर हम जो आपको एंटरटेन कर रहे हैं वो मैथ्स एंटरटेन कर रहे हैं. अब भाई मैथ्स में अगर आपसे कोई कहे, अगर कोई कह दे कि भाई ज़रा जोड़ के बताओ 1 से लेकर 100 तक के जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर ले तो क्या आंसर आएगा? जी जी जी, आपसे कोई पूछ ले अगर कि अगर 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स को ऐड करना तो क्या आंसर आएगा, तब आप क्या करेंगे? आप बहुत परेशान हो जाएंगे ना, क्योंकि इतना सारा कैलकुलेशन करने में तो थोड़ा सा हालत ख़राब हो जाती है, मेरी खुद ही ख़राब हो जाती है. तो आप बस सिंपल सा काम कीजिएगा, बताइएगा उसको आंसर है 50-50, यानी 5050 इसका आंसर है. ये मैं आपको बता दे रही हूँ. अब ये कैसे हुआ, कब हुआ और कैसे इसका निकला आंसर, ये तो थोड़ी लंबी कहानी है. लेकिन अगर आप ये बता देंगे तो डेफिनेटली आप दूसरे की नज़रों में जीनियस हो जाएंगे. और ये सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो सुनकर. तो बस यूं ही जुड़े रहिए और एंटरटेनमेंट प्लस इंफॉर्मेशन आपको यूं ही मिलते रहेंगे. खटाखट खटाखट खटाखट.

0: जी 3:55 हो गए हैं और 3:55 ये जो हमें दिखा रहा है कि भाई हमारे जाने का वक्त है और विजय श्रीवास्तव के आने का वक्त है, क्योंकि वो बहुत इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारी बातें लेकर आए हैं। क्यों विजय, मैं गलत तो कुछ नहीं कहा?
1: अरे आप कभी गलत कहती नहीं, बिल्कुल आप सही कहती हैं हमेशा
0: जी। तो अब मैं जाती हूँ।
1: आप जाइए, नहीं आप रुक जाइए। वैसे गाना तो आपने ऐसे ही लगाया जाने का, लेकिन अब इतनी अच्छी आपने मैथ की जो बातें की हैं, मुझे तो लग रहा है कि मैथ की क्लास लेनी पड़ेगी आपसे।
0: बहुत देर से कैलकुलेशन कर रहे थे बाहर बैठकर, और अब ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, गाना प्ले हो गया। अगले कुछ घंटे रहिए विजय के साथ। शिल्पी सिज बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड 107 FM रेनबो। बाय बाय।

नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। श्री मौर्य ने कहा कि जनगणना के माध्यम से देश की वास्तविक जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति और विभिन्न आवश्यकताओं का सटीक आकलन किया जाता है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा और उन्होंने लोगों से जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या भौतिक रूप से भरकर जल्द से जल्द जनगणना प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। निर्वाचन आयोग ने हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों, उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप के जारी किया है। सूचकांक कार्ड के उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा उपलब्ध है। आयोग ने कहा है कि हाल ही में संपन्न 803 विधानसभा सीटों पर चुनाव से जुड़े सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने वाले कुल उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष मार्च में 2,17,00,000 पहुंच गई है। पेंशन वृद्धावस्था के दौरान लोगों को निर्बाध मासिक आय प्रदान करती है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित ये योजना सेवानिवृत्ति के बाद नागरिकों को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। प्रदेश के होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मिर्जापुर के परिसिया क्षेत्र में मंडलीय होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र कार्यालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण केंद्र के बनने से मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही के होमगार्ड जवानों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रशिक्षण मिल सकेगा। इससे जवानों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और आपदा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में उनकी भूमिका और मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि लोगों को अब स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भारत की विमान कंपनी इंडिगो 15 जून से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। इस हवाई अड्डे से यह पहली उड़ान सेवा होगी जिनमें बेंगलुरु, हैदराबाद के साथ साथ अमृतसर, चंडीगढ़, धर्मशाला, जयपुर, लखनऊ, नवी मुंबई, पंतनगर, श्रीनगर जैसे महत्वपूर्ण गंतव्य शामिल हैं। 15 जून को पहली उड़ान लखनऊ से नोएडा के लिए होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना और लोगों से लोगों के संपर्क सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, सांस्कृतिक विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार, श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं को अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो चैनल।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: सपने बड़े हैं,
1: स्टाइल अलग है,
3: तो ये शो है आपके लिए।
1: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
3: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
1: सब कुछ एक ही जगह, तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
3: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: है।
1: एम के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
2: हाँ जी, 4:11 का समय हो गया है। सत श्री अकाल बोल रहा हूँ जी, नमस्कार बोल रहा हूँ आप सबको, खैर मकदम बोल रहा हूँ, चीख पुकार के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विजय मैं हूँ विजय, और लेकर आ गया हूँ आपके लिए विजय जैसा प्रोग्राम, यानी कि यूथ वेव, यूथ का अपना खास प्रोग्राम जिसका इंतजार रहता है यूथ को हर दिन हर शाम 4 बजे। तो आ चुका हूँ मैं इस प्रोग्राम में, गीत तो अच्छे लाया हूँ, साथ ही बातें बहुत अच्छी लाया हूँ। बातें इस तरह की हैं यार कि अभी तो 2-4 दिन से जो है मौसम खुशनुमा बना ही हुआ है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, बारिश भी हो रही है, रात में कूलर एसी सब बंद हो गए हैं, पंखे ही चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है कि अब, यानी अब गब्बर सिंह गूंजेगा, बोलेगा। कैसे? यानी कि सूरज देव जो है अब अपनी तपिश से हम लोगों को फिर से हैरान परेशान निगहबान करने वाले हैं, यानी कि पसीने की टप टप से फिर हम लोग जो है वो परेशान होने वाले हैं। तो भाई कोई बात नहीं है, पसीना निकलता है तो निकलने दो, लेकिन इनटेक हमें क्या करना है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज है फ्राइडे और आज बात होती है हेल्थ और हाइजीन की। तो बस इस विषय पर बात होगी कि किस तरह से आपको अपने शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखना है इन प्यारे प्यारे गीतों के साथ जिन्हें चुनकर मैं आपके पास लाया हूं। जैसे कि ये देखिए साहब, एक और बहुत बढ़िया से गीत सुन के आते हैं, उसके बाद बात करते हैं।

100.7 FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं यूथ वेव आज विजय के साथ। आज फ्राइडे का दिन है, हेल्थ और हाइजीन का सेगमेंट है, बात होगी हेल्थ की, हाइजीन की, सभी कुछ की। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि भाई ये जो खुशनुमा मौसम हुआ था, अब इसके बाद जो गर्मी की तैयारी है उससे निपटने के लिए गर्मी के दिनों में बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में बहुत सारी चीजों की जरूरी आवश्यकता होती है। पानी तो बहुत जरूरी है ही है, साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स का भी संतुलन बहुत जरूरी होता है, यानी कि तरल पदार्थों की मात्रा शरीर में बने रहना बहुत जरूरी है। वैसे लोग रोजाना 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं तो समझते हैं कि उससे ही तरल पदार्थों की जो कमी है वो शरीर के अंदर पूरी हो जाती है, लेकिन जनाबे आली ऐसा होता नहीं है, ऐसा सही नहीं है। इसके लिए आपको कुछ और चीजों का सेवन करना होता है, वो क्या चीजें हैं ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, उनका रोल क्या होता है, यह भी आपको बताना बेहद जरूरी है। और इन दो बातों के साथ आपको गाने सुनना भी जरूरी है, तो फिर आइए यूथ वेव में एक और धमाकेदार गाना हो जाए।

0: बंदर साथ हमारा हर दम है, जिंदगी के सतरंगी रंग FM रेनबो के संग।
1: जी हाँ, जिंदगी के सतरंगी रंग हैं और FM रेनबो के संग हैं। FM रेनबो के संग सारे जितने भी सतरंगी रंग हैं वो सब इसमें समाये हुए हैं। यहाँ पर हेल्थ और हाइजीन सेगमेंट आज है, उसमें हेल्थ की बात चल रही है कि किस तरह से गर्मी के मौसम में आप जो है वो अपने आप को जो है बचा सकते हैं तमाम तरह की चीज़ों से। उनके बारे में बताने से पहले आपको बता दूं, संडे यानी रविवार को हमारा हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम होता है। एक घंटे का पूरा हेल्थ एंड फिटनेस का प्रोग्राम है हमारा। इसमें इस बार जो है वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो मौजूद रहेंगे डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान साहब, MBBS MD हैं मेडिसिन विभाग के। इसके अलावा जो विषय है वो है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, जो कि सबसे ज़्यादा इस समय जो है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, कोई भी इससे बचा नहीं है। तो इसके बारे में बातचीत होगी। हो सकता है कि डॉक्टर साहब की इस बातचीत से आपके घर में अगर कोई समस्या पैदा हो रही है तो उसका समाधान आपको हेल्थ एंड फिटनेस में मिल जाए, इस एक घंटे की बातचीत में मिल जाए। तो इसलिए सुनना मत भूलिएगा आकाशवाणी लखनऊ FM रेनबो 100.7 MHz के फ्रिक्वेंसी। न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी आप सुन सकते हैं, DTH पर भी आप सुन सकते हैं। तो हेल्थ एंड फिटनेस इस बार रविवार 10 मई को समय 12 से 1, विषय है डायबिटीज और हाइपरटेंशन। फिलहाल चलिए अपने बारे में बात करते हैं, मतलब जो हमारा तो आज का सेगमेंट है उसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो होते क्या हैं। शरीर में कोशिकाओं के अंदर और बाहर पानी का सही संतुलन बनाने वाले जो मैं कहूंगा कि उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जिससे जो डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण जो है वो लोगों को हो जाता ना, आप कहते हैं डिहाइड्रेशन की समस्या हो गई थी, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर के पास ले गए, वो इनकी वजह से, इनका बैलेंस जब बिगड़ जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है, यानी हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रोलाइट्स अपनी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और इनमें होते कौन है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सब जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। गर्मियों में जब शरीर से ज्यादा पसीना निकलता है तो पसीने के साथ साथ सोडियम, पोटेशियम और अन्य जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब अगर बाहर निकल जाते, हमको दिख जाते तो हम पकड़ लेते, लेकिन दिखते तो है नहीं, तो ये वो चुपचाप बह के निकल जाते हैं। अब इनको आप पूरा कैसे करेंगे अपने अंदर, ताकि अगर ये निकल भी जाए तो भी आपके शरीर को नुकसान ना हो, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि बहुत देर से गाना इंतजार कर रहा है भाई।

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सिपाही, तकनीकी और ट्रेड्समैन तथा सिपाही पायनियर के पद के लिए भर्ती आयोजित कर रहा है। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जो सामान्यतः अपने संबंधित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के निवासी हैं। अभ्यर्थी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की वेबसाइट www.rect.crpf.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सिपाही, तकनीकी और ट्रेड्समैन कुल रिक्तियां 9175, पुरुष 9996 और महिला 79 रिक्तियां। सिपाही पायनियर की 20 रिक्तियां उपलब्ध हैं जो पुरुषों के लिए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.rect.crpf.gov.in। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में अनुबंध के आधार पर प्रारंभिक रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए 2 सलाहकार विशेषज्ञ के पदों की नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधिक विवरण के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार देख सकते हैं वेबसाइट nmcg.nic.in। भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय नई दिल्ली में तथा DCOs में प्रतिनियुक्ति अथवा अवशोषण के आधार पर वरिष्ठ अनुवादक के 6 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में वरिष्ठ अनुवादक के 6 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए विधिवत माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति इस विज्ञापन के जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर अपने आवेदन विधिवत माध्यम से अग्रेषित कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप, पद का विवरण, पात्रता मानदंड, वेतनमान, आवेदन और चयन प्रक्रिया तथा अन्य नियम एवं शर्तों आदि के लिए देखिए वेबसाइट census.gov.in। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन सक्रिय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में विभिन्न विभागों में एडजंक्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कोई भी अंतिम तिथि नहीं है और आवेदन पूरे वर्ष किए जा सकते हैं। आवेदनों पर समय समय पर विचार किया जाएगा। विज्ञापन के प्रथम चरण के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 है। अंतिम तिथि के बाद जो आवेदन प्राप्त होंगे वो अगले चरण के लिए विचार किए जाएंगे। अधिक विवरण के लिए, विस्तार से जानने के लिए देखें संस्थान की वेबसाइट www.nitkkr.ac.in। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लोधी रोड नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है इन रिक्तियों के लिए आवेदन। वैज्ञानिक डी वेतन स्तर 12, कुल पद हैं 12, जिनमें से 7 सामान्य वर्ग के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए तथा 3 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 1 EWS वर्ग के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सी वर्ग के लिए कुल 141 रिक्तियां उपलब्ध हैं और इनमें से 59 पद सामान्य वर्ग के लिए हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 21, अनुसूचित जनजाति के लिए 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 और EWS वर्ग के लिए 13 पद आरक्षित हैं। विस्तृत विज्ञापन आप देख सकते हैं NIC की वेबसाइट पर, जिसका पता है recruitment.nic.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा,
1: विरासत और स्वस्थ मनोरंजन की अनूठी पहचान। आकाशवाणी,
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई। आकाशवाणी की मधुर ध्वनि यूं ही जन जन तक ज्ञान, संस्कृति और प्रेरणा पहुंचाती रहे तथा सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का अपना ध्येय पूरा करती रहे, इसी आशा के साथ मैं SR बैनर्जी, पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी, आकाशवाणी के परिवार तथा असंख्य श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
3: पर आप सुन रहे यूथ वेव विजय के साथ। 4:34 का समय हो चुका है यहाँ पर, और हेल्थ

हाइजीन सेगमेंट है जहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रोलाइट्स की। जी हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लगभग हर जरूरी कार्यों को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ये हमारे खून, पसीने और शरीर के तरल पदार्थों में घुले मिले रहते हैं। पानी के साथ मिलकर शरीर के अंदर संतुलन को बना कर रखते हैं। यही कारण है कि सिर्फ पानी पीना हमेशा के लिए पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सही इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होता है। और अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो शरीर में कमजोरी, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐठन, दिल की धड़कन भी प्रभावित हो सकती है। यानी ये इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जिनका मैंने बताया सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो हमारे शरीर में है, ये जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अगर ये हमारे शरीर में इनका बैलेंस नहीं होता है और ये बैलेंस अगर बिगड़ जाता है तो समझ लीजिए कि भाई हालत बहुत खराब हो जाती है। इसीलिए पानी के साथ साथ इन चीजों का सेवन भी करना है। कैसे करना है और किन चीजों में ये पाया जाता है ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन एक बहुत प्यारा सा गीत आपका इंतजार कर

0: एम के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद। सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी। चलते रे इश्क में पड़ जाते
1: हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी,
0: आपके अपने रेनबो की जबानी।
2: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
3: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
4: ये प्रूफ
5: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
0: 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, 4:41 का समय हो चुका है यहाँ पर और विजय आज आपके साथ है। और इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो रही थी, क्यों जरूरी इनको माना जाता है। शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने में इनकी बहुत भूमिका होती है। इसके अलावा कैल्शियम और पोटेशियम जो है नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखते हैं और वो ठीक ठाक जो है वो काम करता रहता है। इसके अलावा मांसपेशियों में उसके सिकुड़ने और फैलने का जो क्रम होता है वो भी जो है वो बराबर रहता है। दिल की धड़कन को नियमित रखने के लिए भी पोटेशियम जैसे मिनरल्स बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अगर इनकी कमी हो जाती है तो दिक्कतें कहाँ कहाँ पैदा होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पोटेशियम की कमी से यानी हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम दिल के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये दिक्कत जो है यहाँ पर पैदा होती है। इसकी कमी से दिल की धड़कनों में अनियमितता, मांसपेशियों में कमजोरी, ऐंठन, कब्ज और पैरालाइज जैसी दिक्कतें जो है वो पैदा हो सकती हैं। दिल की धड़कन जो है वो अनियमित होती है, ये भी जो है वो सबसे बड़ी चीज़। पोटेशियम अगर कम है तो दिल बहुत तेज धड़कने लगेगा, आपको लगेगा कभी धड़कन कम होने लगेगी। इस तरह की दिक्कतें बहुत सारे जो है वो लोगों में होती है, अक्सर ये शिकायत करते हैं यार एकदम से धड़कने जो है वो तेज़ हो जाती हैं मेरी। इसका कारण यही होता है कि इन सारी चीज़ों की कमी जो है हो जाती है। मैग्नीशियम की कमी जो है वो इसकी वजह से चिड़चिड़ापन है ना, मांसपेशियों में ऐठन होने लगती है, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन बदलाव होने लगता है। कई चीज़ें हैं दिल की धड़कनों में यहाँ से भी अनियमितता जो है इसका का जोखिम रहता है कि प्रॉपर दिल की धड़कन जो है वो नहीं आती है। अगर आपका दिल आपके पास है, अगर किसी को दे रखा है तो बात अलग की है, लेकिन अगर आप ही के पास है तो ये दिक्कत आप महसूस कर सकते हैं। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं।

100.7 FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं यूथ वेव आज विजय के साथ और हेल्थ एंड हाइजीन सेगमेंट की यहाँ बात चल रही है। पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी की बात मैंने कर ली, इससे चिड़चिड़ापन हो जाता है, मांसपेशियों में कमजोरी, ऐठन, दर्द रहता है, धड़कन जो है दिल की वो अनियमित हो जाती है, कभी तेज़ धड़कने लगती है, कभी धीरे कम हो जाती है। इसके अलावा सोडियम जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है, इस पर हाइपोनेट्रीमिया जो है ये बीमारी हो जाती है। सोडियम की कमी से तंत्रिका तंग से जुड़ी समस्याएं जो है वो पैदा हो जाती हैं, इससे लो बीपी, जी मतलाने का और साथ ही उल्टी, चक्कर आना, इसके अलावा कई चीज़ों का भ्रम जो है आपको हो जाता है, याद रखने में दिक्कत होने लगती है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये मिनरल्स जो है हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं और इनको जो है वो आप ले कैसे सकते हैं, सवाल तो इस बात का है कि भाई ठीक है कमी होती है लेकिन लें तो कैसे लें। तो इसके लिए आपको बैलेंस बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीते ही रहना है, ठीक है, पानी की जो पूर्ति है वो करना है। इसके अलावा नारियल पानी का सेवन करें, केला खा सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, तरबूज ले सकते हैं, दही और नमक इनका प्रॉपर आपको सेवन करते रहना है। नमक तो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और जो सीजनल फल आते हैं ना उनको भी आप अगर लेते रहेंगे ना, तरबूज, खरबूजा, इस तरह का, इससे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी जो है वो शरीर के अंदर अगर हो भी रही होगी तो ये उसे पूरा कर देंगे। तो यानी ये फल जो है वो कमाल के फल हैं, तो इनको आप हल्का ना समझें, इनमें बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे अंदर पोटेशियम की, मैग्नीशियम की, सोडियम की, इन सब कमी को पूरा करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर, मतलब कहूँ तो क्या कहूँ, बेधड़क चलता रहता है और हम हंसते मुस्कुराते रहते हैं, काम करते रहते हैं चुस्ती फुर्ती के साथ, क्योंकि इनका इसमें बहुत अहम रोल होता है।

0: के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
2: का समय पूरा हो रहा है, 10:04:55 का समय हो चुका।

है यहाँ पर। और अब विजय इस प्रोग्राम को ये वाइंड अप करना चाहेगा, क्योंकि हर प्रोग्राम की एक घंटा लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, उसी के अंदर इसको वाइंड अप कर देना है। लेकिन 5 बजे फिर से एकदम जो है मैं कहूँगा कि डांसिंग ट्रैक फिर से आपके बीच आएंगे सारे, क्योंकि FM टॉप 10 ये समय है 5 बजे का, और जिसमें 70 से 80 के दशक के टॉप 10 डांसिंग ट्रैक जो बहुत फेमस हुए थे, जो सुपर डुपर हिट हैं, वो लेकर मैं आया हूँ आपके साथ। तो अगले एक घंटे भी धमाल ही मचता रहेगा, क्योंकि आज की ये शाम जो है यादगार शाम होनी है, वीकेंड शाम है। समझ लीजिए कि वीकेंड में वैसे भी जो है वो लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी का मूड होता है, तो शाम वैसे भी जो है खुशनुमा और रंगीन हो जाती है। तो आइए आपके साथ मिलकर इस शाम को यादगार बनाते हैं।

नमस्कार, शाम के 5 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। जनगणना के माध्यम से देश की वास्तविक जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति और विभिन्न आवश्यकताओं का सटीक आकलन किया जाता है। निर्वाचन आयोग ने हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ECI नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा उपलब्ध है। आयोग ने कहा कि हाल ही में संपन्न 803 विधानसभा सीटों पर चुनाव से जुड़े सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों से लोगों के संपर्कों को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन विकास, संस्कृति विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता, सुविधा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लखनऊ और रायबरेली स्थित ECHS पॉलीक्लिनिक ने आज से अपने लाभार्थियों के लिए डाक द्वारा दवा वितरण प्रणाली शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों के घर पर ही नियमित दवाएं पहुंचाना है। स्वास्थ्य सेवा वितरण को और बेहतर बनाने के लिए ECHS पॉलीक्लिनिक लखनऊ में एक ऑनलाइन लैब प्रबंधन प्रणाली भी शुरू की गई है। भारत नेपाल सीमा पर सिद्धार्थनगर के ककरहवा चेक पोस्ट पर क्रिटिकल गैप्स योजना के तहत 23 CCTV कैमरे लगवाए गए हैं। इसका शुभारंभ आज सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी शिव शरण अप्पा ने किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कैमरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के प्रमुख मार्गों के अलावा आवागमन वाले बिंदुओं पर लगवाए गए हैं। इन पर निगरानी के लिए 24 घंटे संचालित कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। हमीरपुर के कुरारा में यमुना नदी में नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को दैवीय आपदा राहत कोष के तहत 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस हादसे में कल 5 शव बरामद किए गए थे। ये दुर्घटना 6 मई की रात उस समय हुई जब एक शादी समारोह में शामिल होने आए नाविक सहित 10 लोग नाव पलटने के कारण नदी में गिर गए थे। हादसे के शिकार 4 लोग सुरक्षित बचा लिए गए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो चैनल।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: जी हाँ, 5:05 का समय हो चुका है और FM रेनबो पर एंटरटेनमेंट का सिलसिला लगातार जारी है और इस सिलसिले में एक कड़ी और जोड़ता हूँ मैं आज FM टॉप 10 के गीतों के साथ। और आज जो मैंने 10 गाने चुने हैं वो 1970 से 80 के दशक के बीच में जो फिल्में आई और उनमें जो डांसिंग ट्रैक थे जिनको सुनकर आज भी हम लोग झूम उठते हैं, उन गीतों को चुनकर मैं लाया हूँ। और किस तरह के वो गीत हैं, कुछ इस तरह के गीत हैं जिनकी शुरुआत मैं करने

0: यहाँ 5:10 का समय है और इस समय विजय आपके साथ है। यहाँ पर FM टॉप 10 गीतों की बहार आई हुई है। इस समय समाधि फिल्म का ये गाना भी आपने सुना, कांटा लगा। हालांकि आशा पारेख ने इसमें डांस किया था और उस समय जब ये गाना फिल्माया जाना था तो आशा पारेख काफी नर्वस थी, क्योंकि हेलन जी जो है वो अपने डांस के जरिए, अपने नंबर्स के जरिए दुनिया में अपनी एक अलग जगह बना चुकी थी। और ऐसे में आशा पारेख ये सोचने को मजबूर हो गई थी कि अगर उन्होंने इस तरह का किसी गाने पर डांस किया और उतना परफॉर्म वो नहीं कर पाई तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी एक्टिंग में किरकिरी हो जाए या फिल्म जो है ना कोई दिक्कत हो। काफी सोच विचार के बाद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के कहने पर उन्होंने कहा कि नहीं, चलो भाई ऐसा करते हैं कि अगर इंडस्ट्री में आए हैं और जिंदगी में हर दिन कोई ना कोई चैलेंज होता ही है तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद इसको परफॉर्म करते हैं। और ऐसा उन्होंने परफॉर्म किया कि वाकई में लोग जो है वो प्रसन्न हो गए और गाना जो है सुपर डुपर हिट हो गया। ऐसा ही कुछ किया था हमारे बच्चन साहब ने भी। कब किया था, कैसे किया था, सुनिए।
1: Thank you.

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
3: FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं FM टॉप 10। आज विजय के साथ 5:17 का समय हो चुका है यहाँ पर, और बच्चन साहब के ऊपर फिल्माया गया गाना भी आपने सुना, देखा ना हायरे सोचा ना हायरे, बॉम्बे टू गोवा फिल्म का ये गाना था। और बच्चन साहब की एनर्जी देखकर ही सलीम जावेद की नजर उन पर पड़ी थी कि भाई ये आदमी जो है इसके अंदर तो एनर्जी बहुत है। जिस तरह से डांस, हालांकि डांस के स्टेप जो है वो कुछ ज्यादा बेहतरीन नहीं थे, लेकिन जो एनर्जी थी वो सलीम जावेद के मन में घर कर गई थी, और इसीलिए उन्होंने जो है वो तमाम प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को रिकमेंड किया कि भाई एक नया एक्टर आया है, डांस भी अच्छा करता है, आवाज़ भी ठीक ठाक है और बोलता भी ठीक ठाक है, और अमिताभ बच्चन उसका नाम है, उसको अपनी फिल्मों में लेके दे सकते हो। जब अमिताभ बच्चन साहब ने और इन लोगों ने डांस करना शुरू किया तो जो और एक्टर थे जो काफ़ी नामी गिरामी एक्टर थे उस समय बॉलीवुड में, उन्होंने भी डांस करना शुरू कर दिया। अब उनमें से कपूर खानदान के एक चश्मे चिराग थे जिनका नाम था शशि कपूर साहब, उन्होंने भी डांस करना शुरू कर दिया और इस गाने को फिल्मा दिया डांस करते करते।

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

फसलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कीप लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं FM टॉप 10। आज टॉप विजय के साथ 5:23 का वक्त यहां पर हो गया है। और भाई शशि कपूर साहब का डांस भी मैंने देख लिया, अमिताभ साहब का भी देख लिया, आशा बारिक का भी देख लिया, लेकिन जिस वजह से बॉलीवुड जाना जाता था जिस डांसिंग क्वीन के जरिए, उसका भी गाना सुनना और उसका भी डांस देखना बहुत जरूरी है। तो आइए जिक्र करते हैं अब हेलन जी का। 1975 की सुपरहिट फिल्म शोले का ये शानदार गाना।

जी हाँ, चंपा तारा टीनू मीनू सभी लोग जो है वो 5 से 6 इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं FM टॉप 10, क्योंकि यहां पर आपके मनपसंद गीतों का ये कार्यक्रम है जो लगातार चल रहा है, तो बस ये चलता ही रहेगा। और इसके बाद जो है 1970 और 80 के बीच के जो फिल्में आई उनमें जो डांसिंग ट्रैक थे उनका सिलेक्शन मैंने किया है, वो टॉप 10 गाने मैं लेकर आया हूँ एक घंटे के सफर में आपके बीच। हालांकि इन 10 सालों में बहुत सारे ऐसे डांसिंग नंबर्स आए हैं जिनकी गिनती जो है वो शायद मुझे लगता है कि 2-3 घंटे का प्रोग्राम हो तभी पूरी हो सकती है, लेकिन फिलहाल एक घंटे में जितना निचोड़ के ला सकता था इस गर्मी के दिनों में लेकर आया हूं मैं खास आपके लिए। तो चलिए एक और बहुत ही प्यारा सा गाना जो है वो सुनाता हूं, हालांकि डॉन फिल्म का ये गाना है। इसमें सबसे पहले हेलन जी को मैं सम्मान दूंगा इस गाने के साथ, और उसके बाद बैक टू बैक दूसरा गाना बच्चन साहब पर जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने दूसरे गाने पर इस फिल्म में जो डांस किया है खाई के पान बनारस वाला, अगर उसको नहीं सुनाऊंगा तो प्रोग्राम की नाइंसाफी हो जाएगी और मेरी तो खुद हो ही जाएगी।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक हिरलो पान चबाए आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए।

0: बस खुशबू नहीं स्वाद भी है, शुद्धता का एहसास भी है।
1: एम के बंधानी हींग, हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
2: जी हाँ, ये तो था 1978 की ये वो फिल्म डॉन, जो कि बनना शुरू हुई थी 77 की शुरुआत में, बल्कि 76 में इसका जो है वो इनॉग्रेशन हो गया था, लेकिन बीच में इसके प्रोड्यूसर नारिमन ईरानी साहब का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से फिल्म बीच में रुकी और उसके बाद फिर बनी, तब जाके ये रिलीज हुई थी 1978 में, लेकिन बनना शुरू ही 76 में शुरू हो चुकी थी। अब मैं जिक्र करना चाहूंगा एक ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर का जो उन दिनों अपनी फिल्मों को प्रोड्यूस भी करते थे, डायरेक्ट भी करते थे। उन्होंने राज कपूर को भी अपनी डायरेक्शन में नचाया है, उन्होंने शम्मी कपूर को भी नचाया है, उन्होंने ऋषि कपूर को भी नचाया और उन्होंने अमिताभ बच्चन को भी नचाया, यहां तक कि धर्मेंद्र से भी डांस करवा लिया, जितेंद्र से भी डांस करवा लिया अपनी फिल्म धर्मवीर में। जी हाँ, राज कपूर से डांस करवाया था छलिया में, मैं नाम ले रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, जी हाँ, मनमोहन देसाई, द ग्रेट मनमोहन देसाई।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

हाँ तो साहब, जब तमाम कलाकारों की बात हो ही गई है तो ऋषि कपूर साहब का जिक्र भी कर लिया जाए। उन्होंने तो उस जमाने में बहुत सारी फिल्मों में डांस किया है, तो उनमें से एक है ये फिल्म और ये गीत है बचना ए हसीनों।

तो इसी के साथ 5:55 का वक्त हो रहा है और विजय इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करना चाहेगा, लेकिन शाम अवध में तमाम तरह की खबरों के साथ फिर आपसे जुड़ूंगा। तो बन रही है हमारे साथ, एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया है कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड मोड पर परिवर्तित किया जा रहा है। अब मई की विद्युत खपत का बिल जून में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। इस अवसर पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है, इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसको लेकर कल मेरठ, अमरोहा, हमीरपुर, मऊ समेत सभी जनपदों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम कल जारी कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में 1,575,760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा 14-15 मार्च को 4 पालियों में आयोजित की गई थी। पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 35% और कुल 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में मेरिट और आरक्षण के आधार पर 12,333 अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए सफल घोषित किया गया है। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश के कई जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में जिला अस्पताल स्थित रेड क्रॉस भवन में 8 से 22 मई तक आयोजित होने वाले रक्तदान पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। वहीं अमरोहा में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और जागरूकता अभियान में छात्र छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों ने लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। सुल्तानपुर में निःशुल्क चिकित्सा और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन यानी प्रदेश की टॉप 10 न्यूज के साथ 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो।

नमस्कार, शाम के 6 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत नामांकित व्यक्तियों की कुल संख्या इस वर्ष मार्च तक 2,17,00,000 पहुंच गई है। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित ये योजना सेवानिवृत्ति के बाद नागरिकों को लंबे समय तक के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। अटल पेंशन योजना में भी 89,00,000 नामांकन दर्ज किए गए हैं। मई 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करना है। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है।

0: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी।
1: चलते रहे इश्क में पड़ जाते
2: हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी,
3: आपके अपने रेनबो की जबानी।
1: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
4: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
5: ये
6: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
0: 100.7 FM रेनबो,
3: धड़कन लखनऊ की।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

बिल्कुल सही कहा, इंडिया की ओरिजिनल आवाज है आकाशवाणी, और इसी आकाशवाणी पर आप सुनते हैं अपने मन के गीत, अपने मन के कार्यक्रम, अपनी मन की बातें। और मन की बात जी हाँ, जो आपके दिल से निकल के आपके दिल तक पहुंचती है, उसी का नाम है आकाशवाणी, जो आपका सच्चा दोस्त है, आपका गहरा दोस्त है, उसने आपकी जिंदगी में एक खास अहमियत तो रखी है। फिलहाल शाम वक्त प्रोग्राम की शुरुआत यहां पर हो चुकी है, और इस प्रोग्राम के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई आज का ये प्रोग्राम, आज का ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, इसके लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेल नहीं करेंगे तो मन खट्टा सा रहेगा भाई। और अजय सिंह कुमार साहब का देखिए मेल आ गया है, उन्होंने कहा कि विजय श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, काफी दिनों से आपको मिस कर रहे थे, आखिर आप आ ही गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आज तो दिल को सुकून मिल गया है, प्रोग्राम बहुत अच्छा पेश कर रहे हैं आप। अजय कुमार सिंह सीतापुर से बहुत बहुत धन्यवाद अजय सिंह जी, और आपने मेल किया और इतने दिन से आप इंतजार में थे, मैं भी इंतजार में था, लेकिन कुछ आवश्यक कारण काम थे जिसकी वजह से आपसे रूबरू, आप लोगों से रूबरू नहीं हो सका, लेकिन कोई बात नहीं, ये सिलसिला है, ये ज़िंदगी है, इसमें काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन मोहब्बत भी बहुत ज़रूरी है, और साथ ही हमारे आपके दिल की जो बातें हैं वो भी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरे दिल को चीर कर देखेंगे तो उसमें आपको यही नाम मिलेगा।

90. जी हाँ, आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए हैं फिलहाल। 6:20 का समय हो चुका है। विजय यहाँ पर हाजिर है आपके लिए शाम में अवध लेकर। और आपको बता दूं, प्रदेश में पहली बार चारवार से बसंत कुंज तक बिना ड्राइवर के दौड़ेगी मेट्रो। घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें इतनी सारी व्यवस्था कर दी गई कि ड्राइवर की जरूरत ही नहीं होगी। अब आप सोचेंगे ड्राइवर के बिना दौड़ेगी तो कैसे जाएंगे यार, ब्रेक कैसे लगाएंगे, कहीं ऐसा ना हो मुझे रुकना जो है वो कहीं और है और पहुंच मैं कहीं और जाऊं, है ना, ऐसा नहीं है। चारवा से बसंत कुंज तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर जो ब्लू लाइन की मेट्रो दौड़ेगी उसमें ट्रेन ऑपरेटर नहीं होगा। ये मेट्रो मानव रहित ट्रेन ऑपरेशन तकनीक से दौड़ेगी। प्रदेश में पहली बार इस तकनीक को मेट्रो के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने टेंडर जारी किया है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया के बीच नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर अभी जो मेट्रो दौड़ रही है उसमें ड्राइवर है भाई, परेशान ना होइए, वो ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन प्रणाली से लैस है। लेकिन इसमें ट्रेन का दरवाजा खोलने व बंद करने, इमरजेंसी ब्रेक ट्रेन ऑपरेटर जो लगते हैं। लेकिन अब जो है व्यवस्था थोड़ी चेंज की जा रही है। चारबाग से बसंत कुंज तक

11.15 किलोमीटर के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर मानव रहित ट्रेन ऑपरेशन तकनीक वाली मेट्रो दौड़ाई जाएगी। एआई आधारित सेंसर से लैस इस तकनीक में 4.286 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड और 6.879 किलोमीटर के भूमिगत सेक्शन पर पड़ने वाले कुल 12 स्टेशनों से होते हुए मानव रहित मेट्रो अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ेगी। यानी कि प्रदेश में पहली बार जो है ये व्यवस्था होने जा रही है, जो मेट्रो ट्रेन जो है बिना ड्राइवर के दौड़ाई जाएगी। एक पिक्चर आई थी आपको याद होगा, द बर्निंग ट्रेन, जिसमें ट्रेन में ड्राइवर नहीं होते और ट्रेन भागती चली जाती है, भागती चली जाती है, भागती चली जाती है। अब उसमें ले दे के आग भी लग जाती है, ओफो पूछो नहीं भाई, सोने सुहागा हो जाता है। लेकिन पिक्चर बहुत जानदार बनाई थी बीआर चोपड़ा साहब ने। और अंत में जो है वो ट्रेन रुकती है इंक्लाइन पे जाकर, जब चढ़ाई पे उसको जो है चढ़ाया जाता है और इंजन को बोगी से अलग किया जाता है, तब वो ट्रेन रुकती है। लेकिन वो ट्रेन भी बिना ड्राइवर के चली थी, लेकिन जो ये ट्रेन बिना ड्राइवर के चलेगी इसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये पूरी तरह से संचालित होगी, कंट्रोल रूम के हाथ में होगी, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एआई जब से आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है, तब से बहुत सारी टेक्निक जो है वो चेंज हो गई है। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यात्रा करने का, जाम बिल्कुल नहीं लगाने का, घर से गाड़ी नहीं निकालने का, मेट्रो की सवारी करने का। समझा कि नहीं?

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: साथ FM Rainbow चैनल पर आप सुन रहे शाम में अवध आज विजय के साथ और विजय के साथ अब इस समय मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि भाई इधर दो तीन चार दिन तो मौसम बहुत खुशनुमा कर दिया था, आगे क्या होने वाला है। दानिश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर इस प्रोग्राम शाम में अवध में।
5: जी
4: कैसे हैं सर आप?
5: अच्छा
4: सर, मौसम तो बहुत अच्छा कर दिया था और तपती गर्मी में इतनी राहत तो वाकई में जो है गिफ्ट हो गया था हम लोगों के लिए, है ना। तो अब आगे क्या रहने वाला है मौसम का मिजाज?
5: जी मौसम की बात करें तो मौसम तो अभी सब साफ है लखनऊ में, हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ कल छिटपुट वर्षा हो सकती है, बहुत हल्का था
4: जी।
5: बाकी अपने यहाँ साफ है, दिन में धूप रहेगी लेकिन मौसम अनुकूल रहेगा, जैसा कि बहुत कोई एक्सट्रीम टाइप का नहीं रहेगा। हालांकि जो पिछले कार दिनों से काफी अच्छा सुहाना था, थोड़ा सा दिन में गर्मी का एहसास होगा लेकिन वो बेरेबल रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होगा। कोई लू वगैरह का कोई ऐसा अलर्ट नहीं आने वाले अगले 5-6 दिनों के लिए। तो मौसम धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगा लेकिन ये एक तरीके से सामान के आसपास सामान से कम ही रहेगा। तो कुल मिला के कहें तो मौसम जो खुशनुमा बना हुआ है वो अभी आने वाले दिनों में थोड़ा सा खुशनुमा टाइप का ही बना रहेगा।
4: मतलब बारिश और तूफान का डर तो नहीं है कोई?
5: नहीं नहीं अभी नहीं, बिल्कुल
4: अभी नहीं
5: है, 3-4 दिन नहीं है। उसके बाद एक और पश्चिमेश्वर बन रहा है जो 12 तारीख से फिर थोड़ा माहौल चेंज होने की संभावना।
4: अच्छा ये पेपरों में आर्टिकल वगैरह आ रहा है, न्यूज में भी आ रहा है कि अलनीनो का दबाव जो है कुछ इस बार ज्यादा रहेगा, क्या ऐसा है सर?
5: जी बिल्कुल, जैसा कि हमारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, जैसा मानसून में ये कहा जाता है, अमूमन ये देखा भी जाता है कि जब अलनीनो का प्रभाव होता है तो उस वक्त हमारे प्रदेश में या देश में बारिश की स्थिति में कमी देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस साल थोड़ा अलनीनो डेवलप होने का संभावना है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इस बार का जो पूर्वानुमान है लॉन्ग रेंज जो जून जुलाई अगस्त सितंबर का है, तो कहीं ना कहीं सामान से कम बारिश होने की संभावना है।
4: ओके, सामान से कम बारिश होने की संभावना है
5: मानसून की वजह,
4: यानी अपने घरों में पानी बचा के रखें और उसको बारिश ना होने पर इस्तेमाल करें, हैं? ठीक है सर, दानिश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी खास जानकारी देने के लिए सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।
5: ओके धन्यवाद।
4: दानिश जी थे जिन्होंने बताया कि भाई देखिए कि 2-3-4 दिनों तक अभी मौसम तो वैसे ठीक ठाक रहने वाला है और उसके बाद जो है थोड़ा सा मौसम और खुशनुमा होगा, बारिश का अनुमान है, लेकिन चूंकि अलनीनो का दबाव रहेगा तो इस बार मानसूनी बारिश जो है वो थोड़ा कम रहेगी। तो अब आपको जो है थोड़ा संभल के रहना होगा, ये मान के चलिए कि इस दबाव के चलते मानसूनी बारिश थोड़ा कम रहेगी। फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, 6:31 का समय, एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं और उसके बाद फिर लौट कर आते हैं यहीं FM रेनबो के स्टूडियो।

0: 107.7 FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं शाम अवध आज विजय के साथ। और शाम अवध में मौसम की बात तो हो गई है, लेकिन अब ट्रैफिक का क्या हाल है और क्या हाल रहने वाला है, कहां डाइवर्जन होने वाला है, ये सब जानते हैं हम विकास जी से। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे इस प्रोग्राम शाम अवध में। सर
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, सामे अवध के सभी श्रोताओं को नमस्कार। सर आज अगर ट्रैफिक की बात करें तो वर्तमान में सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है सर, क्योंकि पीक आवर्स का समय है। ऐसे में सर लखनऊ शहर के जो प्रमुख सड़कें हैं, जैसे हमारा लखनऊ अयोध्या मार्ग, लखनऊ रायबरेली मार्ग, लखनऊ कानपुर मार्ग, सीतापुर मार्ग, ये सर थोड़ा सा ट्रैफिक में यहाँ पर ज्यादा रहता है। और शाम के समय में सर जो सबसे ज्यादा खरीदारी करने के लिए लोग आते हैं, तो हमारा जो सीओ मॉल है और लुलु मॉल है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है। और जो अन्य हजरतगंज का और अशोक लाट की तरफ का ये मार्केट वाला

0: एरिया रहता है,
1: जी
0: ये
1: जी
0: थोड़ा सा हमारा ट्रैफिक का एरिया रहता है, परंतु उतना दबाव नहीं है, सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है।
1: हाँ
0: बस आपको अवगत कराना चाहेंगे कि जो हमारा शहीद पथ वाला रूट है, शहीद पथ वाले रूट पर थोड़ा सा ट्रैफिक प्रेशर है। अगर आप इधर से अवॉइड करें उतरेठिया तेलीबाग वाला आप यूज कर सकते हैं,
1: जी
0: वहीं दूसरी तरफ आप कमता की तरफ से अगर आ रहे हैं तो आप विजयपुर अंडरपास की तरफ थोड़ा सा हमारा प्रेशर है, तो वहां पर थोड़ा सा वैकल्पिक मार्ग का आप प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी
0: बाकी सर एक हमारा समता मूलक पे बैराज, पुल बैराज का जो है गेट का जो है वो मरम्मत का कार्य चल रहा है। इस
1: हाँ
0: दौरान जो पहले हमारा गोमती बैराज पर हम ट्रैफिक भेजते थे,
1: जी
0: वो गोमती समता मूलक से गोमती बैराज ना होकर के अब हम 1090 होते हुए पीएनटी बालू अड्डा होकर भेज रहे हैं। तो श्रोताओं से अनुरोध है कि यदि आप समता मूलक से भैकुंठ धाम वाला रास्ता इख्तियार करना चाहते थे अपने गंतव्य तक जाने के लिए,
1: जी
0: तो अब आप जो है 1090 जाएंगे और पीएनटी बालू अड्डा अथवा वहीं पर सेंट्रल एकेडमी तिराहा, ग्रीन कॉरिडोर तिराहा है हमारा, ग्रीन कॉरिडोर का यूज करते हुए आप अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। जी सर,
1: ओके तो कल वैसे सैटरडे संडे का है और छुट्टी का दिन भी है, तो अमूमन वीआईपी मूवमेंट्स भी होते हैं और लोग भी जो है वो अपनी फैमिली के साथ निकलते हैं, तो कोई खास डाइवर्जन तो नहीं है शहर के अंदर?
0: कल तो सर कोई विशेष डायवर्जन नहीं है, और कल का चूंकि सैटरडे और संडे में छुट्टी के दिनों में सर थोड़ा सा ट्रैफिक का हमारा जो ऑफिशियल वर्क वाला मूवमेंट रहता है वो
1: हाँ
0: कम होने से सर रोड पर हमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलती है,
1: जी
0: इसलिए कोई जो है वो नहीं है, बाधा नहीं रहेगी, आप एकदम सुगमता से अपने गंतव्य तक जा सकते हैं।
1: चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये खास जानकारी देने के लिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: जी आभार आपका, धन्यवाद।
1: तो भाई ट्रैफिक की व्यवस्था भी बिल्कुल सुदृढ़ हो गई है, एकदम स्मूथ ट्रैफिक मिलेगा आपको, तो आप जो है अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं कहीं भी, तो आप आसानी से जा सकते हैं, कोई खास डाइवर्जन नहीं है। और हाँ, जब भी कहीं जाइए तो FM रेनबो अपने साथ लेके जाइएगा, वरना मुकाबला हो जाएगा। हाँ

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: माय पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: जी हाँ, आप सुन रहे हैं FM रेनबो चैनल 100.7 मेगाहर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी पर। प्रोग्राम चल रहा है शाम में अवध, और विजय आज आपके साथ है।

6:48 मिनट का समय हो चुका है यहाँ पर और मेल्स मेरे पास कुछ आए हैं, आइए मैं उनसे मुखातिब होता हूँ भाई कि हाँ, राहुल सिंह साहब का मेल आया है और राहुल सिंह कहते हैं शामे अवध बहुत ही बेहतरीन अंदाज में विजय जी ने पेश किया है, क्या बात है ना, और इसके अलावा कहते हैं जबरदस्त शुरुआत है, क्या बात है विजय जी, आप देर से आए लेकिन दुरुस्त आ गए और कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, यही नहीं आकाशवाणी रेनबो लखनऊ के सभी प्रोग्राम की तारीफ करते दिल नहीं भरता है। राहुल सिंह जेल कैंपस बिजनौर से इन्होंने मेल किया है। आरती मिश्रा जी का गुड इवनिंग विजय सर, प्रोग्राम विद एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन लाइक वाओ, सो थैंक यू, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच आरती जी। और पिंकू सोनी जी, सर जी आपको सादर प्रणाम जी, नमस्कार। पिंकू सोनी परिजात धाम टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रहा हूँ, गुड परफॉर्मेंस मस्ट प्रोग्राम, थैंक्स फॉर ऑल एफएम टीम, थैंक यू वेरी मच, आप सब ने मेल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और मेल के साथ साथ गीत संगीत का सिलसिला भी लगातार जारी है। हाँ, वैसे कुछ बताने वाला था मैं, नया बिजली का कनेक्शन अब पोस्ट पेड ही रहेगा और जून से बिल भी मिलेगा, हालांकि समाचारों में और इस तरह की खबरें बहुत आ रही हैं, जब सब लोग बता ही रहे तो मैं भी बता ही देता हूँ इसको। अब नया बिजली कनेक्शन स्मार्ट मीटर के पोस्ट पेड मॉड पर ही मिला करेगा। प्रदेश भर में अब तक 43 लाख से अधिक प्रीपेड मॉड में किए जा चुके स्मार्ट मीटर को फिर से पोस्ट पेड मॉड पर चेंज कर दिया गया और उपभोक्ताओं को पहले की तरह जून से बिल के संबंध में पावर कॉरपोरेशन के एमडी ने ये व्यवस्था कर दी है, निर्देशित किया है। मई में उपभोग की गई बिजली का बिल उपभोक्ताओं को 10 जून तक SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 15 दिन में बिल जमा करने की सुविधा मिलेगी, 15 दिन में बिल ना जमा होने पर अगले 7 दिन में कनेक्शन काट दिया जाएगा, ठीक है। 30 अप्रैल तक के बकाए बिल का घरेलू उपभोक्ता 10 किश्तों में जबकि अन्य श्रेणियों में उपभोक्ता 3 किश्तों में विलंब अधिभार सहित जमा कर सकेंगे। वैसे अब तो जो है बिजली की बिल की पर्ची आती तो उसमें लिखा ही होता है कि कनेक्शन बिल की डेट ये है और डिसकनेक्शन डेट ये है, मतलब अब तो सभी बिल में लिखा होता है कि अगर इतने समय तक नहीं जमा करोगे तो डिसकनेक्शन हो जाएगा, बिल कट जाएगा। लेकिन हालांकि काटते नहीं है, हमारे बिजली विभाग वाले बड़े रहम दिल वाले हैं, बड़े दिल वाले हैं साहब, काटते नहीं, कहते अच्छा जलाओ यार पंखे में, चलो कोई बात नहीं, बिल नहीं जमा किया क्या हुआ, कूलर पंखा एसी चला लो यार, देखा जाएगा, ये बड़े दिल की बात है। चलिए तो इसी बात पर धूम मचा लेते हैं।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: हाँ तो भैया 6:56 हो गए हैं और ये जो शामे अवध है ये इसको वाइंड अप करते हैं आए, क्योंकि वो अगला प्रोग्राम है ना हेलो एफएम भाई, उसको भी तो लेके आना है। तो इस गाने के साथ नमस्कार करते हैं और फिर मिलते हैं न्यूज़ ब्रेक के बाद। आए कहीं जाइएगा नहीं।

नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को पूरा किया। उन्होंने लोगों से जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या भौतिक रूप से भरकर जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरी करने की अपील। प्रदेश सरकार ने अवध क्षेत्र समेत 10 जिलों की ग्रामीण महिलाओं को दुग्ध व्यापार के लिए तकनीक से जोड़ा है। 1.25 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं मोबाइल ऐप के जरिए प्रतिदिन 4 लाख लीटर से ज्यादा कारोबार कर सकेंगी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साल 2024 के आंकड़ों ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को दर्शाया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय

क्राइम रेट के सापेक्ष यूपी का क्राइम रेट 180.2 रहा है। कुल अपराधों में प्रदेश का देश में 18वां स्थान रहा। प्रदेश में सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने को लेकर औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया है कि मई का बिल जून में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस पर मुजफ्फरनगर, अमरोहा, सुल्तानपुर और जौनपुर समेत कई जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। रक्तदान और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। जनपद न्यायालय, कलेक्टर परिसर और समस्त तहसीलों में किया जाएगा। शिविर लगाकर पारिवारिक वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जा सकेगा। रेडियो प्रसारण के शानदार 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बिजनौर में आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। एडीपी शोभित शर्मा ने कहा कि देश की गतिविधि और महत्वपूर्ण जानकारियों को जनता तक पहुंचाने में आकाशवाणी आज भी सबसे सशक्त माध्यम है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कल और 10 मई 2026 को किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित होगी। हमीरपुर के कुरारा में यमुना नदी में नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को दैवीय आपदा राहत कोष के तहत 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बीते 6 मई को हुए नाव हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज और चमक और तेज हवा के साथ वज्रपात का अनुमान जताया है। आगामी 2 दिनों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 10 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी यूपी में हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हो जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन 7:20 पर सुना जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो, जिस पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। हेलो FM।

0: सात बज के 5 मिनट का वक्त है विजय, आज हाजिर है आपके साथ और साथ ही हेलो एफएम शुरू हो चुका है। अच्छा, हेलो एफएम की गाड़ी जो है इतनी तेज रफ्तार से दौड़ती है कि उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने पकड़ लिया है एक कॉलर अपना पहला। हेलो हेलो,
1: नमस्ते सर जी।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप
1: जी?
0: आप एफएम के पहले कॉलर बन गए हैं। हेलो हेलो जी, हाँ जी बताइए, बोलिए, आप एफएम के पहले कॉलर बन गए हैं हेलो एफएम के।
1: जी जी बिल्कुल सर जी, मेरी अचानक कॉल उठी है सर जी, तो समझ में नहीं आ रहा।
0: नहीं कुछ समझ ही नहीं, सिर्फ तालियां बजाइए, आप एफएम के पहले कॉलर बन गए हैं। हाँ तो बताइए, क्या शुभ नाम है आपका?
1: जी हम बोल रहे हैं तालिब अंसारी, राजा कटरा, बाराबंकी से बोल रहा हूँ सर जी।
0: बाराबंकी से बोल रहे हैं, मौसम कैसा है? अच्छा ही होगा मुझे लगता है, है अच्छा नहीं है
1: तो अच्छा ना हो ही नहीं सकता।
0: हाँ गाना कौन सा सुनेंगे सर जी?
1: गाना सर जी बढ़िया नया गीत लगा दीजिए।
0: कोई बढ़िया सा क्या लगा दें, छाया गीत?
1: जी कोई बढ़िया सा गीत लगा दीजिए सर।
0: अच्छा चलिए, तो बहुत बढ़िया सा गीत आपको जो है सुनवा देता हूँ मैं, है ना। और इसके अलावा बताइए क्या करते हैं आप?
1: हमारी तो फर्टिलाइजर की शॉप है सर जी, आपसे बात हो चुकी है सर जी, मेरी अचानक कॉल उठ गई तो सर जी समझ में नहीं आ रहा।
0: अरे नहीं नहीं कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस कॉल उठी है तो बातचीत करिए और क्या, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा, मुझे भी लगा कि मैंने कहा कि जैसे ही समाचार खत्म हुए अपने पहले कॉलर को ले ही लेता हूँ सीधे, है ना, वरना टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। क्यों?
1: बिल्कुल हाँ, ज्यादा से ज्यादा कॉल होते हैं तो अच्छा लगता है।
0: हाँ अच्छा, अभी अभी 10 मिनट जो है समाचार में जाते ही जाते हैं, है ना, तो इसीलिए हमने कहा कि भाई तुरंत ही

0: जो है अपने कॉलर को जो है लिया जाए और आपकी फरमाइश का बहुत बढ़िया गाना जो है मैं आपको सुनवाता हूँ। ऐसे ही फोन करते रहिएगा, किसी का नाम लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
1: जी आसिफ भाई हैं हैदराबाद से और साबिर भाई हैं कानपुर से। सर जी
0: ठीक है, दोनों अलग अलग यार, बहुत लंबा है दूरी है तो
1: जी,
0: सुन रहे हैं
1: भाई हैं।
0: अच्छा भाई
1: हैं, हमारे भाई हैं।
0: हाँ सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं
1: जी।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ
1: नमस्ते सर जी।
0: हाँ नमस्ते भाई जी, नमस्ते नमस्ते। तो चलिए हमारे एफएम के पहले कॉलर हमको मिल गए हैं और इसी बात पर एक बहुत प्यारा सा गाना भी हमें मिल गया है।

0: लता मंगेशकर, उदित नारायण की बहुत ही प्यारी सी आवाजें, वीर ज़ारा फिल्म का गाना ऐसा देश है मेरा, भी आपने सुना। हालांकि जो है वो टेलीफोन जो है वो ऐसा दो लाइनें एक साथ कनेक्ट हो जाती हैं कि कभी कभी ये पता ही नहीं चलता है कि जिससे बात की थी वही इस समय ऑनलाइन है या कोई और आ गया है। पता चला गाना किसी ने फरमाइश की, बात किसी और से हो गई है। फिलहाल यहाँ पर लाइन टू, यस हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहा है?
1: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग जी, कौन बोल रहे हैं?
1: गुलफ्ता सिद्दीकी।
0: गुलफ्ता सिद्दीकी जी, कैसी हैं आप?
1: जी, हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: बस बहुत अच्छा हूँ। आपकी फरमाइश का गाना है दैया दैया दैया रे।
1: जी जी सर।
0: किसको सुनवाना चाहती हैं?
1: सबसे पहले आपको
0: जी, और
1: समा परवीन है, साहिबा अंसारी, सादिया अंसारी, महक अंसारी, निशा अंसारी, ममता है हरदोई से।
0: अच्छा, इन सब लोगों को
1: सुन रहे हैं, सबको,
0: जितने लोग सुन रहे हैं उन सबको सुनवाना चाहती हैं।
1: जी सर।
0: किसके ऊपर फिल्माया गया मालूम है? गाना देखा है आपने?
1: ऐश्वर्या राय पर।
0: ऐश्वर्या राय पे है, और फिल्म कौन सी है?
1: नहीं, फिल्म नहीं मालूम।
0: हालांकि ऐश्वर्या राय की बहुत अच्छी फिल्मों में जो है ये शुमार होती है।
1: जी जी सर, गाना तो देखा है।
0: हाँ, अर्जुन रामपाल भी उनके साथ है, और फिल्म का नाम है दिल का रिश्ता, है ना? चलिए मैं आपको सुनवाता हूँ गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए, धन्यवाद भाई। गुलस्ता सिद्दीकी से तो बात हो गई, अब बात करते हैं अपने दूसरे कॉलर। हेलो
2: हेलो,
0: अजी नमस्कार जी।
2: नमस्कार सर जी।
0: कौन बोल रहे हैं जी? अच्छा, वहाँ से बोल रहे हैं?
2: बताइए।
0: सब ठीक है भाई जी, आप बताइए।
2: आपकी हमारी बात उस दिन हुई थी, तब से वही नहीं भाई।
0: हाँ, उस दिन

0: हुई थी
1: गाना
0: उसके।
1: भी नहीं सुनाया था सर जी आपने।
0: अरे गाना नहीं सुना था आपने?
1: आप मेरा गाना नहीं सुनवाया था जो बताए थे जी, यही सुनवाया नहीं था मेरे तरफ।
0: अरे दोस्त यार, कभी कभी प्रोग्राम में समय ऐसा कम पड़ जाता है ना, कि अब तो दोनों लाइनें चलती हैं, तो एक का गाना उधर मिक्स हो जाता है, एक का इधर मिक्स हो जाता है। अरे यार आज सुनवा दो, आज बताओ, आज आज
1: वो लाइन से है। अरमान बोलो। हेलो
0: हाँ अजी, कौन बोल रहे हैं?
2: जी हम अरमान बोल रहे
0: हैं। अम्मा इतने धीमे बोलोगे तो प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा।
2: जी आवाज नहीं आ रही।
0: आ रही, आवाज तो आ रही है।
2: जी
0: अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, सब बढ़िया
0: है। बकरीद की क्या तैयारियां चल रही हैं?
2: बकरीद की तैयारियां सब हो रही हैं, बढ़िया
0: धीरे धीरे हो रही हैं। चलिए रहमान जी, बहुत अच्छा लगा, आप दोनों दोस्त हैं। अरे वाह, बहुत गहरी दोस्ती है, ऐसे ही बना के रखिएगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।
1: हेलो सर जी।
0: हाँ जी,
1: जब आप लोग और सर्वेश दोनों लोग आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, तुम्हारे लोगों जब फोन लग जाता है मेरा।
0: क्या बात है, चलिए बहुत अच्छा है, और आपका फोन लग गया है, लेकिन ज्यादा समय नहीं लूंगा, 7:13 का वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, थैंक यू थैंक यू। तो चलिए भाई, गीत और संगीत का सिलसिला भी जारी है यहाँ पर, सबसे पहले इस गाने को सुनते हैं।

0: जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: बस खुशबू नहीं, स्वाद भी है, शुद्धता का एहसास भी है।
3: MK बंधानी हींग, हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।

0: आकाशवाणी एट 90
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र एआई कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफल

0: पूर्वक पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने भी आज अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या भौतिक रूप से भरकर जल्द से जल्द जनगणना प्रक्रिया पूरी करने की अपील की।
1: देखिए, जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हों पूरे हो सके। आज जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
0: इसी क्रम में डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी आज स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में आज जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से जनगणना 2027 स्वगणना पर सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कल और 10 मई को किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगी, जिसमें कुल 464,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने आज 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्री पेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्ट पेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि RDSS योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्ट पेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहां एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र।
0: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2024 के आंकड़ों ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को दर्शाया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय क्राइम रेट 252.3 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 180.2 रहा। कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश का देश में 18वां स्थान है। एक रिपोर्ट।
3: NCRB रिपोर्ट में हत्या के मामले में देश में यूपी का स्थान 29वां है, जबकि हत्या के प्रयास के मामलों में ये 26वें स्थान पर है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में राज्य पूरे देश में सबसे नीचे 36वें नंबर पर है। दुष्कर्म के मामले में यूपी देश में 24वें स्थान पर है, जो राज्य में बेहतर हुई कानून व्यवस्था को बताता है। जेलों में क्षमता और अनुशासन के मामले में भी यूपी का प्रशासन अन्य राज्यों से बेहतर है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि ये सुधार सतत और सुविचारित प्रयासों का प्रतिफल है। पिछले 9 वर्षों में आधुनिक पुलिस स्टेशन, सतर्क एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने पर समर्पित महिला हेल्प डेस्क, कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। बुलंदशहर में आज नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार ट्रक ने

0: बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 2 दिनों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 10 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
1: 9 मई को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ छिटपुट वर्षा होने की संभावना है, छिटाकसी हो सकता है, बाकी उसके बाद मौसम साफ है। फिर से जैसा कि नया पश्चिमी विक्षोभ 10 से 11 तारीख से एक्टिवेट हो रहा है, जिसके वजह से 12 तारीख से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल पार्ट में फिर से धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ेगी, हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
0: आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
2: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
3: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
2: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
4: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
5: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
2: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र AI कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: 107.7 एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं हेलो एफएम, आज विजय के साथ। मेरे साथ फोन लाइन पे कौन है, देखते हैं। हाई, हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, सबसे पहले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा सलाम।
0: हाँ,
1: मेरा नाम है।
0: हाँ हाँ, आपका नाम है, बताइए।
1: जी, मेरा नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा, फुलवारी बाजार, जिला 12 दिल्ली से बोले सर।
0: जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? गाने की फरमाइश तो

0: आपने बता दिए, किसको किसको सुनवाना चाहते हैं ये बताइए।
1: गाना सर जी आपको हमने बता दिया, और किससे किससे सुनवाना चाहता है ये भी हम बताने जा रहे हैं।
0: हाँ बताने जा रहे हैं, बा मुलाजा बा होशियार बताइए।
1: सबसे पहले मेरे क्यूट से प्यारे वाले आरजी विजय सर को, और इसके बाद मोहम्मद जावेद अख्तर भाई है, मोहम्मद आसिफ भाई हैदराबाद तेलंगाना में से जो इस वक्त काम कर रहे हैं और आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, और इसके बाद में रिंकी पिंकी है, समा परवीन आता है, गुलत साहब है, साहिब अंसारी है, सादी अंसारी, यासिर हमीद भाई है, और तालिब अंसारी भाई मेरे बहुत ही प्यारे वाले, तालिब अंसारी भाई एक मेरे बहुत ही प्यारे हैं, बाबू अंसारी भाई, और बस एक है मेरी सुरभी सिंह, बस इनको गाना डेडिकेट है।
0: चलिए तो इनको गाना डेडिकेट हुआ, सुनवाया जाता है। चलिए थुक शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ हेलो,
2: गुड इवनिंग
0: माय डियर रिस्पेक्टेड विजय सर जी। थैंक यू, कैसी हैं आप और क्या नाम है आपका बताइए।
2: सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मेरा नाम बबीता राव है सर।
0: बबीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम हेलो एफएम में, और ये बताइए कि किसको किसको सुनवाना चाहती हैं गाना, और दूसरा आप करती क्या है?
2: सर मैं पढ़ाई करती हूँ।
0: अच्छा किस क्लास में?
2: सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है।
0: ओके पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर चुकी हैं।
2: सर मैं गांव का नाम ले लूं?
0: हाँ हाँ लीजिए, बिल्कुल लीजिए बिंदास।
2: नवाबों के शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: अरे वाह बहुत।
2: सर आपको मैं 4 बजे से सुन रही हूँ, सभी प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छे लगे।
0: थैंक यू।
2: आपकी वॉइस इतनी अच्छी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, आपकी वॉइस नहीं ब्रांड है, ब्रांड सर नाम नहीं ब्रांड है।
0: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जो है तारीफ करते हैं और हौसला अफजाई करते हैं।
2: आप लोग वाकई सर बहुत सभी आते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, काबिल तारीफ होता है इतना अच्छा प्रोग्राम। मैं तो यही सोचती हूँ जो सुमोना मैम है सर्च करके लाई है इतने अच्छे अच्छे आते कि मतलब रेडियो से हटने का तो मन ही नहीं करता।
0: सही बात है मैम ने जो है वो बहुत मेहनत की हम लोगों के लिए। हाँ। चिराग लेके ढूंढा है हम लोगों को, चिराग लेके उन्होंने है ना। और अभी हमारे बाद एक और चश्मो चिराग अनवारुल हसन साहब होंगे जो आपकी रात को रोशन करेंगे, इंटरटेनमेंट करेंगे, है ना। तो मतलब एक के बाद एक इंटरटेनमेंट का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तो आप लोग बस खाना पीना खा लीजिए और उसके बाद रेडियो के पास ही बैठे रहिए, ठीक है? थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। हाँ लीजिए लीजिए, जल्दी से लीजिए। हाँ।
2: रोशनी रावत जी हैं
0: जी,
2: शर्मा जी हैं।
0: हाँ।
2: और एमन नवाब जी हैं।
0: हाँ।
2: खंडीला से
0: जी,
2: और जितने भी सुन रहे हैं सभी दोस्तों को ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा।
0: ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू तो भाई हेलो एफएम सुन रहे हैं, 7:34 का वक्त है, एक और बहुत ही प्यार सा गाना सभी लोगों को डेडिकेट करता हुआ ये रहा आपके बीच।

शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित के ऊपर फिल्माई गई ये फिल्म जिसका नाम था कोयला। राकेश रोशन साहब ने ये फिल्म बनाई थी। और मेरे साथ फोन लाइन पे कौन मौजूद है? हेलो हेलो हेलो जी हेलो, हाँ बताइए, आवाज आ रही है? एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो हेलो, आवाज कुछ धीमी सी आ रही है। हेलो हेलो, मुझे लग रहा है कि कुछ कहीं कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है और रेडियो पर नहीं सुनाई दे रही है। चलिए खैर, देखता हूं मैं। 7:41 का समय हो गया है और विजय आज आपके साथ है। एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनवाता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं।

रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हेलो एफएम। कहीं कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे लग रहा है कि फोन लाइन की आवाज जो है वो रेडियो तक नहीं पहुंच रही है। फिलहाल 15 मिनट का समय है तो मेल को टच करता हूं मैं। फिलहाल अनिल पांडे जी और रामराज अशोक कुमार भैया मोनू सेठ बाबू अंसारी जी का मेल भी आ गया है और इन सभी के मेल जो है वो सामने मेरे हैं। दीपाली शर्मा जी का भी जो है इंदिरा नगर से मेल आया है, गाने की फरमाइश उन्होंने की है, तेरी याद आ रही है। अनिल पांडे साहब ये इसके एवज में तहजीब अपनाए कह रहे हैं। और रामराज गणेशाय जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानू पप्पू पासी मनीष पासी नीरज मिर्जा रिजवान भाई इमरान बेग। और इसके अलावा अशोक कुमार जी का भी मेल आया है और साथ ही इसके अलावा बहुत सारे मेल जो है आए हैं। खैर फिलहाल और मैं गाने की फरमाइश जो है पूरी करता हूँ। 7:46 का समय है, आइए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में।

सुनो दोस्तों, साथ एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं हेलो एफएम। और इसमें मेल मेरे पास आया है अहमद नवाब जी का, इन्होंने कहा है शाम अवध से आपको सुन रहे हैं। और अनिल पांडे साहब का मेल आया है, इसके अलावा रामराज जी का भी मेल आया है रायबरेली से, अशोक कुमार जी का भी मेल आया हुआ मेरे पास यहाँ पर। भैया मोनू सेठ साहब शुभ

संध्या लिखते हैं जी। नमस्कार बाबू अंसारी जी, आपका भी मेल जो है मुझे मिल गया है, और इसके अलावा राधेश श्याम जी का भी मेल मेरे पास आ गया है। और यहाँ पर 7:52 का वक्त है और मैं मतलब और फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया, बड़ा मन महसूस कि मैं कह रहा हूँ। फिलहाल चलिए इस गाने को सुनते हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द फ़ोन लाइन जो है वो कनेक्ट होंगी अच्छे से। ठीक है, चलिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनवाता हूँ।

शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपने सुना। फिलहाल अब इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करता हूं। एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रहेगा अनवारुल हसन के साथ। फिलहाल एक गाने के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं, फिर आपसे मुलाकात होगी। गुड शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिए।

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति भी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा, मार्च से अब तक 6 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं। प्रदेश में गुरुवार से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद सौगणना की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री बिजेश पाठक ने भी अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या भौतिक रूप से भरकर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कल और 10 मई को किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें कुल 4,64,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने आज 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया, परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे

सूचना पर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में आज जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से जनगणना 2027 स्वगणना पर सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रेन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। ये देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: दोपहर की रुसवाई तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। एक जादुई एहसास है जब सूरज धीरे धीरे डूब जाता है और आसमान रंगों की बहार से भर जाता है। बहुत सारे रंग बिखरते हैं आसमान में, कभी लाल, कभी नारंगी, कभी गुलाबी, जैसे कोई शायर हो जो अपनी महबूबा के लिए कुछ रंग बिरंगे अफसाने लिख रहा हो कहीं, या कुछ यादें भी, क्योंकि जिंदगी के जो अलग अलग रंग हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। वैसे ही जैसे गजलों के अल्फाज अगर बहुत ध्यान से सुने जाएं। 8:06 हो चुके हैं। खूबसूरत लफ्जों की रवानी के सफर में, आबशार के सफर में मैं हूं आपका हम सफर अनवारुल हसन। कबूल कीजिए हमारा आदाब।

तुम्हारी दीद की खातिर मेरी आंखें तरसती हैं कि जब बारिश बरसती है तुम्हारी बात कानों में अजब रस घोल देती है कि बारिश के हंसी कतरे मेरे रुखसार पर आए तुम्हें वो फूल लगते थे कहां तूने उन्हें मैं चूम लेता था। मेरी शर्मो हया उस दम बड़ी बेबाक होती थी कमर में हाथ डाले हम बहुत ही देर तक भीगे कहा मैंने तुम्हारी शरबती आंखें मुझे मदहोश करती हैं तुम्हारे लम्स का बादल मुझे पुरजोश करता है तुम्हारे प्यार की बारिश वही जल थल सी करती है मुझे पागल सा करती है। और फिर उन सारी बातों को कहीं दिल के अंधेरे कोने में महफूज कर लिया क्योंकि हर बात सबसे कही नहीं जाती छुपा ली जाती है वरना पहुंच जाती है दूर दूर बहुत दूर न जाने किस किस के पास।

कुछ बातें होती भी ऐसी हैं जो दूर तलक चली जाना चाहिए। ऐसी ही एक बात आप तक पहुंचा रहे हैं, दूर तक भेजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। हर संडे आप सुनते हैं खास प्रोग्राम एफएम रेनबो पर। जी हाँ, आप समझ गए, हेल्थ एंड फिटनेस की बात हम कर रहे हैं। प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस आप 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच सुनते हो। और इस बार हमारा जो टॉपिक है वो आपको बता दें, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके मन में है, किसी तरह की कोई परेशानी है आपको इन जो विषय है से जुड़ी हुई, तो आप इस प्रोग्राम को जरूर सुनिए। आप सीधे सवाल भी कर सकते हैं, सीधे जुड़ भी सकते हैं, आप मेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं, टेलीफोन के जरिए भी जुड़ सकते हैं और डॉक्टर साहब से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान हमारे साथ होंगे, MBBS MD मेडिसिन विभाग। तो वक्त याद रखिएगा, 12 बजे से 1 बजे के बीच इस संडे प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है आबशार। 8:18 हो चुके हैं। मैं आपके साथ आपका दोस्त अनवारुल हसन, 100.7 FM रेनबो पर।

मोहब्बत भीख में हरगिज नहीं मिलती, मोहब्बत दान भी कोई नहीं करता। कि ये खैरात होती है, मोहब्बत तो मोहब्बत है, ये खुशबू की तरह का कोई साथ होता है, कोई एहसास होता है। किसी के हाथ में जैसे किसी का हाथ होता है। मोहब्बत तो फकत सांसों में बसती है, कहीं दिल के निहां खानों में पलती है। मोहब्बत का जो रास्ता है बहुत दुश्वार होता है, बहुत पुरखार होता है। मोहब्बत प्यास है शायद, कभी भी जो नहीं बुझती। मोहब्बत भीख में हरगिज नहीं मिलती।

आकाश वाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तानें, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहां हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब अली।
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
0: वो लड़ती है, झगड़ती है, मुझे हर पल सताती है, यूं अपने होने का एहसास वो मुझको दिलाती है, मगर मैं उसकी हर कड़वी कसीली बात सुनकर भी सदा खामोश रहता हूं। जवाबन कुछ नहीं कहता मैं, उसकी तल्ख बातों को तबस्सुम में छुपाता हूं, मुस्कुरा देता हूं बस, और उस मुस्कुराहट के पीछे फना हो जाते हैं न जाने कितने राज। अगर जवाब दे दिया जाए तो फिर सवाल उठेंगे, फिर बहुत सी बातें होंगी, फिर शायद जबान से वो भी निकल जाए जो रोक लिया है सदियों से, सालों से अपने मन के भीतर। कुछ बातें अनकही ही रहे तो बेहतर है। 8:34 और 43 सेकेंड, खूबसूरत लफ्जों की रवानी के सफर में मैं आपका हम सफर अनवारुल हसन। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम आबशार।

जब मन में चोट लगती है, तकलीफ होती है, तो कभी कभी जज्बात ऐसे ही बिखर जाते हैं और मन से ऐसी ही दुआएं निकलती हैं। लेकिन हिम्मत हमेशा बनाए रखनी चाहिए और उम्मीद हमेशा उन उजालों से कीजिए जो हर रात के बाद फिर पैदा होते हैं बार बार। वही तो बताते हैं कि हर रात की सुबह जरूर होती है। यूं मिले कि मुलाकात हो न सकी, होठ कांपे मगर बात हो न सकी, मेरी हर निगाह दास्तां कह गई, उनको शिकायत रही कि बात हो न सकी। आपको भी लगता है कि ये सफर थोड़ा सा वक्त कम वक्त के लिए था तो हम काफी देर तक और काफी दूर तक चलेंगे आज आपके साथ रात 12 बजे तक। थोड़ी देर में हम आपको समाचार संध्या के लिए दिल्ली ले चलेंगे और 9 बजे जब लौटेंगे तो प्रोग्राम पॉप टाइम आप तक पहुंच जाएंगे और 10 बजे से 12 बजे तक एक खास खुशबू जो रोज रोज आप तक पहुंचती है रजनीगंधा की, वो आज भी मैं कहेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए अपने दोस्त अनवारुल हसन को, मिलते हैं बहुत जल्दी। शब्बा खैर।

0: के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर

0: जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। संवैधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने

0: दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
1: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
3: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाड टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाड टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में

0: खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स

0: आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकार ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सपने बड़े हैं,
1: स्टाइल अलग है,
0: तो ये शो है आपके लिए।
1: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
0: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
1: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

जी ये हुल्ले हुलारे का मतलब अगर आपके समझ में आ जाए तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। जो मेरी छोटी सी अकल है उसके हिसाब से, मेरी अकल वाली दाढ़ भी नहीं निकली अभी, इसलिए अकल अभी कम है, तो तो अगर आपको समझ में आए मुझे बताइएगा। मुझे समझ में ये आता है कि शायद ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं और गुलगुले उलगुले को जो है ना, गुलगुले बने इनके खाने वाने को, तो ये गुलगुले से मिला रहे हैं हुल्ले हुल्ले हुल्ले करके। 9:07 हो चुका है प्रोग्राम में। बहुत सारे मेल आपके आना शुरू हो चुके हैं। विजय पाल यादव जी, पहला मेल आपने हमको किया है। जी हाँ, बबलू यादव भी साथ में है, कौशल सिंह है, ग्राम व पोस्ट ललहुआ, जिला खीरी से। आदरणीय भैया जी को मेरा सादर सलाम, चलिए आपको भी। और दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होगा, यादों में आपके सिवा कोई पास कैसे होगा। हिचकियां कहती हैं याद आप करते हो पर बोलेंगे नहीं तो हमें एहसास कैसे होगा। भाई वाह क्या बात है, कितने सारे सवाल वाले इसमें में आपने डाल दिया भाई, क्या कैसे होगा, ये तो आप दिमाग लगाने वाला काम ना कराइए। देखिए अब आबशार कार्यक्रम आपने बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया, गजलें सुनकर जी खुश हो गया, चलिए हम भी खुश हो गए ये सुन के। और पॉप टाइम में तो आपकी प्रस्तुति तो अच्छी होनी ही है, इन्होंने लिख दिया, मतलब पहले से इन्होंने लिख दिया है, ये हमको लग रहा सही लिख रहे हैं ये। आज हम दोपहर को ही मुझे पता चल गया था कि आप आ रहे हैं। अरे हमने तो कल रात ही में अपना स्टेटस अपडेट कर दिया था, कभी सोशल

मीडिया पे ध्यान दिया करिए, तो पहले से पता चल जाएगा आपको। हम बहुत पहले बता देते हैं ताकि फिर आप ना कहें कि हाँ हमें तो खबर नहीं, हमको बताया क्यों नहीं था। ठीक है, अगला मेल किसका है जल्दी से पढ़ते हैं। रेनबो कैफे पेश करने वाले को हमारा आदाब। आपका ये कार्यक्रम मैं रोज़ सुनता हूँ और मुझे इस कार्यक्रम के गीत बहुत अच्छे लगते हैं। ग्राम वापोस हरहरपुर मटकली ज़िला बरेली से शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बताएं आपसे, हमने इतनी बार कहा कि कुछ नई बात नहीं लिखते हैं, वहीं चेप देते हैं, लिखा लिखाया अपना किया, कॉपी पेस्ट कट, लेकिन आपने भेजा है, मेहनत की है, तो हम भाई मेहनत तो इसमें भी लगती है, भेजते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मोहब्बत है, जिस मोहब्बत से आप हमें मेल करते हैं तो इसलिए हम जरूर पढ़ते हैं। शुक्रिया हमारी तरफ से, मन से शुक्रिया। हेलो एफएम रेनबो, गुड इवनिंग, तैयार हो जाइए। अरे ये काहे के लिए तैयार कर रहे हैं? देखिए अभी हम कहीं जा नहीं पाएंगे और ना हम कुछ खा पाएंगे क्योंकि हम बोल रहे हैं 9:09, अच्छा समय आ गया भाई, वाह। अभय कुमार जी ने ये लिखा था, चलिए अभय कुमार जी आपको शुक्रिया। अगला मेल पढ़ देते हैं, मेल बहुत आते हैं आपके और ये भागीदारी बहुत अच्छी है और हमें भी बड़ी खुशी होती है। श्री गणेशाय नमोह, पॉप टाइम, जिला रायबरेली, गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, पप्पू पासी, मनीष, नीरज भुईरा, हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद। हमें लग रहा कोई गाने लगा पीछे, देखिए गाने हमने अभी कहा भी नहीं, अब लीजिए अब गा रहे हैं तो आप सुन लीजिए भाई। ठीक है, फिर टुन टुन टुन बजाने लगे, हमारी बात मान नहीं रहे ये, इसलिए हम एक मेल और पढ़ेंगे, जाइए। पॉप टाइम प्रोग्राम, डियर आरजी अनवारुल जी नमस्कार, ये प्रोग्राम सुनकर मन एकदम तरोताजा हो जाता, भाई वाह क्या बात। जब कोई अपना मनपसंद आरजी इस प्रोग्राम को होस्ट करता है तो शाम और खास हो जाती है, भाई वाह। नींद सी आने लगी, शानदार प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। अरे भाई कृष्णकांत सिंह जी ने लिखा है, कैसरगंज बहराइच से, जो बार बार हमसे पूछते हैं कौन सी मिठाई ले आए, वो लाते वाते हैं नहीं, वैसे हम लेंगे भी नहीं। गाना सुना देते हैं आपको, ये देखिए बजा दिया, ये गाने को नहीं तैयार है। अरे भाई गाओ भाई, देखो अब आए, देखा बड़ी क्या कहते हैं चिरौरी, वो करनी पड़ी। चलो भाई गाओ।

जी, ये नया वाला लाल वाला दुपट्टा है जो बाण चलाता है और इंग्लिश में भी कुछ कुछ कहता रहता है। 9:14 हो चुके हैं, पॉप टाइम सुन रहे हैं आप अनवारुल हसन के साथ, और आपके बहुत सारे मेल हैं जो हमारा साथ निभा रहे हैं। कमल पांडे जी का मेल प्रकट हुआ है अभी अभी। सर जी नमस्कार, मैं कमल शंकर पांडे ग्राम मोहल्या कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से मेल कर रहा हूँ। सर जी, कार्यक्रम पॉप टाइम से जुड़कर आप के साथ इसमें बजने वाले गीतों का आनंद ले रहा हूं। पॉप टाइम मेरा पसंदीदा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है। कार्यक्रम में मेल शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, आपने लिखा है और आपकी भागीदारी है और आप शामिल हैं इसमें, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल रहने के लिए। अभय कुमार जी, आपका भी मेल आ चुका है। सर, हम आपका प्रोग्राम सीतापुर के एक छोटे से गाँव जिसका नाम रौरापुर, मेरा ख्याल मैं सही पढ़ रहा हूँ, जी हाँ, RAURA आपने लिखा है, तो रौरापुर है, वहाँ से सुन रहा हूँ। और हम सारे काम छोड़कर 9 बजे हाजिर हो जाते हैं आपके साथ, और आप गाने बहुत अच्छे बजाते हैं कह रहे हैं। अब भाई, गाने तो जिसने बनाए उसने बनाए ही इतने अच्छे हैं, तो वही हम बजा देते हैं, है ना। चलिए, शुक्रिया। हाँ, बस ये कि थोड़ी थोड़ी सी पसंद भी होती है कभी कभी, तो हो सकता है हमारी पसंद बहुत अच्छी हो, यह हो सकता है किसी को ना अच्छी लगती हो। देखिए, ये होता है कि हम लोगों का एक सबका एक मेंटल एक लेवल होता है, वो जब मैच कर जाता है ना, तो वही चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, और सबको सबकी कोई ना कोई बात अच्छी ज़रूर लगती है, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई खासियत ज़रूर होती है, जैसे हमारे बाकी जो हमारे साथी उनके अंदर भी है। अगला मेल पढ़ देता हूँ अनवारुल जी, और जितने लोग FM सुन रहे हैं सभी को वैभव प्रकाश सिंह का नागपुर महाराष्ट्र से नमस्कार। चलिए, आप महाराष्ट्र में सुन रहे हैं हमें, बहुत अच्छी बात है। और हम आपको बता दें कि आप कई माध्यम से हमें सुन सकते हैं, जैसा कि आप सुन रहे हैं, ज़रूर आप हमें जो है हमारा जो न्यूज़ ऑन एयर ऐप है उसके माध्यम से सुन रहे होंगे। पूरी दुनिया में कहीं भी सुन सकते हैं, जहां भी इंटरनेट अवेलेबल है आप वहां पर सुन सकते हैं। और कुछ ना याद रहे तो जाइए गूगल में और FM रेनबो लखनऊ लिख दीजिए, बस हम तुरंत प्रकट हो जाएंगे, सुनाई देने लगेंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। और वैभव जी ने और भी लिखा है कि सर जी, अच्छा, आपकी आवाज़ से बहुत पुराना रिश्ता है। आपकी आवाज़ से बहुत पुरानी बात इनको याद आ गई, इनको प्रोग्राम हिट पे हिट FM स्टाइल याद आ गया, जो हमारे यहाँ से हुआ करता था टाइम पे, बहुत फेमस रहा है वो प्रोग्राम, और उसकी भी बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगता है कि इतने लंबे समय से आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला मेल है थाना राम शर्मा, पॉप टाइम में अत्यधिक गर्मी के बीच आप का कार्यक्रम गजब की शीतलता प्रदान करता है। भाई वाह, क्या बात है, क्या नए तरीके से आपने लिख दिया। शानदार प्रस्तुति के लिए साधुवाद, पूरा दिन FM रेनबो के साथ गुजरता है। TR शर्मा, निर्मला, तोशिका, अर्पित, होडू, बालोतरा, राजस्थान से आपने हमें ये मेल किया है। हाँ, ये सन्नाटा हो गया ना, ये पीछे जो बजा रहे थे, थोड़ा सा पानी वानी पी चलेगा। अरे भाई, बजाते रहिए, आप पानी पी लीजिए। देखिए, बजवा दिया, सुनाई दिया। ये होता है, ऐसे लोग बात मानते हैं, देखिए तो अच्छा लगता है। एक मेल और पढ़ दूँ मैं, और बाबू अंसारी साहब, आपका भी मेल आ चुका है, और आपने एक बहुत बढ़िया सा हमें एक छोटा सा वीडियो टाइप का एक चीज़ भेजी हुई है, बहुत इसमें बच्चे डांस कर रहे हैं, आपने मुझे भेजा हुआ है। वारुल सर, अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम पॉप टाइम बहुत ज़बरदस्त, और साथ में आप लिख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, मूड बिल्कुल मस्ती मस्ती भरा हो गया है, और आपने हमें ये अहमदपुर बाज़ार बाराबंकी से लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मेल और हमारे पास इंदिरा नगर से आया है, देखिए, और खाना पीना चल रहा है, कुछ ख़ास बनाया गया है, और ख़ास के साथ कुछ ख़ास गाने भी मिल जाएं तो बड़ा अच्छा लगता है। नीलम गुप्ता जी हमें ये लिख रही हैं, और एजुकेशन की

फील्ड से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें लिखा है। और बस ये हम एक प्यारा सा गाना, जिसमें वो जो आपका जो तड़का है, इसको तड़का समझ लीजिए कि ये जब बजेगा ना, ये पहुंचेगा आप तक, तो आपके खाने में और भी ज़्यादा आपको मज़ा आ जाएगा। बस हाँ हाँ, ये कुछ ये अच्छा, कुछ ऐसे इन्होंने वो काम चलेगा कि खाना मांगने कोई आ गया, जो इस पे मत जाइएगा, गाना सुनिए।

0: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहां से लाती हो?
1: शत्रुपा से।
2: अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहां से लाई है नुस्खा?

0: शत्रुपन से माजी।
1: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है। कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
0: शत्रुपन से।
2: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
0: शत्रुपन से।
3: हमारी होममेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो।
3: जी, और हमारी स्टूडियो की घड़ी में 9:24 और 6 सेकंड हो चुके हैं। आपकी घड़ी में भी यही बजा होगा, वैसे नहीं बजा है तो टाइम चेक कर लीजिए, मिला लीजिए इसे। आपको एक सूचना दे देते हैं हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम के बारे में। अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखिए ताकि आपका शरीर के साथ साथ आपका मन भी अच्छा रहे, और तभी आपको इन सारे जो गाने वाने बज रहे ना, इसमें मज़ा भी आए और आपको फरमाइश करने में भी आनंद आए। जी, तो हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम जो आप हर रविवार सुनते हैं, ये वक्त आप जानते हैं 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप सुनते हैं, और एक खास स्पेशलिस्ट, हर बार एक डॉक्टर हमारे साथ मौजूद रहते हैं और आप उनसे सीधे बात करने का मौका भी पाते हैं। अगर आप फ़ोन करते हैं या अगर आपका फ़ोन नहीं लगता तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ऐसा ही मौका फिर इस संडे भी आपके पास है। अगर किसी भी तरीके की समस्या डायबिटीज़ को लेकर है या हाइपरटेंशन को लेकर है तो याद रखिए कि डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान इस वक्त आपके साथ 12 से 1 के बीच में MBBS MD है मेडिसिन विभाग में, ये मौजूद रहेंगे। और आप अपने किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या जो हमने बताया कि डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन से जुड़ी है तो इसका समाधान पा सकते हैं, डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकते हैं या मेल के माध्यम से, या बहुत सारी और भी जानकारी जो इस विषय से संबंधित है आपको मिल सकती है। तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा, हमारा साथ आप रहेंगे तो काफ़ी कुछ आपको सुनने को मिलेगा। जैसे अभी आपको आपकी फरमाइशी पूरी करते आ रही, क्योंकि इतनी देर में इतने मेल आ गए। वकील अहमद साहब, आपका भी मेल आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, पॉप टाइम प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, गाने अच्छे बज रहे हैं, एक फरमाइश आपने कर दी है। देखिए, ये प्रोग्राम फरमाइशी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको जो आपने लिखा है वो मैंने पहले से ही लगा के रखा हो तो बिल्कुल आप तक पहुंच जाएगा। और वकील अहमद मंसूरी, कटका हथौरी ब्लॉक हर गांव ज़िला सीतापुर से आपने हमें लिखा है, साथ में कुछ नाम और भी लिखे हैं, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफिशा सिद्दीकी और सभी। जी हाँ, ये तो हमारे दूसरे श्रोता हैं जो ऑलरेडी अपना मेल हम तक पहुंचाते रहते हैं। पिंकू सोनी जी, आपका मेल भी पहुंच चुका है। सर जी और मैम जी, ये मैम जी तो नहीं दिख रही हमको, अब देखिए डराइए मत, इस वक्त हम अकेले हैं यहाँ पर। हम मैम जी आपने लिख के मुझे डरा दिया, हम कुर्सी के नीचे जाने लगे, कोई यहाँ तो नहीं है कहीं। सर जी और मैम जी, चल जो भी मैम हो अगर सुन रही हो तो भाई आपके लिए भी है ये, सादर प्रणाम। मैं पिंकू सोनी और परिजात धाम टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रहा हूँ। हुल्ले हुलारे का आदिवासी भाषा, आय हाय हाय क्या बात है, ज्ञानवर्धन करने लगे। देखिए, मैंने कहा था कि समझ में आए तो मुझे बताइए। उन्होंने लिखा कि हुल्ले हुलारे जो है वो आदिवासी भाषा है जिसका इस्तेमाल इस गाने में किया गया है, और गुड परफॉर्मेंस, मस्ट प्रोग्राम, सो थैंक्स ऑल एफ एम टीम। भाई वाह, इन्होंने बता दिया। जो पहला गाना मैंने बजाया था ना तो पूछा था, तो ये जानकारी आपको थी और आपने हमें बता दिया। यहाँ पन्ना पलट रहे थे मेल का, आप सोच रहे होंगे ये सन्नाटा क्यों हो गया, कहाँ चले गए, गए कहीं नहीं थे, थोड़ा सा डर गए थे तो हम टेबल के नीचे भी झांकने लगे कि ये मैम जी कहाँ हैं, कौन थी। एक मेल और पढ़ देते हैं फिर गाना हम प्ले करते हैं। पॉप टाइम, रोशनी रावत जी आपने लिखा है, नमस्ते अनवारू सर जी, आप कैसे हैं? अरे हम बहुत अच्छे हैं, हम वैसे ही हैं जैसे बिल्कुल पिछले हफ्ते थे, वैसे ही रहते हैं, या ये कहिए कि यहाँ आके हो जाते हैं जब आप लोगों का साथ मिलता है, वैसे तो क्या बताएं कैसे थे हम। मेरे दीदी के बच्चे नैना और आयांश दोनों खूब नाच रहे हैं, धरती पलट दे रहे हैं, बोल रहे हैं मौसी गाना जल्दी बजाओ, अब इनको कौन बजाए कि गाना तो सर जी बजा रहे हैं। चलिए, उन बच्चों के लिए मैं तुरंत गाना बजाता हूँ। मेरा नाम रोशनी रावत है, ग्राम वो पोस्ट बहमना

तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से और चंडीगढ़ में इस वक्त आप प्रोग्राम सुन रही हैं। नीतू शर्मा दीदी बबीता राव जी को राधे राधे बोल दी। चलिए मेरी तरफ से जितने भी लोग सुन रहे हैं सबको राधे राधे। 9:28 हो चुके हैं और गाना भी हम बस आप देखिए कौन सा बजा, दिख नहीं रहा है, बहुत दूर कंप्यूटर रखा था वाला, हमने खूब लंबा हाथ किया और क्लिक कर दिया। अच्छा बजेगा।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई। जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए, पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर।

चलिए 9:33 और 33 सेकंड हो चुके हैं और इस वक्त जो प्रोग्राम सुन रहे हैं उसका नाम है पॉप टाइम। मेरा नाम अनवारुल हसन है और आपका नाम क्या है ये हम बता देंगे। बहुत सारे मेल आ चुके हैं। जावेद अख्तर साहब आपका मेल आया है, सलाम अलैकुम अनवारुल भाई। पॉप टाइम कार्यक्रम पूरी आन बान और शान के साथ एंजॉय कर रहे हैं, एक दमदार शुरुआत, लाजवाब अंदाज। आबशार कार्यक्रम को भी सुना तो तबीयत शाद हो गई। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से आपने हमें मेल किया है, शमशुल कमर राही बेगम और रुखसार साथ में आपने इनके भी नाम लिखे हैं। आयुषी मौर्य जी आपका भी मेल हम तक आया। पॉप टाइम प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है। अरे हो कहाँ, होने वाला है क्या, मतलब हो चुका, मतलब हो रहा है। 9:34 क्योंकि हो चुके हैं और आपने 27 मिनट पहले हमें मेल किया था। 9:15 पर आपका मेल हम तक पहुंचा है। आप आए, प्रोग्राम बहुत लाजवाब हो गया है। सर आप कैसे हैं? बस ये सोच कर जिंदगी जिया करो कि आप गुलाब जामुन है और आपसे नफरत करने वाले शुगर के मरीज। हंसी आ गई। वैसे भाई हंसना नहीं चाहिए, है ना, अगर खुदा ना खास्ता किसी को शुगर या इस तरह की चीज़ हो भी गई है तो चलिए कोई बात नहीं। चलिए आपने तो हंसने के लिए लिखा है और मुझे फिर से याद आ गया अभी, हालांकि अभी आपको सूचना दी है कि अगर शुगर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ से या हाइपरटेंशन से, तो संडे को हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम सुनना मत भूलिएगा और वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। विलेज मैनई पोस्ट और आस उन्नाव से आपने हमें ये मेल किया। अशोकनगर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त, आपने ये भी लिखा है आयुषी मौर्य जी ने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए और आपने पढ़ाई के बीच से भी वक्त निकाल के हमें मेल किया। अशोक कुमार जी लिखते हैं कि हेलो सर, गुड इवनिंग, और सिर्स एड्रेस लिखा है रायपुर उडारा मितौली लखीमपुर खीरी। आपकी आवाज़ अच्छी है भाई, वहाँ जानकर खुशी हुई। प्रोग्राम झकास चल रहा है। अभय कुमार जी आपका भी मेल आ चुका है। सर गुड इवनिंग, हम आपका प्रोग्राम विलेज रौरापुर पोस्ट गुरिया। अब मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाती है कभी कभी, एक तो बहुत छोटा सा है, अब ये अब गलत हो जाएगा तो आप तुरंत कह देंगे गलत है। पिछले हफ्ते बताया क्या हुआ, अब आपको बता ही दें, पिछले हफ्ते एक गलती हो गई थी मुझसे पढ़ने में, तो उन साहब ने मेरे सोशल मीडिया में जाके मुझे एक मैसेज में मेल करके लिखा कि देखिए ऐसे ऐसे आपको पढ़ना, तो उन्होंने फ़ोटो भी खींच के डाली इस मेल की, मुझे यानी मुझे पर्सनली वहाँ पर लिख दिया कि मतलब हमारी गलती की ओर ध्यान इंगित करा दिया। तो चलिए अगर आप सुन रहे हैं तो भाई आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ और आपसे भी अगर मुझे यहाँ भी गलती हो जाए पढ़ने में तो माफ़ कीजिएगा। एक बार मैं स्पेलिंग पढ़ता हूँ, देखिए GAURIYAIHAL। अब ये कौन सा गांव है, गौरीहल करके कुछ है ना। हाँ पढ़ लिया। सीतापुर से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पॉप टाइम, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी बता रहा हूँ, आप तो खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैंने सही पढ़ लिया होगा, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है। और हमारे दोस्त जिनका नाम ममता, नीरज कुमार, डेविड, विशु, नागेश, अनुराग और हमारे पड़ोसी यानी सब लोगों की तरफ से आपने हमें ये मेल किया। प्यारे से बच्चे के फ़ोटो में लगी हुई है। बबीता राव जी आपका भी मेल हम तक पहुँचा है और बस मैं इस मेल को भी पढ़ने जा रहा हूँ। पता लिखा है कि बेबी कला पोस्ट सठवारा गोसाईगंज नवाबों के शहर लखनऊ, आज लखनऊ से भी हमें भेजा है और आपने लिखा है कि गुड इवनिंग माई डियर रिस्पेक्टेड अनवारुल सर जी। अब इतनी इज्जत कहाँ सर जी, मैं आपको 8 बजे से सुन रही हूँ। आपका गज़लों का प्रोग्राम और आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं। आपका प्रोग्राम भाई रजनीश, बहन विनीता, नीलूदी, रोशनी रावत जी के साथ सुन रहे हैं, प्रोग्राम बहुत ही उमदा लग रहा है और झक्कास लग रहा है, ये भी आपने लिखा है। सर जी लिए देखिए, आपने हमारी दुखती रख को छेड़ दिया है देखिए, और हम अब ये बात किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि बता दिया तो ये बात आम हो जाएगी, फिर लोग हमें बार बार छेड़ेंगे। आपने किसी का नाम लिखा है, आप उनके साथ मुझे सुनना चाहते हैं, तो सर जी और मैम जी जब आएंगे तो बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आपने लिख दिया है, हमारी आवाज़ तक धीमी हो गई, बताइए सब सारा जोश चला गया हमारा, हम इमोशनल हो गए। ईमेल करने के लिए, ईमेल शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुक्रिया बबीता जी।

मैंने पढ़ लिया है और जो समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी, ऐसे कहते हैं। गुड इवनिंग प्रिया आरजे अनवारुल सर जी, मेरे अजीज, आए हाय क्या बात है, अजय सिंह जी ने क्या क्या लिख दिया, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। मुझे शिकायत है आकाश, अच्छा अच्छा अच्छा, अब भाई ये शिकायत मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, आपने जो भी लिख दिया है। देखिए, हमने पहले भी बताया कि प्रोग्राम से संबंधित कोई भी बात अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको खुद पता है कि बुधवार को जो हमारा प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में आप मेल कर सकते हैं 11 बजे, है ना। तो वहाँ पर आपके जो संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम में, वहाँ पर हमारी जो है प्रोग्राम प्रमुख भी रहती हैं, आपने उन्हीं के लिए यहाँ पर इंगित किया है इस मेल में, आपने उनका नाम भी लिखा है। और अब मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा व्यक्तिगत भी हो जाएगा, तो आप वहाँ पर इस अपनी बात कह सकते हैं, वो एक मंच इसी प्रोग्राम के लिए है। और फिलहाल मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि जहाँ हमें आदेशित किया जाता है हम तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं। सुबह के लिए कह देंगे तो हम जाएंगे नहीं, यहीं पर लेट जाएंगे बिछा के बिस्तर, है ना, ताकि सुबह सुबह यहीं बस फिर चालू हो जाए। तो हम तो इस तरह से सेवा देने के लिए तैयार है। अहमद नवाब संदीला से लिख रही हैं, आदाब अनवारुल सर, कैसे हैं आप, आज मेरी प्रोफाइल पिक्चर देकर बताइए कैसी है। हाँ, आज बता देंगे, देखिए आज बता देंगे हम आपको, क्योंकि आज आपने बहुत ही प्यारे से एक बच्चे को गोद में ले रखा है, बहुत प्यारा सा लग रहा है। सर, हम खाना बना रहे हैं, आप बना कर आए हैं या जाकर बनाएंगे। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, देखिए म्यूजिक तक वो तक चुप होगा जो पीछे संगीत दे रहे हैं हमारे। अरे भाई संगीत दीजिए, आपका नाम जाएगा। देखिए बजाने लगे, नहीं बजा रहे, अम्मा बजा दो, बजा दिया है ना। अहमद नवाब जी, हम क्या जवाब दें आपको, खाएंगे तो हम जाके, बना क्या है कि नहीं ये नहीं बताएंगे। मुनेश कुमार राज, गांव भानपुर हरौमा जिला लखीमपुर खीरी से एम के राज जी ने हमें मेल किया है। अनवारुल सर जी कैसे हैं, कार्यक्रम प्रस्तुति हर घंटे लाजवाब है, हर घंटे रोज लाइव सुनते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। लिख रहे हैं कि वो क्या ब्यूटीफुल सॉन्ग है, कौन सा सॉन्ग है और क्या बोलने का अंदाज अति सुंदर, पाऊ तेरा करने थिरकने पर मजबूर, कार्यक्रम का मजा ले रहे हैं। अच्छा, पाँव लिख रहे थे आप, तो वो पाँव हो गया है, पाँव जो है ये लिख रहे हैं कि मेरे थिरकने पर मजबूर, कार्यक्रम का मजा ले रहे हैं भरपूर, आपकी लंबी उम्र हो, रेडियो में आपका लंबा सफ़र हो। चलिए, इन दुआओं के लिए शुक्रिया, और दुआ तो बस ये कीजिए कि हम हो ना हो लेकिन ये परचम सदा यूँ ही लहराता रहे, ये रेनबो हमेशा यूँ ही खिलखिलाता रहे, मुस्कुराता रहे। राजेश यदुवंशी जी, आपका मेल भी आ गया है। राजेश जी ने हमें हथरोहना जिला अमेठी से लिखा है, लिखते हैं कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। और ये डॉलर मेहंदी जी यानी दिलेर मेहंदी जी एक बार फिर कह रहे हैं कि हमें बजाओ, मतलब ये गाना गाना चाह रहे हैं आपके लिए, तो इन्हीं का सुन लीजिए भाई।

0: अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये प्लेन क्रैश हो जाएगा,
1: कुछ खराबी आ गई लगता है इसमें। अरे अरे भाई, किसी को बचने की दुआ आती है क्या?
2: हाँ मुझे आती है।
1: अरे तो भाई आप दुआ कीजिए, पैराशूट वैसे भी है कम है।
3: जी बहुत सारे समाधान बताते रहते हैं हम यहाँ से आपको। 9:40 और 19 सेकंड हो चुके हैं, पॉप टाइम सुन रहे हैं आप इस वक्त अपने दोस्त अनवारुल हसन के साथ। और रजनीश पासवान जी आपका मिला चुका, वेरी म्यूजिकल गुड इवनिंग अनवार सर जी। आज मैंने समाज के लिए एक काम किया है, कृपया करके इसे सभी तक ज़रूर पहुँचा दें। अब भाई पहले हम पढ़ लें, चलिए जी। आपने कहा है कि आपने ब्लड डोनेशन की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है, सिद्धार्थनगर से आपने हमें ये पोस्ट जो है मेल भेजी है, और साथ में आप कुछ और भी चीज़ें पोस्ट की हैं। आपने कहा है कि आज GML में सुस्मित जी और रोली सर के द्वारा मुद्दा लिया गया था, और उससे मोटिवेट होकर, यानी आज आपने रेनबो से आपको ये प्रेरणा मिली और आपने जाकर जो है दूसरी बार ब्लड डोनेट किया है, और साथ में आपने वो तस्वीरें भी हमें भेज दी हैं सबूत के तौर पर, जिसमें आप आई एम प्राउड ब्लड डोनर आपने इसमें लिखा हुआ है, माधव प्रसाद जी जहाँ पे आपने किया है, और आपकी तस्वीर है साथ में, वो सर्टिफिकेट भी जो आपको वहाँ पर मिला है आपने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की तरफ से, वो भी आपने हमें इसमें भेजा है। और भाई आपने एक नेक काम किया है, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं, और थोड़ा सा बस हिम्मत जुटानी होती है और बहुत आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। राजेश यदुवंशी जी आपका मिला चुका है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। अब इसमें हम कुछ क्या कहें, बिल्कुल सही बात आपने लिख दी है। और एक फरमाइश आई है, आपका मेल हम पहले भी पढ़ चुके हैं अभय जी, देखिए है ना, और कुछ मेल कई बार हम तक पहुंच जाते हैं, या आपको लगता है कि नहीं पढ़ा जा रहा है, तो फिर से ऐसा नहीं, हम सारी मेल, मैं इसमें टिक करता जाता हूं।

जो स्टार उसमें बना होता ना, तो इसको स्टार में मैं करता चला जाता हूँ तो उससे पता रहता है। महेंद्र दीपन जी आए, हाय क्या बात है। अब महेंद्र जी, आपने जो हमें भेजा है ना, इसको हम कल पोस्ट करेंगे अपने सोशल मीडिया पर। आपने कितना बेहतरीन पोस्टर बना के मेरी फ़ोटो के साथ भेजा है कि मैं क्या बताऊँ। 100.7 FM रेनबो पॉप टाइम भी लिखा है, गाने भी, बातें भी और ढेर सारी मस्ती भी। आपने पूरा विज्ञापन बना दिया है और लिखा है कि शब्दों में परोकर संगीत का जो आपने जादू चलाया है, आज आपकी आवाज़ ने रेडियो पर वाकई गर्दा उड़ाया है। इतने शानदार और ऊर्जा से भरपूर प्रोग्राम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नियमित श्रोता महेंद्र दीपन रूड़ नागौर राजस्थान से। तो कल इस पोस्ट को ज़रूर आप देख लीजिएगा, मुझे पता है कि आप वहाँ पर भी देख लेते हैं, मैं आप के नाम से परिचित हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सादर नमस्कार, मैं महेंद्र दीपन बोलता गांव रोड़ जाप में, आपको बता ही दिया। और आप लिख रहे हैं कि सच कहूं तो काम की मसरूफियत की वजह से अक्सर ईमेल करने का वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन आज आपके प्रोग्राम में जो समा बांधा है और जिस तरह से आप ये गर्दा वर्दा ना उड़वाई, ये आँख में चली गई तो ऐसे मलते रह जाएंगे, फिर रात में ठीक से सो भी नहीं पाएंगे, यहाँ ना ठीक से देख पाएंगे ना बोल पाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं मजबूर होकर मैंने आपको मेल किया है, और आपकी कॉमेडी टाइप की जो आवाज़ का जादू है वो गानों का, चलिए कॉमेडी वाली भी सुन लीजिएगा और रात में थोड़ी सी दर्द भरी भी सुन लीजिएगा, सब तरीके सुनिएगा, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके इस मेल के लिए, और आपके इस मेल को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ भी लिया। और ये देखिए, आप सोचेंगे हम क्या कर रहे हैं, हम तो बता के करते हैं, देखिए कोई काम चोरी नहीं होना चाहिए। आपके इस मेल को मैंने अपने मेल में ये सेंड करके फॉरवर्ड कर दिया, अब ये हमारे व्यक्तिगत मेल में चला गया, ठीक है, तभी तो हम कल इसको पोस्ट करेंगे। आज 8 साल बाद फ़ोन लगा था फिर बात ना हो पाई, ये आनंद तिवारी जी ने लिखा है। पहले बहुत पहले प्रोग्राम आता था दोपहर धमाल 12 बजे से 1 बजे के बीच, तब फ़ोन, अच्छा फ़ोन नंबर भी आपने लिख दिया है, हमारे बहुत पुराने नंबर तो वक्त के साथ बदल जाते हैं। तो लिख रहे हैं कि तब बात हो पाती थी और आज मन बहुत उदास हो गया, कोशिश कर रहे हैं लगातार। आनंद तिवारी जी ने हमें ये मेल किया है, दारू कुइया मलावा हरदोई से, और प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है ये आपने लिखा है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हार मत मानिए, देखिए जो लोग बात कर रहे हैं ना वो भी तो कोशिश कर रहे हैं ना, और देखिए उनकी कोशिश सफल हो रही है। विजयलक्ष्मी कुशवाहा सैंडी जनपद हरदोई से लिखा है कि सर जी आप आएँ और कोई श्रोता हंसे ना, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए अच्छी बात है भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि आप भी मुस्कुरा रहे हैं थोड़ा सा। प्रोग्राम बहुत बेहतरीन चल रहा है, आप हमेशा स्वस्थ रहें और हम सबको ऐसे ही बेहतरीन गाने सुनवाते रहिएगा, धन्यवाद। राग रामेश्वर भदोही से आपने हमें ये मेल किया है, और मुझे लगता है कि अभी गाना बजा ही दें, हैं लगा के तो रखा था, लीजिए ये लगा दिया। आहा हा, समझ गए,

चलिए उनको अपना दिल संभालने दीजिए, पीछे पीछे गाने दीजिए, आपके इतने मेल हैं तो जल्दी से हम सबको शामिल कर लें। शैलेश कुमार जी, आपने नीलूपुर साथ में टाइगर पूर्णिमा नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से ईमेल किया है, नमस्ते गुड इवनिंग अनवाल सर, कैसे प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। रोशनी बबीता स्नेहा सोनी जी को भी नमस्कार बोल दिएगा, जो भाई आपका नमस्कार पहुँच गया है। अतुल कुमार यादव जी, आप लिख रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम सुनकर, और मैं छोटा सा किसान हूँ, सब्जी की खेती करते हैं, आजकल लौकी और खीरे निकल रहे हैं, और आपकी पूरी टीम और सुनने वालों को मैं खीरे की दावत, अरे भाई वाह क्या क्या बात है, खीरे की दावत दे रहे हैं, जल्दी से आ जाइए लोग। और पता भी अब लिख दिया है, पता ग्राम खुरेहटा खैराबाद सीतापुर, लीजिए खीरे के चक्कर में मन्ना मकान नंबर लिखा, ऐसे कैसे ढूंढेंगे, हो सकता है बहुत मशहूर आदमी हो वहाँ के, भाई आएंगे उधर, हम आते हैं खैराबाद की तरफ तो हम ज़रूर आपके से खीरे ले जाएंगे। अनवारू सर जी नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आपको सुन रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, और आपके साथ पूरा रजनीगंधा तक साथ निभाऊंगा। छत्तीसगढ़ से आपने मेल किया है, ज़िला बलौदा बाजार ग्राम तारा शिव से तालिब अंसारी साहब, आपने भी राजा कटरा बाराबंकी से मेल किया, रेडियो मैन अनवारू हसन सर जी आज तो अलग लेवल का प्रोग्राम, नहीं हम ऐसे ही करते हैं भाई, आप ठीक से सुना करिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऊपर से मौसम भी कूल कूल हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, आपके आने की खबर लग गई थी कि लिख रहे हैं, हमको पहले से पता था कि आप आएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी नाक कान आँखें सब खुली रखते हैं, जी हाँ, तो इससे खबरें मिलती रहती हैं, अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सर मैं भिटौली लखनऊ से आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, पूजा पाल हैं आप मेरे साथ, और भी लोग सुन रहे हैं, आपने लिखा है शमशा और अंजू, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। कोमल तिवारी जी, गाने बहुत प्यारे बज रहे हैं, बहराइच से आपने कैसरगंज से हमें लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। सावित्री देवी जी आपको ही पल देते हैं, गुड इवनिंग डियर सर जी, बहुत झकास प्रोग्राम चल रहा है। और आपने लिखा है भरतपुर बरगदही पोस्ट अर्जुनपुर डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। और बहुत दिन पहले बनाया था लेकिन याद नहीं रहा भेजने का, इसलिए दूसरा ईमेल कर दिया है, दूसरी ईमेल के लिए सॉरी। अहमद नवाब ने संडीला से भेजा है, अच्छा इन्होंने भी हमारी एक फ़ोटो बनाई थी, फ़ोटो बनाई है, ये फ़ोटो नहीं कहते हैं इसको, ये फ़ोटो है, फ़ोटो बहुत अच्छी है वहीं वाली, ये किसी को दीजिएगा नहीं, समझ जाइए हमारी शादी हो चुकी, क्योंकि नमाज का 57 मिनट हो चुके हैं। एक गाना और आप तक पहुँचाते हैं, उसके बाद रजनीगंधा की खुशबू महकेगी जब लौटेंगे प्रोग्राम रजनीगंधा लेकर। हाँ देखिए ये इसमें हाथ लग गया, खड़खड़ की आवाज़ तो नहीं आई आपको, चलिए गाना सुनिए, लौटते हैं थोड़ी देर में, नमस्कार।

नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का डेटा हैथाकॉन 2026 सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इसमें छात्रों द्वारा विकसित अभिनव समाधानों का प्रदर्शन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि डिजिटल पहचान डेटा के अभिनव और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने और छात्रों और युवा पेशेवरों को स्केल बेस्ड डेटा आधारित समाधान विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से हैकाथॉन का शुभारंभ किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य समावेशन, दक्षता और शासन परिणामों को बढ़ाना भी है। प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को केवल एक सड़क परियोजना तक सीमित न रखते हुए इसे आधुनिक सुविधाओं और क्षेत्रीय विकास के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर चार स्थानों पर ई वे हब और जन सुविधा परिसरों की स्थापना का कार्य करा रही है। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में 12,907.84 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। प्रस्तावित जन सुविधा परिसरों की स्थापना बांदा और हमीरपुर में एक एक और जालौन में दो स्थानों पर की जाएगी। कानपुर महानगर की बहुप्रतीक्षित परियोजना जरीब चौकी चौराहे रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य का भूमि पूजन आज कानपुर सांसद रमेश अवस्थी ने किया। इस रेलवे ओवरब्रिज पर 320 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। गौरतलब है कि ये रेलवे ओवरब्रिज कानपुर महानगर को लंबे समय से लगने वाले भीषण जाम और दक्षिण उत्तर कनेक्टिविटी की समस्या से मुक्ति दिलाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

अक्स खुशबू हूं, बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको न समेटे कोई। कोई आहट, कोई आवाज, कोई चाप नहीं, दिल की गलियां बड़ी सुनसान हैं, आए कोई। दस बजकर चार मिनट और 55 सेकेंड, कोई तो आ गया है। रजनीगंधा के फूलों पर ठहर गई है मोहब्बत की शबनम, और एक चादर है अंधेरे की, थोड़ी सी चमक भी है उसमें। धीरे धीरे धरती पर सरक रही है एक रात की तरह। ये रात थोड़ी सी अलसाई भी है, थोड़ी सी दुखी भी है, थोड़ी सी मुस्कान भी है इस रात में। और इन सारी आहटों को एक साथ बुनकर इस खुशबू को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज मेरे साथ है, मेरे पास है, और मैं हूं जी हां आपका दोस्त अनवारुल हसन। स्वागत है सफर में। नमस्कार।

मैं जानता हूं कि तुम्हारी जब तक बात नहीं होती हमसे, जब तक मुलाकात नहीं होती, तुम्हारे रूह में एक अजीब सी बेचैनी तारी रहती है। तो फिर बहुत सी बातें ऐसी क्यों होती हैं जो कहने से पहले ही तुम्हारे होठों पर ठहर जाती हैं। आज मैंने देखा कि मुलाकात के बाद भी तुमने खामोशी की एक चादर सी ओढ़ रखी है। तुम्हारी आंखों के इन धागों में न जाने कितने सवालात जैसे उलझ कर रह गए हो। तो क्यों इन्हें उलझा दिया है? कुछ मन में है तो कह डालो अपने मन की हर बात। क्या इरादा है, क्या सोचा है, बात करने की वजह क्या है, याद करने की वजह क्या है? तुम जो नजरों को उठाओ तो सितारे झुक जाएं, तुम जो पलकों को झुकाओ तो जमाने रुक जाएं, जागती रातों को सपनों का खजाना मिल जाए, तुम जो मिल जाओ तो जीने का बहाना मिल जाए। तुम्हारी मुलाकातों के पीछे, इन बातों के पीछे की वजह क्या है आखिर?

ये इंतजार भी एक इम्तिहान होता है। इसी में इश्क का शोला जवान होता है। बिछाए शौक के सजदे वफा की राहों में, खड़े हैं दीद की हसरत लिए निगाहों में। मोहब्बत के सफर में हुस्न की अंगड़ाइयां भी हैं तो शातिर जमाने की बिछाई हुई दुश्वारियां भी हैं। प्यार का सफर अक्सर उतना आसान नहीं होता जितना समझ लिया करते हैं लोग। अगर होता तो बहुत से अफसाने उस तरह से बिखर कर सामने ना आते जो कभी कभी किसी की कहानी को आपसे रूबरू कर देते हैं और कभी कभी वक्त के साथ कुछ ऐसी रानाइयां, कुछ ऐसी अंगड़ाइयां, कुछ ऐसी जादू भरी बातें आप तक पहुंचती हैं। कभी कभी ये खुशहाल जिंदगी की तरफ भी आगे बढ़ती हैं, कुछ कहानियां अंजाम तक भी पहुंचती हैं और कुछ ऐसी भी कहानियां होती हैं जो वक्त की धूल में धुंधला जाती हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में तो उन पर भी निगाह जरूर डालेंगे।

कहानियों की भी, उन अफसानों की भी बात करेंगे जो धीरे धीरे दर्द में बदल गई। और बात अभी उन कहानियों की भी, उन अफसानों की भी, जो हर बदलते हुए वक्त के साथ और भी निखर गई।

0: किनारा ये चंचल हवा,
1: चंचल हवाएं न जाने कौन कौन सी कहानियां हम तक पहुंचाती हैं। जब आप अकेले में होते हैं और आपको ये छू कर गुजर जाती हैं, बेचैन हो जाता है कभी कभी मन भी। हर लम्हा एक सवाल बन जाता है, कभी ये बेचैनी इंतजार की होती है और कभी खूबसूरत मोहब्बत की भी। जब एक झलक पाने के लिए आंखें बेचैन हो तो कभी कभी आप अपने आप से पूछ बैठते हैं। याद कीजिए, कभी पूछा था क्या आपने अपने आप से सवाल किसी को देखकर जब ऐसा हुआ था आपका हाल, लगा था क्या कभी कि कुछ कुछ अलग हो गया है आपको, या किसी खास को देखकर कभी आपको बाद में एहसास हुआ हो कि ये रिश्ता कुछ अलग से है, कुछ अलग नाम है इस रिश्ते का, कुछ अलग सी फीलिंग है आपके अंदर। और फिर उसको चेक करने के लिए अगर आपने वो एक बेचैनी वाला जो थर्मामीटर होता है जो आपके दिल में कहीं होता है, अगर वहां महसूस किया हो कभी कभी कि ये तो कुछ अजीब सा नहीं हो रहा है, मैं भी छू कर देख रहा हूं अपने अपने दिल के आसपास आतर कर और शायद अगर आप अकेले हो तो आपने भी ऐसा किया हो, नहीं किया हो तो करके देखिएगा कभी। रातें कैसे कटती हैं, नींद कहाँ गायब हो जाती है, मोहब्बत की जिस आग में जब आप जल जाते हैं, कभी हंसी आती है कभी आंसू भी बहते हैं, कभी बेचैनी भी होती है कभी अजीब गहराई एक पैदा हो जाती है मन के अंदर, और फिर हम सीख जाते हैं वफा का सबक। और ये सब

जो कुछ भी है तब होता है जब किसी को याद करते हैं आप। 10:28 और 40 सेकेंड, वफा के ऐसे ही सबक को याद करने की एक कवायद रजनीगंधा में आज अनवारुल हसन के साथ।

पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक

मेरे कौन हो। जी, और इसलिए ना पूछिए क्योंकि कुछ सवालों के जवाब तो अपने आप ही आपको ढूंढने होते हैं, तो बस उनके जवाब तलाश कीजिए। और अगर ऐसी फीलिंग आ रही है, कुछ ऐसा मन में आ रहा है, तो फिर मान लीजिए कि कहीं ना कहीं जिंदगी की एक डोर है जो बंधी हुई है कहीं, शायद उन्हीं के साथ। दिल की धड़कन में बस उन्हीं का जिक्र है, हर सांस में छुपा है वो इश्क का राज। बिना तुम्हारे ये जिंदगी है बेकरार, तुम हो तो खिलेगी हर सुबह की बहार। तुम ही हो मेरी दुनिया का नूर, जब आंखों में आ जाते हो तुम तो लगता है समर गया है हर नजारा। दूर हो तो उदास हो जाता है मन, ये चेहरा भी, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम ही से बंधी है ये जिंदगी की डोर। इश्क की इस डोर को कभी तोड़ना नहीं, साथ निभाना हमेशा, यही है प्यार का वादा भी। तुम्हारे बिना अधूरा सा लगता है हर सफर, क्योंकि तुम ही से है जिंदगी का असली

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हमसे हाँ। तुम खिजलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ। तुम खिजलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे।

जी, और कभी कभी ये बातें सच हो जाती हैं जो कसम खा के कह दी जाती हैं। कभी कभी हाथ मलते रह जाते हैं लोग, धीरे धीरे रेत की तरह फिसल जाती हैं बहुत सारी खुशियां, और फिर खुद को छला हुआ महसूस करते हैं, भीतर तक जला हुआ महसूस करते हैं। और फिर क्या होता है, समाचारों के बाद लौटेंगे तो बताएंगे आपको। रात के 10:55 हो चुके हैं, अगर आपको नींद आ रही हो तो आप सो जाइए। रजनीगंधा का यह सफर तो जारी रहेगा और हम लौटेंगे समाचारों के बाद। तो बस इस आधे सफर से इजाजत लेते हैं, फिर लौटते हैं। मैं आपके साथ आपका दोस्त, जी हाँ, अनवारुल हसन। और कौन,

नमस्कार, रात के 11 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने अध्यक्ष ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर मामलों के दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज जनभवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति एवं अन्य अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विश्वविद्यालय तथा उसके अंतर्गत संचालित विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों, शैक्षिक एवं गैर शैक्षणिक फैकल्टी, अनुसंधान गतिविधियों, रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, बेस्ट प्रैक्टिस, विद्यार्थी कल्याण, आधारभूत सुविधाओं, भवनों की स्थिति, विश्वविद्यालय की उपलब्धियों, प्रगति रिपोर्ट, खेलकूद एवं सामाजिक गतिविधियों सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आकाशवाणी भवन से इस मैराथन को रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक ने बताया कि आगामी 2 दिनों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 10 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

11:04:25। उन्हीं अफसानों को फिर से दोहराने का वक्त, उस मुश्किल वक्त को शायद छिपाने का वक्त। जी हां, मैं कौन हूं पता है आपको? रजनीगंधा सुन रहे हैं आप 100.7 FM रेनबो पर।

गैरों से मत कहना मन की बात, मुझसे कहना। बस जो भी ख्याल आए मुझसे कह देना। जो राज है दिल के कोने में छुपा, वो राज किसी और से मत बांटना। मेरे कंधे पर सर रखकर सुना देना। तुम्हारी आहें, तुम्हारी फरियादें, जो कुछ भी है मन में, सब कुछ। जिंदगी की इस भागदौड़ में कई साए हैं जो बस सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। लेकिन मैं वो दोस्त हूं जो तुम्हारी हर बात को दिल में समेट लेगा बिना जज किए। तो बस थोड़ा सा वक्त निकालना कभी और मन में जो कुछ भी है मुझसे कह देना। कुछ भी, कोई याद हो, कोई बात हो, किसी का इंतजार हो, सब कुछ।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

क्या मिला आखिर, क्या मिला आखिर तुझे सायों के पीछे भागकर। ए दिले नादान, तुझे क्या हमने समझाया न था। खूब रोए छिपके घर की चार दीवारी में हम, हाले दिल कहने के काबिल कोई हमसाया न था।

0: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।
1: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, बातें तो कुछ ऐसी ही होती हैं जब आप शुरुआत करते हैं किसी सफ़र की, लेकिन कभी कभी चीज़ें बदल जाती हैं अचानक से। इश्क़ का ये रिश्ता तो जन्म जन्म का है, मोहब्बत तो बहुत पुरानी है, लेकिन दिल की जो गहराइयों से बंधे हुए धागे हैं कभी कभी कमज़ोर हो जाते हैं। हर जन्म में मिलते हैं वो आँखें, वो मुस्कान, वो बातें, कभी हवाओं में, कभी ख्वाबों में, कभी यादों में, कभी डगमगाती हुई जिंदगी की लहरों में। लेकिन इससे कभी भुला मत देना, ये वो दीवानगी है जो वक्त की दीवारों को तोड़ देती है। जन्मों के सफर में दर्द भी सह लिया जाता है, खुशियां भी बांट दी जाती हैं, और ये रिश्ता तो कोई खास बनाता है, और इसलिए बनाता है कि हम उसे निभाते रहें मोहब्बत के साथ। और अगर कभी कभी कुछ परेशानियां आए तो उनके बावजूद भी, लेकिन कभी कभी ये रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं, ये डोर भी कमज़ोर पड़ जाती है, शायद उतना हम संयम नहीं रख पाते जो रखना चाहिए। बहुत पहले जो बातें हुई थी, जो वादे किए थे, कुछ ऐसे थे क्या?

खाले गम कह के गम बढ़ा बैठे, तीर मारे थे तीर खा बैठे, बेसहारों का हौसला ही क्या, घर में घबराए दर पे आ बैठे।

और जब से बिछड़े वो मुस्कुराए न हम, जब से बिछड़े वो मुस्कुराए न हम, सबने छेड़ा तो होंठ हिला बैठे, आंधियों जाओ अपना काम करो, आंधियों जाओ अपना काम करो, हम खुद अपना दिया बुझा बैठे।

बचा रखना, घर की तामीर चाहे जैसी हो, इसमें रोने की कुछ जगह रखना, क्योंकि जिंदगी में एक दौर ऐसा आता है जब मोहब्बत अपने रंग भरती है, लेकिन प्यार की वो गहराइयां कभी ना कभी फना हो जाती है, मिट जाती हैं बहुत सारी पहचानें, भूल जाते हैं बहुत सारे हम अफसाने भी। लेकिन जब प्यार नहीं रहता, कुछ खाली सा महसूस करते हैं आप, तब रह जाती हैं सिर्फ तस्वीरें और कुछ यादें, और कभी कभी पुरानी किताबों में फूल नुमा रखे हुए कुछ अफसाने भी। रात के 11:45 और 12 सेकंड हो चुके हैं। बुझती हुई उम्मीदों के सरहाने बैठकर दुआओं का मजबूत दामन फैला रहा है जहां आपका दर्दमंद दोस्त अनवारुल हसन। और कौन।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

जिंदगी पर बड़ा भरोसा था, जिंदगी चाल चल गई कैसे, बात जो मुद्दतों से दिल में थी आज मुंह से निकल गई कैसे। लेकिन मन की हर बात कह देने से थोड़ा सा हल्का बनाता है, आसानी से नींद भी आ जाती है, तो आपको भी बेहतर नींद आ जाए इसी दुआ के साथ इजाजत दीजिए अपने दोस्त अनवारुल हसन को, फिर मिलेंगे जरूर। शब्बा खैर।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश में कल से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने भी आज अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उत्तर

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने भी आज अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कल और 10 मई को किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगी, जिसमें कुल 4,64,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने आज 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। स्मार्ट मीटर और बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई से 30 जून 2026 तक प्रत्येक प्रदेश भर में कैंप लगाए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने आज लखनऊ में बताया कि अधिशासी अभियंता एवं उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर इन विशेष शिकायत निस्तारण कैंप के आयोजन होंगे। साथ ही प्रत्येक कार्यालय में विशेष हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे, जहां बिल संशोधन और तकनीकी शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा। अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 5 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस रहा और यह सामान्य से लगभग 3 डिग्री कम था। सूर्योदय 5:23 पर और सूर्यास्त 6:43 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी FM रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 12:02 हो रहे हैं। हमारी ये सभा संपन्न होती है। प्रातः 5:50 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।